सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि तदनुसार 19 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की शिकायत के आधार पर किया गया है। भजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: जगत का मिथ्या तत्व यही है कि वो प्रतिक्षण परिणामी है, सत होते हुए भी विनाशी और क्षण भंगुर है। ये शरीर पत्ता है, ये पत्ता किस समय मुरझा जाएगा कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार शरीर किस समय क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वृक्ष हमें छाया और फल देता है, साथ ही उससे लकड़ियां निकालकर उपयोग में लाई जाती हैं। माया से भी जगत का नाना वस्तु समुदाय निर्मित होता है और यही जीवों को भोग रूपी फलों को परमेश्वर के नियंत्रण में रहकर उत्पन्न करती है। विषय वासना के भांति भांति के फल इसी में लगते हैं। वृक्ष बीज रूप में अपनी सत्ता को स्थित रखता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसी के भीतर आत्मा रूपी महाधन निहित है। वो इसे लेकर गतिमान है, इसके साथ काम क्रोध मद लोभ मोह ये 5 चोर उस महाधन को चुराने के लिए साथ चल रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां इस शरीर रूपी कारवां की स्थिति को विकृत करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मन को आकर्षणों से हटाने से, प्रभु भक्ति में शरीर की चिंता न करने से भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, इसके भीतर किसी प्रकार की सांसारिकता का उदय होने पर भी उस अंशी में किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं हो सकती। जिस तरह जल में दूसरा पानी मिलने पर विकार नहीं आता, आत्मा सर्वव्यापी है, सब में है, जगत और ब्रह्म का संबंध अपरिहार्य है। जगत माया के ब्रह्मजाल में फंस रहा है क्योंकि सद्विवेक के अभाव में जड़ जगत का ऐसा प्रवर्तन सहज है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके लिए वो संसार को धोखा देने में भी कोई कसर नहीं रखता। इतने सब कुछ के बाद भी प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़ जाते हैं। इस माया विषयक मिथ्या दृष्टिकोण के परिहार हेतु ज्ञान की उदात्त विशाल और प्रखर धारा का प्रभावित होना आवश्यक है। सत्य के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर लेने पर चेतना पूर्ण आनंद देने वाली हो जाती है। अखंड आनंद के इस आकर्षण को मुक्त जीव की चेतना फिर कभी नहीं छोड़ती। ज्ञान का नाम विद्या और कर्म का नाम अविद्या है। ज्ञान से भिन्न कर्म है, इन दोनों का उपयोग साथ साथ करना है। इन्हें हम विज्ञान और कला भी कह सकते हैं। केवल ज्ञान और कर्म का कोई फल नहीं है, फल तो ज्ञान पूर्वक कर्म है। कर्तव्य परायण होकर मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। अमरता पाने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना होगा, समष्टि में अपने को मिटाना होगा। अमरता तो अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त हो सकती है और वही वास्तव में विद्या है।
0: जीवन का सत्य चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे इस संबंध में विचार, वाचक स्वर था रजनीश गुप्ता का। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए देवों में प्रथम पूजनीय दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक भगवान गणेश का सुमिरन करते हैं। सुनते हैं समूह स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

हे प्रभु, आपका भरोसा जीवन का आधार है, एक बड़ा सहारा है। जो भी आपका सुमिरन करे उसे जीवन की सारी खुशियां मिल जाती हैं। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हम हर पल आपके दर्शन करें, आपके गुणगान करें।

आप सुन रहे थे शोभा माथुर के स्वर में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भजन।

प्रेम में शक्ति आत्मा की शक्ति होती है और प्रभु से किया गया निस्वार्थ प्रेम कभी कम नहीं होता, बल्कि प्रभु सुमिरन के साथ बढ़ता चला जाता है।

पंडित डी वी पलुस्कर के गाए मेरा भाई के इस भजन के बाद आइए बाप को सुनवाते हैं पंडित राजन साजन मिश्र का गाया ये भजन।

ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 100.5 मेगा हाउस पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पदपाठ।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: सवेरे 10:30 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। सवेरे 9:10 पर रात्रि 8:10 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 साल के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। सवेरे 8:30 पर सुनिएगा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी श्रीमती मधु मियाखोरी से डॉक्टर कंचन नेगी की बातचीत। विषय रहेगा कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे जन समस्याओं पर आधारित भेंटवार्ता पर आधारित कार्यक्रम हमरी खैरी। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा डॉक्टर विनोद कुमार से किसानों से फोन इन बातचीत। साथ ही किसान साथी सुन पाएंगे मंडी के बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मुकेश शर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा कव्वाली, कलाकार होंगे अफजल अहमद साबरी और साथी। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों की मोती और फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। सुबह 9 बजे 10:12 पर, दिन में 11 बजे 1:15 पर, 2:30 पर, दिन में 3 बजे, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत और शाम को 7:40 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य 20तमस्य रोजगार इति आजीविका मेलकस्य अंतर्गतं विविधेषु प्रशासकीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 150,000 नियुक्तिपत्राणि दृश्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The CEPA is expected to create new opportunities in trade in goods and services, investment and other areas of economic cooperation. In a social media post, Mr. Goyal expressed confidence that an early conclusion of the CEPA would help realize the shared vision of significantly increasing bilateral trade and further deepen the India-Canada economic partnership for mutual benefit. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against Reliance Capital Limited, Mumbai, in its former chairman and unidentified public servants, among others, in connection with an alleged LIC investment fraud. The case was registered on the basis of a complaint filed by the Life Insurance Corporation of India, or LIC. According to the complaint, between 2012 and 2018, LIC subscribed to 5 non-convertible debentures worth 3,900 crore rupees issued by Reliance Capital. The funds were meant for general corporate purposes, funding requirements and refinancing of existing debt. India has been ranked first in business climate among 40 plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. US President Donald Trump said that the United States has reached a deal with Denmark to strengthen the American military presence in Greenland, ending months of tension over his repeated calls to acquire the Arctic island. And that is the end of this news bulletin.
3: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों के मोती। आज के गीतों की थीम जुल्फ

0: दोत लगा दूं मैं गुस्ताखे माँ गुस्ताखे माँ।
1: ये स्वर था मोहम्मद रफ़ी का, फिल्म का नाम था सूरज, गीत था हजरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी की ये शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम पिया का घर।

0: ये था फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती। आज के गीतों की थीम थी जुल्फ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में DBT के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मियांवाला

0: 8,64,00,000 रुपए की लागत से विकसित जल सृष्टि पार्क का लोकार्पण किया। बद्रीनाथ में आज से 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है और अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने आगामी कुंभ को लेकर मेला पुलिस की प्रारंभिक तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा कल देहरादून में विद्यार्थियों के साथ सीधे संवाद के दौरान एक छात्रा के प्रश्न का जवाब देते हुए की। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शिक्षा और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न किए और सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मियांवाला में 8,64,00,000 रुपए की लागत से विकसित जल सृष्टि पार्क का लोकार्पण किया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस पार्क में पुराने तालाब का पुनरुद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे स्वच्छ, स्वस्थ और हरित देहरादून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: पार्क में पुराने तालाब के बीच आइलैंड बनाया गया है और पैडल बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक, योगा डेक, चिल्ड्रन पार्क, फ्लावर गार्डन और बैठने की व्यवस्था विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण केवल पर्यावरण बचाने का कार्य नहीं है बल्कि अपनी विरासत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा कि विकास का उद्देश्य केवल कॉन्क्रीट के ढांचे बनाना नहीं बल्कि लोगों का जीवन आसान बनाना है, शहर को सुंदर रखना और पर्यावरण की रक्षा करना है। श्री धामी ने बताया कि रायपुर क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्क, शिविर और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्य भी किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पार्क और सुविधाएं विकसित कर सकती है लेकिन उनका संरक्षण समाज की साझा जिम्मेदारी है। समीना, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: बद्रीनाथ में आज से 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना और जिला प्रशासन चमोली के संयुक्त तत्वाधान में ऑपरेशन सद्भावना के तहत टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की थीम हमारी विरासत हमारा भविष्य रखी गई है। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ सीमांत पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कला एवं संस्कृति को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उद्यमिता और सीमांत क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। महोत्सव में गढ़वाली लोक नृत्य और लोक संगीत के साथ विद्यालयों और महाविद्यालयों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा और जैविक उत्पादों के साथ पारंपरिक व्यंजन, महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल और स्थानीय उद्यमियों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। भारतीय सेना की ओर से राष्ट्र निर्माण, सीमाओं की सुरक्षा और आपदा राहत में सेना की भूमिका पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। देहरादून में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली CCTNS और अंतर संचालनीय अपराधी न्याय प्रणाली ICGS 2.0 की प्रगति को लेकर राज्य शीर्ष समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक की तकनीकी आधारभूत ढांचे, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा रिकवरी सेंटर और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: जुलाई 2026 तक CCTNS प्रगति डैशबोर्ड में उत्तराखंड की राष्ट्रीय रैंकिंग 13वें से बढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं IOCGS 2.0 डैशबोर्ड में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। इसके तहत ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई समन और ई साइन जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में नेशनल क्राइम लीडरशिप इंडेक्स यानी NCLI डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि 17 सितंबर तक इसमें उत्तराखंड की रैंकिंग 24वें से सुधरकर 18वें स्थान पर पहुंच गई है। बैठक में मुख्य सचिव ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ITDA को CCTNS के लिए अलग डेटा रिकवरी इकोसिस्टम तैयार करने को कहा, ताकि महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता, डेटा सुरक्षा और

0: क्षमता मजबूत हो सके। अमित सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार जिले में आगामी कुंभ मेला को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड अपराध एवं कानून व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. वी मुरुगेशन ने कुंभ मेला 2027 को लेकर मेला पुलिस की प्रारंभिक तैयारियां एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
2: कुंभ का तैयारी को अपने आज रिव्यू किए हैं, काफ़ी तैयारी हो गया है। कुछ जो टाइम बाउंड है उसको आगे और एक्सपेडेट करने के लिए बता दी गई। जो कोर्स का रिक्वायरमेंट है वो भी आकलन हो गया है, तो उनको दे दिया जाएगा और भी मीटिंग होंगी और रिव्यू करेंगे प्रोग्रेस को। देखिए, फोर्स का उन्होंने आकलन कर लिया है, करीब 9-10 हज़ार जो भी कह रहे हैं, फिर दोबारा इन डिटेल में देखा जाएगा। फिर उसके बाद डिमांड कोई दूसरा देश से दूसरा देश से मांगना तो आप कुछ होगी ना। ड्रोन है, सीसीटीवी है, हमारे जो सब रिक्वायर्ड 90% चिकन का है, एटीएस है, काउंटर इंटेलिजेंस वाला है, काउंटर इंटेलिजेंस सबका अपना है।
1: इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन योजना, संचार व्यवस्था, डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। साथ ही मेला क्षेत्रों में चरणवार सुरक्षा बलों के नियुक्ति के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिले के उपला टकनौर क्षेत्र के झाला गांव में पौराणिक सेलकू मेले का अंतिम दिन आस्था और लोक परंपरा के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान दूर दराज क्षेत्रों में ब्याही गांव की ध्याणियां यानी बहन बेटियां विशेष आयोजन में मायके पहुंची। ध्याणियों और ग्रामीणों ने भगवान सोमेश्वर देवता और माँ भगवती की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। पारंपरिक तांदी और रांसो नृत्य के साथ पहाड़ी वेशभूषा में सजी ध्याणियों और ग्रामीणों ने लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। मायके लौटी ध्याणियों का आत्मीय स्वागत भी किया गया। इस बार मेले को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखा गया। उपला टकनौर के गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किया गया। स्थानीय मान्यता के अनुसार सेलकू शब्द को सोएगा कौन के भाव से जोड़ा जाता है। इस मेले के जागरण परंपरा सामुदायिक सहभागिता और ग्रामीणों की सामूहिक आस्था से जोड़कर देखा जाता है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद देश और प्रदेश से लगातार मदद का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय से गोरखाली सुधार सभा के केंद्रीय अध्यक्ष पदम सिंह थापा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय नेपाल आपदा राहत सहायता दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नेपाल भारत का पड़ोसी होने के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक रूप से गहरे संबंध रखने वाला देश है। उन्होंने राहत दल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय जरूरतमंदों की सहायता करना मानवीय जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों का खंडन किया जिनमें कहा गया कि सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावे निराधार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने न तो ऐसी किसी बैठक में भाग लिया है, न ही शिक्षकों और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित किसी विधायी समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। कार्यालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि जरूर करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मियांवाला में 8,64,00,000 रुपए की लागत से विकसित जल सृष्टि पार्क का लोकार्पण किया। बद्रीनाथ में आज से 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है और अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. वी मुरुगेशन ने आगामी कुंभ को लेकर मेला पुलिस की प्रारंभिक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए मुकेश शर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर सौरभ आर्य, बांसुरी पर मुकेश कुमार और हारमोनियम पर चमन सिंह। तो आइए सुनते हैं मुकेश शर्मा के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: पापा आज स्कूल बंद है, रास्ते में भूस्खलन हो गया है।
4: बेटा अच्छा हुआ जो तुम समय पर घर आ गई।
3: अच्छा अगर कभी हम भूस्खलन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
4: सबसे पहले घबराना नहीं, भूस्खलन से दूर सुरक्षित जगह पर जाओ, ढलान, टूटे पेड़ और चट्टानों के पास बिल्कुल मत रुकना। और हाँ, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वाहन धीरे और सावधानी से चलाना चाहिए।
3: लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए और निकलना मुश्किल हो तो?
4: ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहो और तुरंत मदद के लिए 112-1070 या 1077 पर कॉल करो। और हाँ, मोबाइल में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड रखो ताकि मौसम और आपदा से जुड़ी चेतावनियाँ समय पर मिल सकें।
3: समझ गई, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: बिल्कुल बेटा, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
5: बता दें, मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
4: सर, मच्छरदानी लगानी चाहिए।
3: बिल्कुल, और जब बाहर जाएं तो पूरी बाजू के कपड़े और शरीर को ढकने वाली ड्रेस पहने, इससे मच्छरों के काटने से बचने में मदद मिलती है।
4: सर, यानी शॉर्ट्स या छोटी बाजू के कपड़ों की जगह पूरी बाजू की ड्रेस पहननी चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, खासकर बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखें।
4: और घर में मच्छर ना पनपे, इसके लिए
3: गमले, कूलर, पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में पानी जमा ना होने दें।
4: सर समझ

0: गए, पूरे बाजू पहनेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे।
1: शाबाश, मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। और आपातकालीन स्थिति के लिए डायल करें 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं मुकेश शर्मा का गाया ये जौनसारी लोकगीत।

0: मुकेश शर्मा के गाय से जौनसारी लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर सौरभ आर्य, बांसुरी पर मुकेश कुमार और हारमोनियम पर चमन सिंह। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: The government is supporting the sector through technology transfers.
7: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
5: गैलेक्सी आई के CEO सुयश सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
8: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
7: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में, खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
9: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश

0: के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
4: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. The conference will provide a platform to discuss key environmental and climate challenges. These include gaps in policy formulation, implementation and enforcement. The conference will also explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Statistics and Programme Implementation Ministry has released labour market snapshot of selected districts. The district-level key labour market indicators were released by National Statistical Office for the first time. Around 57.8% of districts recorded female labour force participation rate, LFPR, of 40% or above. Worker population ratio, WPR, of the top 50% populous districts ranges between 37.3% to 76.7%. Among the 100 most populous districts, Surat in Gujarat recorded the highest levels of LFPR and WPR, while Darbhanga in Bihar recorded the lowest levels of LFPR and WPR. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was held in New Delhi yesterday. Chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, the committee was briefed by representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Talking to media, committee chairman Sanjay Jaiswal said the meeting was held in a cordial atmosphere and members raised several questions.
5: The entire meeting was held in a very good and cordial manner. All the MPs asked their respective questions. And our goal, the mandate we have received, is that we have to submit our reports before the winter session. We will definitely be successful in doing so.
3: The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you the story of the evolution of India's sector. India's space sector reforms initiated in 2020 and anchored by the Indian Space Policy 2023 have transformed the nation's space program from a government monopoly into a vibrant, competitive, public-private ecosystem. More details on this from our correspondent.
6: The space sector reforms have brought considerable changes in the space technology sector in the country.
7: The space startup Galax-i, founded by a team of engineers at IIT Madras that developed Mission Drishti, the world's first opto-SAR satellite, stands testimony to this. The CEO and co-founder of Galax-i, Suyash Singh, has spoken exclusively to Akashvani on the benefits of space.

श्रोताओं, आप कर रहे थे हमारा इंतजार, तो आ गए हम पहुंचाने आप तक कार्यक्रमों की बहार। आप सभी को हमारी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपका अपना साथी युगम्बर पोली और लेकर आ गया हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का एक नया अंक लेकर। तो आज के अंक में सूचनाएं होंगी, जानकारी होंगी और गीतों के जरिए हम आपका मनोरंजन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। श्रोताओं, आज हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि 1965 में आज ही के दिन सुनीता विलियम्स का जन्म ओहायो अमेरिका में हुआ था। सुनीता ने नासा के कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में भाग लिया और लंबे समय तक 322 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें श्रोताओं कि सुनीता अंतरिक्ष में मैराथन और योग करने वाली पहली महिला हैं। सुनीता का साहस, जिज्ञासा और कड़ी मेहनत निश्चित रूप से लाखों युवाओं को विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी अंतरिक्ष अनुसंधान में दिलचस्पी ले रही है, क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो आइए, सुनीता विलियम्स के मेहनत और दृढ़ संकल्प को हम नमस्कार देहरादून की ओर से करते हैं एक सैल्यूट।

तो श्रोताओं, निश्चित रूप से सितारे तोड़ने का जज्बा हर किसी के दिल में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम आ गए हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का एक नया अंक लेकर। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं उन खबरों की ओर जो बनी हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। उत्तराखंड में नॉलेज बैंक बनेगा, बच्चों के सुझाव पर सीएम धामी ने की घोषणा, 10वीं और 12वीं के बच्चों को देंगे टैब। एशिया पर सुपरसाइज अब नीनो का खतरा। भारत में 15% कम बारिश, 17 साल में सबसे सूखा मॉनसून। उत्तराखंड में अब नहीं भटकेंगे ट्रैकर्स, 100 रूटों की होगी जीआईएस मैपिंग। हल्द्वानी एवं दून के लिए हेली सेवा हुई बहाल। डेंगू मलेरिया रोकथाम में लापरवाही पर निगम हुआ सख्त। अब राजाजी टाइगर रिजर्व में फुल डे सफारी की हो रही है तैयारी। एमबीबीएस दस्तावेज का सत्यापन पूरा होने तक दाखिला अस्थायी रूप से। और हिमालय क्षेत्र के 200 करोड़ लोगों पर खतरा, वैज्ञानिकों की चेतावनी, 8 देशों में आ सकती है भारी आपदा। तो श्रोताओं, ये थी वो खबरें जो बनी हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। और अब फिर से लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर। मनोरंजन भी आप तक पहुंचाएंगे, साथ साथ जानकारियां भी देते रहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम है।

0: दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। और श्रोताओं, हम दूर रह के तो बात करते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं के दिल में होते हैं, श्रोताओं के बिल्कुल करीब होते हैं, और इसीलिए हम रोज़ाना इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा के लाते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलें, समसामयिक विषयों पर चर्चा भी हो, और सुबह सवेरे का समय है तो आपका मनोरंजन भी हो। तो श्रोताओं, एक बार फिर से बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा कृषि कल्याण की विभिन्न योजनाओं का संचालन पूरे देश भर में किया जा रहा है, इसी पर हमने मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून से बात की। आइए, क्या कहना है मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून का? हम बातचीत कर रहे हैं मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून देवेंद्र सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बातचीत में। कृषि अंतरीकरण की जो योजना है वो जनपद देहरादून में कैसे प्रभावी बन रही है, थोड़ा बताएं।
1: धन्यवाद पोले जी। कृषि यंत्रीकरण सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की योजना जनपद में संचालित की जा रही है और ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है कृषकों की आजीविका एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके तहत जो हमारा एग्री मशीनरी पोर्टल है उसके माध्यम से प्रतिवर्ष किसानों के आवेदन हम लोग लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, जिसमें फार्म मशीनरी बैंक है, पावर बीडर है, पावर टिलर है, ब्रश कटर, आटा की चक्की, बहुत सारे यंत्र हैं। तो किसान पहले पहले आओ पहले पाओ के आधार पे योजना संचालित की जाती थी पहले, लेकिन अब इस साल से जो हमारे व्यक्तिगत यंत्र हैं

0: निदेशालय स्तर से लॉटरी के माध्यम से ये पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, और जो फार्मेसी बैंक है बीबी, वो पहले और पहले पाव के आधार पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय जो फार्मेसी बैंक है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के समूह हैं, FPOs हैं, सहकारिता के समूह हैं, उसके माध्यम से हम लोग किसानों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए किसानों को 5 लाख तक के फार्मेसी बैंक इस समय उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें कि 80% छूट पर किसानों के समय उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार जो व्यक्तिगत कृषि यंत्र हैं वो 50% अनुदान पे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: सर, जैसे फार्म मशीनरी बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल किसी को दिए जाते हैं या फिर एक समूह को दिए जाते हैं? उस समूह को कैसे दिए जा रहे हैं, किस आधार पे?
0: फार्म मशीनरी बैंक जो है समूह को दिया जाता है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो SHG की महिलाएं हैं, चाहे NLM के समूह हैं, FPO के जो समूह हैं, उनको हम लोग इसको देते हैं। और
1: इस योजना के तहत बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे होंगे आपके काश्तकार, तो कैसा उत्साह उनमें दिख रहा है, और जो उनके जो प्रगति है कृषि कार्य में, हम कहें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है?
0: हाँ, निश्चित रूप से सभी किसान इस के प्रति जागरूक भी हैं, और जिसकी बहुत सारी मांग भी आती है किसानों की भी, हम लोग हमें फार्म मशीन बैंक की आवश्यकता। तो फार्म मशीन बैंक में हम लोग उनको जैसे पावर वीडर हो गया, आटा की चक्की हो गया, ब्रश कटर हो गया, इत्यादि यंत्र 5 लाख तक की सीमा के आधार पर देते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी दिखाई दे रहा फील्ड में, और सभी इसको लेने के इच्छुक हैं, और जिससे कि हम लोग प्रतिवर्ष लगभग योजना के माध्यम से 10-15 फार्म मशीन बैंक प्रतिवर्ष किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
1: अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य तो कृषि लागत को घटाना है, तभी कृषि लागत घटेगी तो कृषकों के आय में बढ़ोतरी होगी, जो भारत सरकार का भी यही उद्देश्य है। बहुत सारे कृषक सुन रहे हैं, आपने पोर्टल भी बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ये दिए जाते हैं कृषि यंत्र और ये फार्म मशीनरी बैंक, लेकिन जो लोग अभी भी पोर्टल से दूर हैं वो कैसे आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं? क्या फील्ड में कोई आपके ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे वो बातचीत कर सकते हैं?
0: हाँ, यहाँ पर जैसे हम लोग बार बार हम लोग किसानों को अवेयर कर रहे हैं इस समय विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, और जो हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं प्रत्येक न्याय पंचायत पे, हमारे वहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, वो भी गाँव में जाके किसानों को प्रचार प्रसार करते हैं। जो भी बहुत सारे बहुउद्देशीय शिविर लगते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें भी हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं उसका। हाँ, कृषि विभाग हमेशा हम किसानों के साथ हैं, और बहुत सारी योजना चल रही है इसके अलावा, जैसे सबमिशन और एग्रीकल्चर मैग्नेशन कृषि, इसके अलावा एक इस समय बहुत सारी महत्वपूर्ण योजना चल रही है फार्मर रजिस्ट्री। इस समय किसानों का हम लोग फार्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जैसे PM किसान योजना है, फसल बीमा योजना है, वो भविष्य में फार्मर ID के माध्यम एक किसान की पहचान होगी, उसमें किसान का पूरा ब्यौरा उसमें रखा जा रहा है, जैसे उसके पास कितनी ज़मीन है, उनके द्वारा क्या क्या फसल बोई जा रही है, उसमें पूरे एक डिटेल इस समय विभिन्न कैंप के माध्यम से कृषि विभाग, राजस्व विभाग इसमें लगा हुआ है, और बहुत सारे इसमें अभी तक हम लोगों ने 20,000 से ज़्यादा फार्मर रजिस्ट्री भी बना दी गई है। लेकिन सभी किसानों से ये अनुरोध है कि जिनके भी PM किसान सम्मान निधि आ रहे हैं, वो सभी लोग अपना फार्मर ID बना लें, जिससे कि भविष्य में उनको कोई भी परेशानी न हो।
1: तो शुरू, तो आप सुन रहे होंगे कि वो किसान जो अभी तक फार्मर रजिस्ट्री में इनरोल नहीं हो पाए हैं, नहीं बना पाए हैं, वो जल्दी से बना लें, और आपके नज़दीकी फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है, आपकी एक ID तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में जो भी योजनाएं हों वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो सर, इतनी सारी जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं को दी, हमारे काश्तकारों को दी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से पता चल गई होगी, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, हो सकता है उन जानकारियों से आपका कोई लेना देना ना हो श्रोताओं, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सहायक बन सकते हैं जिनको इस जानकारी की आवश्यकता है। और ख़ास बात यही है हमारे इस कार्यक्रम की, हम जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं लेकिन मनोरंजन के साथ। तो हमारा आशय, हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि हम अब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक समझे आप श्रोता। अब हम अपने प्यारे श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनाना चाहते हैं, आइए सुनते हैं।

0: भाई वाह, बहुत सुंदर ये गीत था और हमारे श्रोता आपको भी ज़रूर ये गीत पसंद आया होगा, हमारी ऐसी आशा हम करते हैं। तो श्रोताओं, 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और कार्यक्रम का नाम आप सभी जानते हैं, नमस्कार देहरादून, और आपका प्यार हमारे कार्यक्रम को मिल रहा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो श्रोताओं, दून लाइब्रेरी में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं, तो इसी क्रम में आज प्रातः 10 बजे से क्या कार्यक्रम होना है दून लाइब्रेरी देहरादून में, आइए उसी पर सुनते हैं ये खास बातचीत। आज हम साहित्य पे बात करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं साहित्यकार हैं, हमारे उत्तराखंड के गीतकार हैं, बहुत अच्छा अभिनेता हैं, बहुत सारी फिल्मों में इसमें वो दिखाई दे रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं मदन मोहन डुकनान जी से, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की आपको। आज आपके जीवन में एक और कड़ी जुड़ने वाली है और आपकी एक पुस्तक का विमोचन होने वाला है, गजल संग्रह ये है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे।
1: नमस्कार पोली भाई, धन्यवाद। आज मेरी पांचों कविता पुस्तक जो कि एक गजल संग्रह च, जैक नाम च हवे जात सी उड़ दिन सुख, ये लोक अर्पण होल च। और ये माँ जो मुख्य अतिथि छन श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारा गढ़रथ, और विशिष्ट अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी जी, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी हमारा विशिष्ट अतिथि छन, और दगड़ माँ हमारा जो सम्मानित अतिथि छन गणेश खुकशाल गणी, निदेशक कला और निष्पादन केंद्र HNB। गढ़वाली में बहुत कम गजल विधा का लेखन हुआ है, लिखी तो बहुत पहले से जा रही है पर वो इक्का दुक्का गजलें लिखी गई थी। तो मुख्यतः जो नेत्र सिंह असवाल जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने गजलों पे बहुत अच्छा काम की शुरुआत करी थी। और उसके बाद जो पहला गजल संग्रह, खालिद गजल संग्रह छपा था, मधुसूदन थपलियाल का हर भी था। उसके बाद

0: जी गाएंगे, संगीता ढोंडियाल गाएंगी, किशन महिपाल जी गाएंगे, आलोक मलासी जी गाएंगे, दिल्ली से आ रही हैं डॉक्टर कुसुम भट्ट वो गाएंगी, और गिरीश सुंदरियाल जी, ये 6 लोग इस किताब की गजलें गाएंगे।
1: तो शो तो आप सुन रहे होंगे कि लोकार्पण भी होना है, साथ ही जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको गज़लें सुनने भी मिलेंगी मदन डुकलान जी की। अच्छा डुकलान जी, गज़लों का जो सीधा संबंध माना जाता है वो उर्दू से, हम इसको सीधे जोड़ के
0: बिल्कुल
1: देखते
0: उर्दू
1: हैं,
0: फारसी से
1: गढ़वाली
0: जुड़ी
1: में गज़ल को कुछ
0: नहीं।
1: लोग अलग तरह से देखते हैं, क्या आपका कहना है?
0: देखो मूलतः तो ये उर्दू फारसी से ही गजल की शुरुआत हुई है और वो होते होते हिंदी में आई है, जिसमें बहुत बड़ा नाम है हिंदी में गजलें लिखने वाले दुष्यंत कुमार त्यागी जी, और साथ में कुछ उसके बाद जो प्रगतिशील गज़लें लिखी गई हैं उन्होंने, पुराने जो उर्दू शायरी का गज़लों का तेवर था, जो उनका मिजाज था, उससे हटकर वर्तमान समय की समाज पर, राजनीतिक दिशाओं पर उन्होंने गज़लें लिखनी शुरू करी और वो बहुत पसंद करी गई। और दुष्यंत जी की गज़लें तो आज भी हर मन से लोग उद्धृत करते हैं उनके शेर, और उन्होंने गज़ल को अलग तेवर दिया। इससे पहले नहीं तो माशूकी और प्यार प्रेम की ही गज़लों पे ज़्यादातर फोकस होता था गज़ल का सब्जेक्ट। तो गढ़वाली में जब गज़ल लिखनी शुरू हुई तो उसको नई धार नेत्र सिंह असवाल जी ने दी, और बहुत अधिक, अभी इतनी प्रचलित विधा नहीं है गढ़वाली में लेखन की है, लेकिन बहुत लोग गज़लें लिख रहे हैं आज के दौर में और वो बहुत समसामयिक गज़लें लिख रहे हैं, और उन गज़लों का जो कंटेंट है, जो विषय है, वो आज की जो हमारे गांव की, हमारे समाज की, हमारी ज़िंदगी की वर्तमान कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है, कितनी कठिन ज़िंदगी के दौर में हम जी रहे हैं, वो सब उस विषय उन गज़लों में है, और प्यार प्रेम भी है उनमें, तो उसमें हर विषय पे आज गढ़वाली में गज़लें लिखी जा रही हैं।
1: जो आज जिसका विमोचन हो रहा है उसमें किन विषयों को आपने लिया है?
0: मेरे इस पुस्तक में हर मिजाज की गज़लें हैं, उसमें दार्शनिक गज़लें भी हैं, गांव के दुख सुख की है, प्यार प्रेम की गज़लें हैं, राजनीतिक हालातों की गज़लें हैं, और अधिकतर गज़लों का मिजाज जो है पहाड़ की पीड़ा पर है, और दर्शन भी है उनमें काफ़ी गज़लों में। तो वो कोशिश करी है मैंने कि मैं सभी विषयों को इसमें संकलित करूं, हर विषय पे लिखने की कोशिश करी है मैंने।
1: बिल्कुल, बहुत सारे विषयों को आपने समाहित किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ये पुस्तिका होने वाली है। तो श्रोता आप सुन रहे थे कवि साहित्यकार मदन मोहन डुकलान जी, और आज आपकी गढ़वाली गजल संग्रह हवै जासी उड़दन सुख का लोकार्पण हो रहा है, और लोकार्पण हो रहा है दून पुस्तकालय में। तो हमारे वो श्रोता जो साहित्य से अभिरुचि रखते हैं, जो मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं लाइव हमारे मदन मोहन डुकलान जी की रचनाओं को, आज आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो सर बहुत सारी बातें आज आपसे हुई हैं, आज के इस खास दिन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं आपको सूचना मिल ही गई है कि दून लाइब्रेरी में 10 बजे से कार्यक्रम होना है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो श्रोताओं कैसा लगता है आपको अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, और कैसा लगा आज का ये अंक हमें ज़रूर बताएं, लिखें हमें पत्र और भेज दीजिए इस पते पर जो है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास देहरादून, हमारा पिन है 2480001। अच्छा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है नमस्कार देहरादून @gmail.com। तो भेजिए हमें पत्र, हमें रहेगा आपके पत्रों का

तो श्रोतों, आशा करते हैं कि ये गीत भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आज का अंक भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पता हमने बता दिया है, आप हमें पत्र लिखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ आगे बढ़कर हम इस कार्यक्रम को और भी रोचक और खूबसूरत बना सके। तो श्रोताओं, वक्त हो गया है आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ कि कल फिर एक नए अंक के साथ आपसे करेंगे मुलाकात। फिलहाल अपने साथी योगम्बर पोली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार देहरादून।

आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था अभिलाषा, गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत आर डी बर्मन का था। श्रोताओं, हरियाली से जीवन भी खुशहाली है, तो आइए पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम मन की आँखें।

श्रोता सुन रही थी सदाबहार फिल्म संगीत। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे सुबह 9:45 पर 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 9:10 हुए हैं, अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये

0: कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
1: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। और जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई, तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा। और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में CEO बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
0: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
0: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
3: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविक
4: सकता है,
3: वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ। तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं। तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
0: जी
3: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
0: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
5: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
0: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
1: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर

0: के खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वही स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो 20-25 क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आया, तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में, और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए हैं लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ, तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी,
1: बिल्कुल
0: तो ये हुआ है
1: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं, तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
2: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं, आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
1: जी,
2: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है। वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
2: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी जी।
2: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल,
2: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई डैम्स, कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ

0: परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया,
1: बिल्कुल
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है, वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है।
1: जी
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलिए। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ, उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चर आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया, और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे। तो हर एमएलए को, हर एमपी को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं, और इसकी वजह से जियो स्पेशल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया

0: है मतलब सोचने का। अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है, केतकर जी?
1: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया। अब कहने के लिए तो ये नॉमेनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं, ये तो हैंडीकैप है,
0: नहीं,
1: वो अब दिव्यांग
0: दिव्यांग
1: हो गया,
0: जी।
1: वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में, मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट
0: जी
1: लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ,
0: जी जी
1: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे, ये नहीं है, ये चिंतन है
0: बिल्कुल
1: हम पूरे भारत को लेकर। और उन्होंने एक उसमें कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था।
0: जी
1: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है,
0: जी
1: सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना
0: नहीं
1: नहीं होती
0: होती
1: है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में, वो आपने जो पूछा, तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स आप अपने आप आते
0: ये
1: हैं।
0: हेल्दी कंपटीशन की बात होती है। और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग, जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर योजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था, और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका, और ये पोजिशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए, उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े, और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजिशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है यार, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही, इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए, और ये बहुत, मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
0: जी आप बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती हैं। अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है। तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में, उसे आप
1: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम, हमारे कार्बन इमिशन को

0: लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए।
1: तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है, इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के दें। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
2: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
3: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग थी, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था। ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
2: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
0: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते, सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
0: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशन भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
2: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
3: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे
2: जी।
3: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
2: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उस नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। सुबह के 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, फिल्म का नाम था आंधी। गीतकार थी गुलजार और संगीतकार थे आरडी बर्मन। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 10:30 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही आप सुन पाएंगे 12:30 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में नए नियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम अगर तुम न होते। गीतकार है गुलशन बावरा और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आइए सुनते हैं आडे बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम बरसात की एक रात।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नीदरलैंड के तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से हरिद्वार कुंभ में ग्रीन घाट विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्रों के जरिए MBBS में दाखिले के सामने आए फर्जीवाड़े की जांच 7 सदस्यीय विशेष जांच दल करेगी। प्रमुख जनगणना अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हरिद्वार में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के सफल, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% आरक्षण मिला। सेवा संकल्प सप्ताह के तहत देहरादून में 21 सितंबर में विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को आवश्यकता अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बैठक में पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। खेल महाकुंभ 2026-27 के अंतर्गत मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हरिद्वार स्थित योग स्थली खेल परिसर में शुरू। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली, अगस्मुनि और ऊखीमठ विकास खंडों की सभी न्याय पंचायतों में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए नई टिहरी से क्रीडा भवन में ओवरसीज प्लेसमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को 50% आरक्षण मिला। और मौसम विभाग ने राज्य में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना व्यक्त की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

0: Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवाचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं. हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. सोचने की शक्ति. यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं. आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं. व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है. इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें. निर्णय लेने की क्षमता. एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए. सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है. यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है. निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515 7239। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा, धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:12 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे निखिल पोल और साथियों की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम था बर्फी। गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं जदित ललित के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम यस बॉस।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
0: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले हम आपको याद दिला दें, दोपहर 12:30 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वीं रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में नए नियुक्त युवाओं को 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा 12:30 पर। बहनों के लिए महिला जगत कार्यक्रम

प्रसारित किया जाएगा दोपहर 3 बजे। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। आइए अब सुनते हैं अभी जोधपुर कर सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है जीरो। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार अजय अतुल।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोतों इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद 10:30 पर आप सुन पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 होने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: environmental protection as part of the right to life. Sri Lanka's Ipavela case connected sustainable development with finite natural resources and environmental responsibility. South Africa's Constitutional Court has treated sustainable development as the framework through which environmental protection and socio-economic developments are to be reconciled. Brazil's Supreme Federal Court has gone further, addressing not merely individual environmental injuries, but governments' omissions and the functioning of environmental policy itself. Chile, Russia, and Armenia further offer constitutional perspectives on environmental rights, sustainable development, and responsibility towards future generations. The United States also reminds the environmental adjudication must operate within statutory boundaries and principles of institutional competence. Australia, meanwhile, has required its courts to confront difficult questions of climate science, causation, and the possible reach of common law duties. These varied challenges and approaches demonstrate that comparative environmental jurisprudence should not become an exercise in transplantation. It should become an exercise in dialogue. Through each enlightened decision, courts around the world have endeavored to highlight that the environment is not an inert backdrop to human ambition, but a living, breathing protagonist in the story of our shared well-being. Each judgment pronounced is a drop that joins the larger stream of global environmental stewardship. But then the tide of justice cannot flow in isolation. It draws strength from the tributaries of collective will, scientific wisdom, and international cooperation. Our courts must become the bridge between the sagacity of our ancestors and the aspirations of our descendants, ensuring that the river of progress does not run red with the silt of destruction through the rocky terrains of inaction and indifference. As we embark on this conference, let us together ensure that this river of responsibility never runs dry and that it continues to flow strong and clear for generations to come. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी सत्र को संबोधित कर रहे थे। साथियों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दुनिया भर के अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाने के लिए पर्यावरण और जलवायु की गतिशीलता का भविष्य इस विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस खास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का मकसद पर्यावरण से जुड़ी अहम चुनौतियों पर सार्थक बातचीत, जानकारियों के आदान प्रदान और साथ साथ मिलकर काम करने के लिए एक बेहतरीन ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के जाने माने एक्सपर्ट्स, जुडिशियल और कानूनी पेशेवरों, पॉलिसी निर्माताओं, शिक्षाविदों और मुख्य हितधारकों को एक साथ लाती है। और अब प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर एनजीटी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे।
3: And our Prime Minister has launched the NGT mobile application and now a short film on NGT.
4: NGT mobile application एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो न्यायिक सेवाओं को आपके मोबाइल तक लेकर आता है। अब अपने केस की जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। बस केस नंबर, ईयर और जोनल बेंच दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में केस स्टेटस आपके सामने होगा। अगली सुनवाई की तारीख जाननी हो या कॉज लिस्ट देखनी हो, सभी आवश्यक जानकारी अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन के माध्यम से आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस,

0: anytime, anywhere.
1: That was a short film on the features of the National Green Tribunal mobile application, and the plenary session is packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
2: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं.
1: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी.
3: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यह हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है. अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर, भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है. मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है. इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है. यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है, और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए. हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी

दुनिया के सामने रखा है, इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में LED बल्ब जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है।

करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब्स घरों में पहुंचाए हैं और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, ये आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3000, वही पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी हैं। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे, 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर
डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं। बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में
करोड़ों

0: पैड लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That, ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister India delivered the inaugural address at the Future of Environment and Climate Dynamics Conference organized by the National Green Tribunal here at the plenary session of Vigyan Bhavan. And now the Honorable Prime Minister is departing from the plenary hall. He's shaking hands with the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, and the Chairperson of the NGT, Justice Prakash Srivastava, and the Chief Justice of India, Justice Shri Suryakant, and the Attorney General for India, Shri R. Venkatramani. And the dignitaries have now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And Kamal, the Prime Minister, in very unequivocal terms, mentioned about India's commitment, deep commitment to nature and environment since the dawn of civilization. The Prime Minister complimented the NTG for organizing this timely conference, and he said that carbon emission is wrongly blamed on developed countries, especially of the global south. The historical truth is that the Honorable Prime Minister mentioned that per person emission in India is below 50% of the global average. The developed countries have a per person emission that is more than six times that of India. The Prime Minister mentioned that our traditions and strengths are being shared with the world today. At the Conference of Parties 21 in Paris, the Prime Minister mentioned that India mentioned about convenient action and conformity for change. The Prime Minister mentioned the initiatives of India, such as the One Sun, One World, One Grid, the International Solar Alliance, the CDRI, the Global Biofuel Alliance, the Big Cat Alliance, and Mission Lifestyle for Environment. India's ancient knowledge and its deep commitment to environment is well known. Today, India is a key player in the world of renewable energy. In the last 12 years, solar energy

0: increased from just 2 gigawatts to more than 160 gigawatts now. Through the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, more than 50 lakh houses have solar rooftop panels now, and 80,000 rupees per house has been given as financial help. Through the Kusum Yojana, 30 lakh solar pumps are now functional. The One Nation, One Grid has been completed, and with the LED bulbs, the question of environment pollution has been taken care of. 20 crore tons of carbon emission have been saved. Wind energy, nuclear energy are now open to private players. Non-fossil fuel capacity has increased by 4 times. India is now committed to coal gasification. India is committed to the welfare of mankind and will be a responsible and sustainable nation, ensuring the future of our civilization, said the Honorable Prime Minister of India.
1: कौशिक, वैसी जलवायु परिवर्तन की चुनौती तो बड़ी जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से हम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ने इस दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण विज्ञान भवन से सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे कमल किशोर बड़ाई और कौशिक रॉय। यह आकाशवाणी दिल्ली का
3: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:30 हो रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपनी साथी रेशमा का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये पहली फरमाइश को जो हम तक पहुँची है। आप हैं कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और मुन्ना नाजिम अंसारी। ये अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है गांव बांडी वाला फजालिका पंजाब से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं क्रियांश बागड़िया, योगेश बागड़िया, ओम बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में हैं स्वीटी छाबड़ा। ये फरमाइश हम तक पहुंची है भोपालगढ़ राजस्थान से। आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो हमें मिली है देहरादून चकरौटा रोड ईदगाह मोहल्ला से। आप हैं सुनील चावला, मीना चावला, दीक्षा चावला, साक्षी चावला। और ये अगली फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं जो हमें मिली है छबीलपुर गुन्नौर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं हरवेश कश्यप, परजीत कश्यप और दिव्यांश कश्यप। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से। आप हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक और साथ में है मधु नायक। कार से आप हैं मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहां सिद्दीकी, विष्णु अग्रवाल। और ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा

बागवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और साथ में हैं प्रांजल राय। तो चलिए श्रोताओं, सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पे कार्यक्रम का ये पहला गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और जुड़े रहिए आकाशवाणी देहरादून के साथ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कुछ नगमे दिल की आवाज़ बन जाते हैं, कुछ गीत किसी की याद बन जाते हैं, महफिल में जब जुड़ते हैं चाहने वाले तो ये पल और भी ख़ास बन जाते हैं। जी हाँ साथियों, जहाँ आपके पसंदीदा नगमे, आपकी पसंद और धुने और आपकी दिल की फरमाइश हमारे साथ जुड़ती है, वो है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो चलिए शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश को जो हम तक आ पहुंची है। आप हैं राजधानी रायपुर से, आप हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वन्ना कुमार, बिट्टू कुमार और अहले खाना, ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। हैदराबाद कीसरा मंडल से आप हैं सदानंद गौड़ और साथ में हैं सत्यमा, और ये फरमाइश लिख भेजिए। भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी।

लक्ष्मी ध्रुव, वीरेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, बेबी वैदेही जोशी और बेबी हंसिका जोशी। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से आप हैं शिवानी कुमार साहू, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, रिमी तनुषी, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू और शिव मंदिर चौक दमदम अर्जुनपुर से आप हैं बसंतलाल साहू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साहू, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, भय कुमार सनातनी और बी के सिन्हा। बढ़ते अगली फरमाइश की ओर जो मिली है ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया से आप हैं महेंद्र, रविंद्र और सभी सदस्यगण। गांव झगोड़ी जिला यमुनानगर से आप हैं रणधीर बागर, गुरमेजू, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और साथ में है मनराज। और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और कस्बा गुन्नौर से आप हैं फारूख अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेजापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलिजबा यान मंसूरी, यश मंसूरी और इनका प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो मिली है उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और साथ में हैं भानु प्रकाश। रानीगंज बंगाल से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है रवि और इंदर ने और दिल्ली से हैं धनवी और सानवी। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं तेलंगाना स्टेट करीमनगर से आप हैं लक्ष्मी नारायण, विजय अभिनय और साथ में हैं साई किरण। आंध्र प्रदेश से आप हैं पताड़ी श्रीनिवास राव और पताड़ी गंगा भवानी। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हम शामिल कर रहे हैं नई दिल्ली से आप हैं स्वीटी इंदर, रोशनी, रेहान शर्मा, धनवी और सानवी। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम और आवाज़ है किशोर कुमार और उषा खन्ना की।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है वर्षा फरमाइश। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है यादव मोहल्ला सनावत से। आप हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र मालाकार, धर्मेंद्र मालाकार, रीना मालाकार, निशा मालाकार, मीरा मालाकार और पी मालाकार। ये अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आप हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर और मलकापुर महाराष्ट्र से आप हैं नारायण इंग्ले, सोपान तारेडे और आशीष मोहेंकर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है, किसी भी गीत में शामिल होने की इन्होंने हमसे फरमाइश की है। गांव टोरोवाल, जिला नवान शहर पंजाब से आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी। ये फरमाइश हमें मिली है शिवाजी चौक कटनी से। आप हैं नील ताम्रिकर, अमर ताम्रिकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रिकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और साथ में हैं उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहा है, फरमाइश लिख भेजी है बी शहर महाराष्ट्र से आप हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश्री महेंद्रे और रामनिवास अग्रवाल और धनंजय टवुल और साथ में हैं पीबी खुलते। शामिल कर रहे हैं अगली फरमाइश को, जो मिली है हैदराबाद की ईसरा मंडलम गौमकुंदा ग्राम से आप हैं बंडी कृष्णा गौड़, मालेश गौड़ और साथ में हैं विजय लक्ष्मी। ये फरमाइश मिली है धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और साथ में हैं अमूल्य बाठे। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आप हैं नील कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैश्वी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। शामिल कर रहे हैं अगली फरमाइश को जो हम तक पहुंची है संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और साथ में हैं ओजस्वी यादव। जिला मुजफ्फरनगर यूपी से गांव भोपा से आप हैं जनेश्वर कुमार आलूवालिया, बालेश्वर कुमार आलूवालिया, राकेश कुमार आलूवालिया, डुग्गू, नंदू, किट्टू, कुलश्रेष्ठ, सारांश, वेदांश और साथ में हैं चूकू आलूवालिया। गांव ही परसोगा तहसील औसा जिला लातूर से आप हैं उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सीमा शेख और करिश्मा शेख। हम शामिल कर रहे हैं अगली फरमाइश को जो मिली है आदर्श

नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। ये फरमाइश हमें मिली है कर्नाटका स्टेक चीना तिरुपति से। आप हैं श्यामाला प्रकाश, अश्विनी आनंद और मनवीप। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक आ पहुँचे हैं अंडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से। आप हैं माखन वर्मा, चांदनी और राहुल गोपी वर्मा। चलिए श्रोता, मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ में हम आपको ये गीत सुनाने जा रहे हैं फिल्म हमदम मेरे दोस्त से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम वर्षा फरमाइश अब यहीं पर संपन्न हुआ है। एफएम 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण

0: विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैर कानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics. In New Delhi today, Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
2: Carbon emission ki jimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. Jabki aitihasik sachchai ye hai, aaj bhi प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: Prime Minister Modi said India is working with the rest of the world and setting new standards for environmental protection through initiatives such as the International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance and Mission Life. Mr. Modi said that over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment. The Prime Minister said India's major focus has been on renewable energy and played a significant role in environmental protection. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More from our correspondent.
3: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be the India's flag bearers at the opening ceremony. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands today. The weather agency predicted heavy rainfall over East Rajasthan, Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu, Puducherry. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं. आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस.
5: ये आकाशवाणी देहरादून है. अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने चंपावत में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाली आंगन मिलन सेवा की तैयारियों की समीक्षा की. कहा अभियान का उद्देश्य पात्र महिलाओं, बच्चों और परिवारों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मियांवाला में 8,64,00,000 रुपए की लागत से विकसित जल सृष्टि पार्क का लोकार्पण किया. बागेश्वर जिले में आयोजित कोट भ्रामरी मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने देहरादून से 8 सदस्यीय नेपाल आपदा राहत सहायता दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. राज्य के राजकीय राजकीय विश्वविद्यालयों और संबंध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% आरक्षण मिला. बद्रीनाथ में आज से 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है. अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. वी मुरुगेशन ने आगामी कुंभ को लेकर मेला पुलिस की प्रारंभिक तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. देहरादून नगर आयुक्त आलोक कुमार ने शहर के सभी जलभराव वाले और डेंगू से प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर नियमित रूप से फॉगिंग व एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन व रोडवेज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस.
4: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है. आइए श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे अफजल अहमद साबरी और साधी के स्वर में कव्वाली.

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: अरे अरे रुको, आगे सड़क पर बरसाती नाला बह रहा है।
4: पानी तो ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, कार निकाल लें क्या?
3: बिल्कुल नहीं, तेज बहते पानी को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पानी जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरा और तेज हो सकता है।
4: तो अब क्या करें?
3: यहीं सुरक्षित जगह पर रुकते हैं और पानी कम होने का इंतजार करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से रास्ता बदलने या सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी मिले तो उसका पालन करेंगे।
4: सही कहा, और आपात स्थिति के लिए मोबाइल चार्ज है?
3: हाँ, टॉर्च, पानी और जरूरी सामान भी साथ है। जरूरत पड़े तो 112-1070 या 1077 पर मदद के लिए कॉल करेंगे। सचेत ऐप से भी मौसम की जानकारी लेते रहेंगे।
4: एक गलत फैसला और मुसीबत बड़ी हो सकती है,
3: इसीलिए याद रखो, सड़क पर पानी दिखे तो रुकना है, जोखिम नहीं लेना है।
2: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अफजल अहमद साबरी और साथी की आवाज़ में कव्वाली। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आइए सुनते हैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
1: आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें।
2: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच हैं, हमारी हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत आभार। सन 2023 में आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के इस क्रम में आज हम 20वां अंक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है, टाइमलाइन डिसिप्लिन भी। और यदि आंकड़ों की बात करें तो केंद्र की तीन प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जहां यूपीए के 10 वर्षों में होने वाली नियुक्तियों की संख्या रही 7,22,000, वहां एनडीए की 10 वर्षों में संख्या रही 10,96,000, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। और यदि हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 13 लाख तक पहुंचता है। बैकलॉग रिजर्व्ड कैटेगरी में होने वाली नियुक्तियों की संख्या यूपीए के कार्यकाल में रही मात्र 1,08,000, एनडीए के कार्यकाल में लगभग 5 गुना अधिक 4,79,000। इसी तरह से बरसों से प्रमोशंस में स्टैग्नेशन आ चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में डीमोटिवेशन देखने को मिल रहा था। आपके नेतृत्व में गत 23 लाख से अधिक गत 12 सालों में प्रमोशंस को क्लियर किया गया है। नियुक्ति प्रणाली में सुधार हेतु अनेकों कदम उठाए गए, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा हो रहा है, और एसएससी पोर्टल में जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस देने का भी प्रावधान उपलब्ध करवा दिया गया है। आंसर की को एक्सेस दिया गया है और ग्रीवंस पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। यदि यूपीएससी की बात करें तो दिव्यांग उम्मीदवारों को लिए सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है, और प्रतिभा सेतु यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रहे, उन्हें अपनी अनुकूलता से जॉब का ऑप्शन मिल सके। मिशन कर्मयोगी यानी नई जिम्मेवारी ग्रहण करने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित किया जा सके, इसके लिए अभी तक 1,72,00,000 यूजर्स अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगाने हेतु सन 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लाया गया, और इसी वर्ष 2026 में उसका अमेंडमेंट। प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ किए हैं। पिछले मात्र 1.5-2 वर्षों के भीतर 6,79,000 से अधिक प्रदेश स्तर की नियुक्तियां हुई हैं। राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में गत 11 वर्षों में आपने रोजगार एवं जीविका के अनेकों विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदुस्तान के नौजवान में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिलता है। स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर के 2.5 लाख तक पहुंच गई, परंतु महत्वपूर्ण बात यह कि 50% से अधिक स्टार्टअप का ताल्लुक छोटे शहरों और कस्बों से है, जबकि 45% से अधिक वुमेन लेड स्टार्टअप्स है। इसी प्रकार मुद्रा योजना के तहत 66% से अधिक लाभार्थी महिलाएं, स्वनिधि योजना के तहत 50,63,000 लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स, और विश्वकर्मा योजना के तहत अपने हुनर से अपनी जीविका कमाने हेतु 2,72,00,000 याचिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी, आज भी हर बार की तरह आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ देश भर में 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से 50% लगभग 26,000 का ताल्लुक फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ है। अंत में प्रधानमंत्री जी केवल इतना ही कहना है कि आज जबकि हर योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रख करके की जाती है, तो ये एक सुखद संयोग है कि आज ये नौजवान जो आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प एक ऐसे समय में ले रहे हैं जबकि सारा देश सेवा संकल्प अभियान मना रहा है। इनके संकल्प को सिद्धि प्राप्त हो, भारतवर्ष को शीर्ष स्थान प्राप्त हो, इसी कामना से आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।
3: दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकॉनमी भारत, बीते 12 वर्षों से लगातार अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की हर उपलब्धि के केंद्र में है भारत के युवा और उनकी अटूट संकल्प शक्ति। और जब राष्ट्र सेवा का अवसर स्वयं सरकार में हो, तब संकल्प मिशन मोड में बदलता है। यही कारण है कि रोजगार मेला आज पारदर्शी, समयबद्ध भर्ती और युवा सशक्तिकरण का एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। चयनित युवा गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारतीय रेल, स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सेवाएं देंगे। देश के कोने कोने से चुने गए ये युवा बनेंगे कहीं सुरक्षा की ढाल, कहीं स्वास्थ्य का भरोसा, कहीं बैंकिंग की गति, कहीं शिक्षा की नींव, कहीं रेल की रफ्तार, तो कहीं राजस्व प्रशासन के माध्यम से देश की ताकत। ये सभी कर्मयोगी बनेंगे विकसित भारत 2047 के अहम भागीदार।
4: विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
3: टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, निष्पक्ष चयन और मातृभाषा में परीक्षा की सुविधा ने हर क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही सरकारी नौकरी में चयनित युवा आज के समय की जरूरत के हिसाब से बेहतर भूमिका निभा सकें, इसीलिए मिशन कर्मयोगी के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1.7 करोड़ से अधिक लर्नर्स और 8 करोड़ से अधिक कोर्स कम्प्लीशंस हर कर्मचारी को फ्यूचर रेडी, सक्षम और सिटीजन सेंट्रिक बना रहे हैं। भारत सरकार का हर नया कर्मयोगी ईमानदारी, दक्षता और सेवा के साथ विकसित भारत की आर्थिक नींव को और मजबूती देगा, क्योंकि जब युवा कर्तव्य से जुड़ता है, राष्ट्र निर्माण की शक्ति और बढ़ती है। रोजगार मेला, नियुक्ति से राष्ट्र निर्माण तक।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

0: मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
1: मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके परिवारजनों की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई है। साथियों, भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं, और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं। साथियों, बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास। हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईज को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्क फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले एम्प्लॉयर्स को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यानी देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर्स का विस्तार होता है। आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको अपने कार्यकाल में निरंतर रिफॉर्म्स को और गति देनी है। टैक्स और कंप्लायंसेस को सरल बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो, एजुकेशन और स्किलिंग में रिफॉर्म हो या नए सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए खोलना हो या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, हर स्तर पर देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस का लगातार फुल स्पीड में चलना जरूरी है। और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वर्तमान और आने वाले वर्षों में इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी की भारत सरकार में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए आप अपने काम को बखूबी निभाएं। मेरा फ्री आग्रह होगा, आपका हर निर्णय, हर फाइल पर किया गया सिग्नेचर युवा एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको अपने कार्यकाल में देखना होगा युवाओं के रास्ते की बाधाएं हटे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने। साथियों, अब आप स्वयं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए आपका प्रयास हो कि जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं या जिन परेशानियों से आपके माता पिता को गुजरना पड़ा है, उनसे दूसरे युवाओं को न गुजरना पड़े। जो तकलीफें आपके मां बाप ने सही है, जो तकलीफें कभी आपको सहनी पड़ी है, वो अब हमारे देश के किसी नागरिक को सहनी न पड़े, ये काम आपको सरकारी व्यवस्था में आते ही करना चाहिए। साथियों, आज देश में हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप लगातार सीखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अब यहां से निरंतर सीखते रहने की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को समझना है। मिशन कर्मयोगी इसी उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म।

0: हो, आपका काम किसी न किसी रूप में देश के सामान्य नागरिक के जीवन को छुएगा। किसी बुजुर्ग की पेंशन आपके काम से आगे बढ़ेगी, किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी होगी, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा आपके डिपार्टमेंट हो जाती होगी। हो सकता है किसी नागरिक के लिए आप ही सरकार का चेहरा हो। आपका व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ईमानदारी, इन सबसे तय होगा कि उस नागरिक का सरकार के साथ अनुभव कैसा रहता है। इसलिए साथियों, सरकारी सेवा में हमारा मंत्र होना चाहिए, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक की सेवा राष्ट्र की सेवा है। आपकी सफलता तब और बड़ी होगी जब आपके काम से किसी नागरिक का जीवन आसान होगा। मुझे विश्वास है आप जहां भी रहेंगे, जिस भी विभाग में रहेंगे, कर्तव्य और सेवा भाव से अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अभी आप सुन रहे थे 20वें रोजगार मेले के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।
2: मैंने तेरे ही
3: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोता, हम आपको याद दिलवा दें, दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारा आज का कार्यक्रम समर्पित है महावीर चक्र से सम्मानित मेजर भूपेंद्र सिंह को।

महिला बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत 3 बजे और 3:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत गाने नए तराने।

शाम 4:30 पर सुनना ना भूले एक कलाकार फिल्म संगीत और हमारे आज के कलाकार होंगे गीतकार गायक लकी अली। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

पर्वती अंचलो का कार्यक्रम ग्राम जगत है, आप सुन सकेंगे शाम 5:45 पर। और किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम किसान बाड़ी। चर्चा होगी कृषि यंत्रीकरण, उप मिशन व सब्सिडी योजनाएं, मटर की खेती, मंडी का भाव और मौसम की जानकारी।

फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे रात 7:40 पर, और आपका पत्र मिला आप सुन सकेंगे रात्रि 8:10 पर।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से ये बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
2: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैर कानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहली मुख्य समाचार। विश्व बैंक सहायतित एसपीएफएम परियोजना से उत्तराखंड में वित्तीय सुदृढ़ीकरण को मिलेगी गति। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर परियोजना की तैयारियों और भावी कार्य योजना पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री रेखार्य ने चंपावत में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाली आंगन मिलन सेवा की तैयारियों की समीक्षा की। हरिद्वार कुंभ में नीदरलैंड के विशेषज्ञों की मदद से विकसित होंगे ग्रीन घाट, संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण। और सेवा संकल्प अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले की सभी न्याय पंचायतों में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन मजबूत करने के लिए विश्व बैंक सहायतित एसपीएफएम परियोजना प्रस्तावित है। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर परियोजना की तैयारियों और भावी कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में परियोजना के माध्यम से राज्य की राजस्व क्षमता को मजबूत करने, वित्तीय प्रबंधन में सुधार और डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना के तहत राजस्व अर्जन बढ़ाने के साथ ही डिजिटल नवाचार, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय और परियोजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखार्य ने चंपावत में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाली आंगन मिलन सेवा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पात्र महिलाओं, बच्चों और परिवारों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को जिले की सभी 681 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित और जन सहभागिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए।
1: भावत में 681 हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है। उन 681 आंगनबाड़ी केंद्रों में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान हो सके, आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान हो सके, लाभार्थियों के साथ संवाद हो सके, बच्चों से क्रिएटिव एक्टिविटी कराते हुए उनका सम्मान हो सके। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त करने का और लाभार्थियों को सशक्त करने का काम किया, तो एक संदेश जो है उन केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का जनपद चंपावत की ओर से भी और समस्त हमारे 13 जनपदों से ये संदेश जाना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जो उनका पूरा जीवन जो है राष्ट्र निर्माण में और सेवा करने में उनका पूरा जीवन जो समर्पित हुआ है, और हमारा जो भविष्य आंगनबाड़ी केंद्रों से जो निर्मित होता है उस भविष्य को हम सशक्त करने का उनको वादा भी करते हैं।
0: देहरादून जिला प्रशासन की ओर से ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज गंगानगर में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रोविशन विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने करीब 900 विद्यार्थियों और 18 शिक्षकों को बाल सुरक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, गुड टच बैड टच, पोक्सो और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। टीम ने बताया कि 1098 बच्चों के लिए 24 घंटे निशुल्क हेल्पलाइन सेवा है, जबकि महिलाओं से संबंधित समस्याओं के लिए 181 और आपात स्थिति में 112 पर संपर्क किया जा सकता है। शिविर के बाद टीम ने तपोवन क्षेत्र से कूड़ा बीनते 3 बच्चों को रेस्क्यू किया। बच्चों की तपोवन चौकी में जनरल डायरी GD दर्ज कराई गई और उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया गया।

0: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से नंदा देवी महोत्सव के अवसर पर विधिक जागरूकता, कौशल प्रशिक्षण और निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। महोत्सव में लगाए गए स्टॉल के माध्यम से आमजन को कानूनी अधिकारों की जानकारी, निशुल्क कानूनी परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दौरान महिलाओं और युवाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। वहीं विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की ओर से नेत्र जांच, सामान्य चिकित्सा और बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। जरूरत के अनुसार निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।
1: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के लिए गंगा तटों को पर्यावरण के अनुकूल नया स्वरूप देने की पहल की जा रही है। गंगा के किनारे हरित आवरण से युक्त ग्रीन घाट विकसित करने की इस अवधारणा को धरातल पर उतारने में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नीदरलैंड का तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। इसी क्रम में नीदरलैंड के विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित ग्रीन घाट क्षेत्र और आस्था पथ का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल ने मेला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। योजना के तहत हर की पैड़ी को जोड़ने वाले धनुष पुल से बैरागी कैंप तक आस्था पथ से जुड़े गंगा घाटों को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की परिकल्पना की गई है। इससे श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए विकसित होने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग और गंगा तट के आसपास का क्षेत्र प्रकृति व स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी अधिक आकर्षक बनाया जा सकेगा। प्रतिनिधिमंडल ने मेलाधिकारी सोनिका से मुलाकात कर परियोजना के बारे में विचार विमर्श किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले के जखोली, अगस्त्यमुनि और उखीमठ विकासखंडों की सभी न्याय पंचायतों में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, रास्तों और गांवों के आसपास सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कूड़ा निस्तारण के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के तहत तीनों विकासखंडों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित कर पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं सेवा की कहानी के तहत जनसंवाद कार्यक्रमों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों से अवगत कराया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने आम जन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत लोगों को उनके निकट जाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है। श्रीमती आर्य ने अधिकारियों को इस कार्य में शिथिलता न बरतने और तत्परता से जनहित में कार्य करने के निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं से 327 लोग लाभान्वित हुए। वहीं 65 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 51 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 14 शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजी गई। शिविर में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। टिहरी जिले में युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए नई टिहरी में ओवरसीज प्लेसमेंट कार्यशाला आयोजित की गई। जिला सेवायोजन कार्यालय और कौशल विकास व सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में जर्मनी और जापान में नर्सिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए आवश्यक योग्यता, कौशल प्रशिक्षण, भाषा ज्ञान और प्लेसमेंट प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने युवाओं से अपनी योग्यता, कौशल और रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण लेकर रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।
2: पहले जो ये हमारी स्कीम होती थी उसमें हमारे देहरादून में जो एक हब होता था वहीं पर ही बच्चे जाते थे और ट्रेनिंग करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज अब ये ट्रेनिंग हो रही है और बैचेस यहीं बन रहे हैं जहाँ पे बच्चों को हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी दी जाएगी। तो आज जो हमारे इंटरेस्टेड बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो सभी यहाँ आए हैं। ये वर्कशॉप उनके सारे सवाल जवाब को क्लियर करने के लिए है और बहुत खुशी है मुझे जानते हुए कि यहाँ पे काफी अच्छा बच्चों ने अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जनपद टिहरी में जल्द ही बैच शुरू करेंगे जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी सैलरी पैकेज में विदेश में
0: कार्यशाला में 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। पौड़ी जिले के कोटद्वार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों

0: एमएसएमई को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सुविधाओं, बाजार और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। जिला उद्योग केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों को खरीद और विपणन सहायता योजना सहित ओडीआर, ऋण गारंटी सुविधा, टीआरईडीएस, एसआरआई फंड, पैकेजिंग और गुणवत्ता मानकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने उद्यमियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, बाजार तक पहुंच और वित्तीय संसाधनों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान उद्यमियों की योजनाओं और वित्तीय सुविधाओं से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व बैंक सहायतित एसपीएफएम परियोजना से उत्तराखंड में वित्तीय सुदृढ़ीकरण को मिलेगी गति। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर परियोजना की तैयारियों और भावी कार्ययोजना पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री रेखारिया ने चंपावत में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाली आंगन मिलन सेवा की तैयारियों की समीक्षा की। हरिद्वार कुंभ में नीदरलैंड के विशेषज्ञों की मदद से विकसित होंगे ग्रीन घाट, संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण। और सेवा संकल्प अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले की सभी न्याय पंचायतों में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के मधुर स्वर में फिल्म कच्चे धागे से। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत सचिन, माफ कीजिएगा, ये सुनते हैं ये अगला गीत जिगर और प्रिया सराय की खूबसूरत आवाज में। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से गीत है जयदीप साहनी का और संगीत है सचिन जिगर का।

FM 100.5 MHz पे श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत फिल्म सिंघम से। गीतकार हैं स्वानंद किरकरे, संगीतकार हैं अजय अतुल और गीत को अपनी मधुर आवाज से सजाया है कुणाल गांजेवाला और ऋचा शर्मा ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।

0: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष। मैं हूं गीता नेगी और इस कार्यक्रम में आज मैं आपको सुनवा रही हूं नशे के विरुद्ध। इस विषय पर रेणु उप्रेती की डॉक्टर देवेंद्र भसीन और एडवोकेट ललित मोहन जोशी से बातचीत।
1: नमस्कार, मैं रेणु प्रतिपंत। विशेष कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। दरअसल हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारी देश की आबादी का एक हिस्सा, अगर हम देखें तो

0: हो रहा है तो जो शिक्षण संस्थान है, क्योंकि उसकी पहली शिक्षा उसका शिक्षण संस्थान होता है जहां से वो शिक्षा लेता है, तो उनकी क्या भूमिका रहती है और कैसे उनको रोका जाए, क्या इसके लिए कार्य किए जाएं, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सीधे उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन, जो उपाध्यक्ष हैं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं एडवोकेट ललित मोहन जोशी, जो अध्यक्ष हैं CIMS ग्रुप के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि ललित मोहन जोशी पिछले 15 सालों से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सजग इंडिया के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उनको जागरूक करते हैं, जिसके लिए उनको सम्मानित भी कई बार किया जा चुका है। तो आज आपसे भी कई विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में भसीन जी के पास, क्योंकि उत्तराखंड के एक बड़े महाविद्यालय में उन्होंने बहुत समय तक सेवाएँ दी हैं, वो युवाओं के बीच रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं के बीच में जब आप रहे तो आपने देखा होगा कि कई युवा हैं जो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या इसमें आपको क्या लगती है?
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में उनकी बार बार अपील रहती है कि हमारे युवाओं को नशे से भी दूर रहना चाहिए, तो ये जो विषय आज आपने लिया वे उनके जन्मदिन के भी अपने परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है, और जो सामाजिक पृष्ठभूमि आपने बताई है उसके रूप में भी बहुत अच्छा है। आज निश्चित तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो युवक है उसका एक काफ़ी बड़ा वर्ग जो है वो नशे की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक संवाद हुआ था और उसमें उत्तराखंड के जो एक टास्क फोर्स है उसके IG जो थे उन्होंने एक बात कही थी कि उत्तराखंड में करीब 50% युवक जो है वो नशे की ओर जा चुका है, जबकि संख्या कुछ समय पहले कुछ कम थी। यानी कि ये स्थितियाँ दिन पर दिन और गंभीर हो रही हैं। तो ऐसे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और सरकार और सभी जो पक्ष हैं इसके लिए काम कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ही सामायिक और महत्वपूर्ण है। जहाँ तक उनके नशे में जाने का सवाल है तो इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण तो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हैं, जिसमें किसी अवसाद के कारण, किसी और समस्या के कारण वो नशे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन एक बड़ा कारण जो वो ये है कि वे जिस

0: सारे कारण हैं, लेकिन चूंकि हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं को और देश के युवाओं को बचाना हम सबका एक फर्ज भी है, और निश्चित रूप से जिस देश में युवा शक्ति होगी उस देश से बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती है, देश की, समाज की, परिवार की। लेकिन अगर एक बाहरी ताकतों को अगर हम देखें, अगर इंटरनेशनल लेवल में देखें, तो एक ऐसा भी संगठन या गिरोह कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के युवाओं को नेस्तनाबूद करना चाहता है, या जिनका टारगेट हिंदुस्तान है, कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान को अगर कमज़ोर करना है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि अगर हिंदुस्तान का युवा बर्बाद हो गया, अगर बच्चों की जड़ें खराब होगी तो वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि साजिश रूप से, जिस तरह से हम देखते हैं ISI संगठन को देखो, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, चाइना, या हमारा ये गोल्डन ट्रायंगल जो नॉर्थ में है, वहाँ से ड्रग्स जो है ड्रोन के माध्यम से, कैरियर के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से, पंजाब बॉर्डर के माध्यम से, यूपी में आपका बरेली से, उधर कुमाऊं में हल्द्वानी से, इधर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून से, पूरे गढ़वाल में ड्रग्स जा रही है। और मुझे जो लगता है कि चूंकि मैं 15 साल से लगभग पूरे उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों में मैं 8 लाख बच्चों से अभी तक मिल चुका हूं, 2008 में हमने ये सजग इंडिया प्रारंभ किया था, तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन जो है, जागरूकता जो है, वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोग मजाक में लेते हैं, स्कूल भी केवल पढ़ाई पे फोकस करता है कि बच्चे को अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, माँ बाप ये देखते हैं कि पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा नीट में निकल गया, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया, वो बच्चे पे अपनी अपेक्षाओं को भी थोपते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि ड्रग्स में जाने का जो कारण है वो मानसिक तनाव भी है, वो फ्रेंड सर्किल भी है, कहते हैं जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसे आपका वातावरण होगा, जैसे आपकी संगत होगी वैसे आपकी रंगत भी होगी। पीयर प्रेशर तो है ही, हमारे आसपास का परिवेश तो है ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि आज के युग में माँ बाप सब जॉब वाले हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर से जो संस्कार बच्चों को देने थे वो छूट गए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो आप कह रहे हैं हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जो आबादी है वो युवा है, और युवा ही हमारे देश का भविष्य, ऊर्जा, क्षमता है। लेकिन अभी हम देखते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें खत्म करने का प्रयास इन ड्रग्स, नशे के माध्यम से किया जा रहा है, जो हमें समझ में आता है। आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में जो देहरादून के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर आशीष चौहान, हाल ही में उन्होंने एक बैठक की थी, और उनका भी प्रयास है क्योंकि देहरादून में हम देखते हैं नशा एक बड़े हब के रूप में पनप रहा है, तो कैसे उसकी रोकथाम करनी है, इसको लेकर उन्होंने विशेष बैठक की थी, खास रिपोर्ट आप देखिए।
2: उम्र सपनों को उड़ान देने की, लेकिन नशा इन्हीं सपनों को बर्बाद कर सकता है। नशे की लत से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इसी दिशा में देहरादून जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने की पहल की है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठकर नशा मुक्ति को लेकर विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। देहरादून के कलेक्ट्रेट स्थित ऋषि पन्ना सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने सभी शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नशा मुक्ति विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने 18 अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों को 100% ई शपथ दिलाए जाने, SOP के अनुरूप प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एंटी ड्रग कैंपस कमेटी का गठन करने, विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की वैज्ञानिक जानकारी देने, एंटी ड्रग गतिविधियों को पाठ्यक्रम और नियमित शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने, मानस हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नशा मुक्त देवभूमि का

0: एक अभियान है, एक संकल्प है, तो ये एक मल्टी डिपार्टमेंटल एफर्ट है जिसमें राज्य सरकार की सभी एजेंसीज पूरी तरह प्रयासरत है। जहाँ तक एनफोर्समेंट का सवाल है, जो एंटी ड्रग्स के खिलाफ जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, उसने एक व्यापक स्तर पर पूरे राज्य में एक अभियान इस समय हमारा चल रहा है, जिसके तहत काफ़ी सफलता मिली है। और इस तरह से पूरा प्रयास है कि जो एक पूरा नेटवर्क है उसके विरुद्ध हम लोग एक प्रभावी सशक्त कार्रवाई करें। जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनमें ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता, जो ड्रग्स के एंटी ड्रग्स सेल हैं उनका गठन, तो शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग से बहुत इसमें हमें सहयोग मिल रहा है। सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ने इस ओर अपना एक जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है।
1: जिलाधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण, सकारात्मक सोच, स्वस्थ भविष्य की नींव तैयार करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में नशा मुक्त समाज के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान की जानकारी देने के साथ ही उन्हें नशा मुक्ति के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी बनाना है। नशे के खिलाफ जंग सिर्फ कानून और कार्रवाई तक सीमित नहीं, जागरूकता और सही मार्गदर्शन भी इसकी रोकथाम का अहम जरिया है। इसी सोच के साथ देहरादून जिला प्रशासन अब शिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने की तैयारी में है।
2: तो लौटते अपनी चर्चा पर सीधे वसीम जी से हम बात करेंगे। वसीम जी, शिक्षण संस्थानों को नशा मुक्ति अभियान का प्रमुख केंद्र बनाने के पीछे प्रशासन की रणनीति आप क्या लगता है कि आखिर शिक्षण संस्थानों को ही चुनना क्यों जरूरी समझा गया है?
3: केंद्र सरकार के द्वारा देश को नशा मुक्त करने के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है, उसमें एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे महाविद्यालय हैं, चाहे निजी हमारे अन्य स्कूल हैं। और साथ ही एक तिथि दी गई है कि 2029 तक हमको जो सारे कैंपस हैं इनको ड्रग फ्री करना है। और चूंकि युवा ही सबसे अधिक प्रभावित इससे है, इसीलिए शिक्षण संस्थाओं को इसका एक मुख्य जो है आधार माना गया है। हम जानते हैं कि प्रिवेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यद्यपि नशा मुक्ति के लिए हमको तीन स्तर पर लड़ना पड़ता है। पहला रास्ता है हम जागरूकता पैदा करें, दूसरा है कि जो लोग इसके घेरे में आ गए हैं उनको कैसे बाहर निकालें, और तीसरा ये है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, उन पर कैसे कड़ा प्रहार हो और उनकी चेन को हम किस प्रकार से, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे स्थानीय हो, उसको हम ब्रेक कर दें। तो जहाँ तक शिक्षण संस्थाओं का सवाल है, तो इनकी भूमिका जो मुख्य तौर पर रहने वाली है वो भूमिका है आपकी जागरूकता की। जब हम जो उसके यूजर्स हैं बेसिकली अगर नशे की देखें तो वे हमारे युवक हैं, तो उनको दो स्तर से मैं समझाना है। पहली बात तो ये कि जो लोग नशे में नहीं है वे नशे में ना जाए, इसलिए उनको शिक्षित करना है, उनका जो आत्मबल है उसको और मजबूत कराना है। लेकिन जो बच्चे हमारे किसी कारण से भी नशे के घेरे में आ गए हैं, उनको कैसे हम वापस लें, इसके लिए पूरी अपने आप में एक कार्य योजना है। उसके अंतर्गत हमारी काउंसलिंग है, एंटी ड्रग जो है स्क्वाड्स हैं वगैरह वगैरह। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि केवल भाषण नहीं देना हमको कि हमने कक्षा में जाकर के कोई भाषण दिया। जो विश्वविद्यालयों के लिए या महाविद्यालयों के लिए कार्य योजना है, उसमें शिक्षकों का जो छात्र छात्राएं हैं उनसे पर्सनल इंटरेक्शन वो महत्वपूर्ण बताया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने परिवार में अपनी समस्या नहीं बता पाते, लेकिन शिक्षक को वो अपनी समस्या बता देते हैं, तो उसका मन खोलने के लिए भी जो है ये एक्सरसाइज की जा रही है। जागरूकता के मामले में परिवारों से भी कहा जा रहा है कि वे बच्चों के साथ अपना तालमेल रखें, उनसे बातचीत करें और उनको लगे कि हमारे माता पिता और जो बड़े घर के हैं वे उनके मित्र हैं। तो ऐसे में एक घर से जब एक चेंज शुरू होगी और वही आगे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में चलेगी, तो जागरूकता का जो एक क्रम है वो अपने आप में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसी में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो एक गंभीर स्थिति और बन गई है कि इन जो तस्कर हैं, इन लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो अपने आप में बड़ी गंभीर है। ये पहले छात्र को नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसी छात्र को नशा बेचने के लिए भी जोड़ लेते हैं। तो जो आज के जमाने में फैशन का जमाना है या पैसे की आवश्यकता होती है या पैसा शॉर्टकट से लेने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उससे वो बच्चा भी जो है वो नशा भी करता है और नशा बेचता भी है। तो ऐसे में उस चेन को भी ब्रेक करने की आवश्यकता है।
2: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पे बता रहे हैं। और इसके परिणाम, क्योंकि शिक्षण संस्थानों को अब चुना गया, तो

0: आगे चलकर हमें देखने को मिलेंगे। ललित जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में जब जिलाधिकारी ने बैठक की थी तो उन्होंने शिक्षण संस्थानों को चुना है, आप इस बैठक में शामिल थे। जो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि 18 अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों को ई शपथ दिलानी है। सबसे पहले तो क्या केवल ई शपथ दिलाने से नशा दूर हो जाएगा, क्या युवा नशा छोड़ देंगे, एक सवाल बनता है। दूसरा फिर क्या व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई हैं, संक्षिप्त में आप एक जानकारी दीजिए।
1: जी निश्चित रूप से, देखिए इस पे चर्चा होना ही एक अपने आप में बड़ी बात है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब इस समय राज्य सरकार से लेकर हमारे केंद्र सरकार तक इस पे एक फोकस्ड है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का विशेष इस पे ध्यान है कि जिस तरह से अलगाववाद को नष्ट किया उसी तरह से नशे के अलगाववादियों के पीछे भी इन्फोर्समेंट के थ्रू उन पेडलरों को समाप्त किया जाएगा। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी भी बन जाती है, एक सामाजिक रूप से शिक्षण संस्थानों की। और निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि अक्टूबर माह अंत तक सभी लोग ई शपथ लेंगे। तो शपथ इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं, हम देवभूमि के लोग हैं, हम बड़े आस्थावान लोग हैं, और जब बच्चा शपथ लेता है, संकल्प लेता है कि मैं इस जो आतंक का सबसे बड़ा हथियार, अदृश्य हथियार नशा है, इसके खिलाफ जन जागरूकता फैलाऊंगा, अपने आप को व्यसनमुक्त रखूंगा, अपने परिवार और समाज की रक्षा करूंगा, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाऊंगा, एक अच्छे व्यक्तित्व और इंसान की भूमिका निभाऊंगा, तो मुझे लगता है किसी भी चर्चा, शपथ तो बहुत बड़ी चीज है, अगर हम चर्चा भी करते हैं तो वो सकारात्मक जाती है। तो निश्चित रूप से जब लोग संकल्पित होंगे, उस पर शपथ लेंगे, तो कुछ लोग उस पर उनको संदेश भी देंगे, चर्चा भी करेंगे, यूथ डायलॉग करेंगे। जब इस पर चर्चा होगी, बच्चे समझेंगे कि ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक बच्चों को बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, उनके मन के बातों को नहीं जाना जाएगा, क्योंकि नशा रोकने के लिए केवल ई शपथ तक हमें नहीं रुकना है, हमें बच्चों को उनके मानसिक स्थिति को भी जानना जरूरी है, घरेलू स्थिति को भी जानना जरूरी है। कई बार माँ बाप में विवाद होता है, माँ बाप व्यस्त होते हैं, बच्चों का मन घर जाने को नहीं करता है। बहुत सारे मैं स्कूलों में जब जाता हूँ तो कई बच्चों ने बताया कि घर जाने का ही मन नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि परिवार के माध्यम से, क्योंकि मैं, हमारा बहुत ही मुख्य समाचार चैनल है दूरदर्शन के माध्यम से, पूरे प्रदेश के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उनसे पूछिए, उनसे उम्मीदें रखें, लेकिन अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों पर ना थोपें और हम बच्चों से वार्ता करें। कई बार क्या होता है कि हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। संयुक्त परिवार न होना भी आज बच्चों के अंदर जो संस्कार नहीं आ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है।
0: आगे आपसे इस पर हम बात करेंगे।
1: संयुक्त परिवार होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि समाज, परिवार, शिक्षण संस्थान और सरकार सबको मिलकर इसमें प्रतिभाग करना।
0: बिल्कुल, संयुक्त परिवार की आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्योंकि परिवार से ही बच्चा आगे निकलकर शिक्षण संस्थानों में जाता है, तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है। महत्वपूर्ण बात आपने कही। फजीन जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि हमारे समाज में नशे को रोकने के लिए पुलिस एक तरफ काम कर रही है, सामाजिक संगठन एक तरफ काम कर रहे हैं, शिक्षण संस्थानों को अब चुन लिया गया है, तो तीनों का समन्वय कितना जरूरी है ताकि वास्तव में जमीनी हकीकत में हम देखें तो नशा रुके, इसकी रोकथाम हो, इसको लेकर।
2: बिल्कुल, ये एक इंटीग्रेटेड जो है एफर्ट होना जरूरी है जिसमें समाज के जो लोग हैं वे शामिल हों, शिक्षण संस्थाएं शामिल हो, शासन प्रशासन शामिल हो, क्योंकि इन तीनों की एक साथ जब एक्शन होगा तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी सामने आएंगे। हमको जहाँ एक और तस्कर को रोकना है, वहीं जो नशे में पड़ चुके लोग हैं, बच्चे हैं, हमें उनको इससे बाहर निकालना है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमें जो लोग नशे में चले गए हैं, हमारा जो एक्ट है उसमें उसको दोषी नहीं मानता, उसको पीड़ित मानता है, वो विक्टिम है, तो उसके लिए हमको उसके लिए नशेड़ी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे बीमार बच्चा है जो किन्हीं कारणों से एक गलत रास्ते में चला गया है, तो उसके आत्मबल को, उसके सम्मान को चोट ना पहुंचे, लिए उसको एक बीमार की तरह हमें ट्रीट करना होगा। इसी प्रकार से परिवार की भूमिका का भी एक बहुत बड़ा पहलू आता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो नशे के विस्तार में जिसकी भूमिका है, वो जो हमारे हॉस्टल्स हैं और जो हमारे पीजी हैं, ये भी अपने आप में नशे को बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका है। स्थितियाँ ये बन गई हैं कि कॉलेज के अंदर अगर स्थितियों को कंट्रोल कर भी लिया जाए तो पीजी के अंदर या हॉस्टल के अंदर स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर होती हैं। और जो निजी हॉस्टल या निजी विश्वविद्यालयों के बाहर जो दुकानें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट खुल गई हैं, वे भी नशे के बिक्री का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गए हैं। तो सब चीज़ों की ओर सरकार का ध्यान है, लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी कई बार सामने आता है कि जानकारियाँ तो होती हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। प्रश्न ये आता है समाज की तरफ से कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो एक्शन

0: भी जरूरी है, शिक्षण संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी को मानना होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा
1: जी।
0: कि अभी हाल ही में एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने शेयर किया कि जब उन्होंने विश्वविद्यालयों के वीसी की बैठक करी तो उनसे पूछा क्या आपके नशे की स्थितियाँ हैं, तो किसी विश्वविद्यालय के वीसी ने नहीं कहा कि उनका नशा है। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप अपने कैंपस को नशा फ्री घोषित करिए, वो कर भी नहीं सकते। यानी कि स्थितियां खराब भी है और स्वीकार भी नहीं करते, तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी जो हमारी मूल समस्या है। तो परिवार, शिक्षण संस्थाएं, शासन प्रशासन मिलकर के काम करें और हम जो नशे में पड़ चुके बच्चे हैं उनके प्रति सौहार्द का वातावरण रखें और जो नशा बेचते वाले लोग हैं उनके साथ कोई नरमी ना बरती जाए। तो इन सब चीजों को जोड़ करके हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और देश को नशा मुक्त बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, नशा एक गंभीर समस्या है और इसकी रोकथाम के लिए सभी का समन्वय बेहद जरूरी है, तभी इसकी रोकथाम भी होगी। ललित जी, आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि कई सालों से आप काम कर रहे हैं नशे की रोकथाम पे, कई युवाओं से आप मिलते हैं। जो युवा नशे में पड़ चुका है, इससे जूझ रहा है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की सहायता या काउंसलिंग उपलब्ध है? ऐसी कौन सी काउंसलिंग हो सकती है ताकि वो उससे निकल सके?
2: देखिए, क्योंकि जब बच्चा, पहली कोशिश तो हम सबकी ये होनी चाहिए कि बच्चा नशे में ही ना पड़े। इसके लिए हमें स्कूल लेवल में एक कार्यक्रम बड़ी गंभीरता से चलाने होंगे और एक नैतिक शिक्षा के विषय के रूप में, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में विश्वविद्यालय और स्कूल लेवल में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में लाना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्रशासन से भी बात की, अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जब बैठक हुई थी तो उस पर भी हमने बात की। दूसरा चरण आता है क्योर का, प्रिवेंशन के बाद क्योर वाला और इन्फोर्समेंट। तो मैं अगर क्योर की बात करूं कि जो लोग नशे में पड़ चुके हैं, क्योंकि मैं जो है स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का भी मेंबर हूं, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का, तो उसका गठन ही इसलिए किया गया है कि प्रदेश में जो भी सरकारी हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं या प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि जब कोई बच्चा नशे में पड़ जाता है, अभी हमारी राज्य सरकार जो है हर जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में कुछ बेड्स इसके स्पेशल बना रही है और कुछ कुछ जगह जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत सरकार के सहयोग से भी नशा मुक्त केंद्र को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उस जनपद के ऐसे बच्चे जो नशे में पड़ गए हैं और प्राइवेट में निश्चित रूप से उनको पेमेंट करना पड़ता है, प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में रखते हैं और वहां पर उतनी सुविधाएं भी नहीं होती है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र खोलने का मतलब जेल नहीं है। वहां पर प्रॉपर काउंसलर चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, प्रॉपर डाइटिशियन चाहिए, योगा मेडिटेशन से लेके मोटिवेशन तक चाहिए, तब जाके वो बच्चे को आप रिहैबिलिटेट करते हैं। अन्यथा अगर हमने 6 महीने किसी को बंद रखा, वो 6 महीने के बाद बाहर जाएगा फिर नशा करेगा। लेकिन उसी के पहले अभी राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि हर जनपद में सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां पर सरकारी डॉक्टर, काउंसलर, सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेटर उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उनको अलग अलग कामों में उनको जो है व्यवस्थित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देहरादून में भी डोईवाला से आगे एक हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी और देहरादून शासन के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है और जल्द ही पूरे प्रदेश में क्योरिंग कुएं को लेकर जो हमारे हॉस्पिटल है उस पर भी ये काम होगा। तो मुझे लगता है कि जब हम बच्चों का क्योर करने लगेंगे, जब इस तरह की स्थापनाएं होने लगेंगी और वहां पर अच्छे काउंसलर डॉक्टर होंगे, तो इसका परिणाम अच्छा होगा। तीसरा है इन्फोर्समेंट, क्योंकि जितनी हमारी ये सपेरा बस्ती, अगर मैं देहरादून की बात करूं, जितनी हमारी बस्तियां हैं, सपेरा बस्तियां हैं, अगर मैं त्यागी रोड की बात करूं, मद्रासी कॉलोनी है, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमने बड़े करीबी से देखा है, रिस्पना पुल के पास की बस्तियां हैं, डोईवाला में सपेरा बस्ती है, ये नशे के बहुत बड़े गढ़ है। यहाँ पर महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर कोई चमोली से आ रहा है तो उसको पता है कि रिस्पना पुल में कौन सी दुकान में कौन सा व्यक्ति उसको दे जाएगा या चलती हुई स्कूटी में उसको 500 रुपए की ड्रग्स मिल जाएगी। अगर उन ड्रग पेडलरों को बात आप करेंगे एज ए परचेजर, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, उसके कोड वर्ड है वो जानता है। तो मुझे लगता है जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो बड़ी अहम है, क्योंकि अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया तो आज आप अपने बच्चों को तो बचा लेंगे लेकिन जब समाज का युवा बर्बाद होगा तो उसकी आंच आपके घर में भी आएंगी। अगर रोड में कोई एक्सीडेंट नशे के कारण कोई करता है तो एक आम साधारण

0: लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। आपसे जानना चाहेंगे वसीम जी, हम क्योंकि अब शिक्षण संस्थानों को चुना गया है तो नशा मुक्त कैंपस भी बनाए जाएंगे, क्या लगता है आपको आखिर तीन जरूरी कदम क्या होने चाहिए नशा मुक्त कैंपस बनाने के लिए, ताकि वाकई उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक निकल कर सामने आए?
1: इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं
0: जी।
1: एक तो वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको जिम्मेदारी मिलेगी निश्चित तौर पर, लेकिन हम केवल शिक्षकों पर इस बात को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो छात्र हैं उनको भी सारे कार्यक्रम में जोड़ा जाए। मेरा अपना अनुभव है एक प्रिंसिपल के नाते कि हमने अपने कॉलेज के बाहर जहाँ पर गुटखा वगैरह पिका करते थे उसको रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया, तो जो हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड था वो तो इस काम को करता ही था, लेकिन हमने छात्र संघ के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा। परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन के अंदर ही जो है वो सारी दुकानें अपने आप में साफ हो गई, वहाँ सारे धंधे बंद हो गए। तो मेरा एक पहला सजेशन तो ये रहेगा कि जो हमारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर हम टीचर और छात्र दोनों का इन्वॉल्वमेंट रखें। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो स्कूल है आमतौर पर सभी स्कूलों के अंदर जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग भी हुआ करती है, तो उस मौके पर जब हमारे प्रिंसिपल्स या टीचर पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनको एक विषय भी बताएं कि वे अपने घरों में किस प्रकार का व्यवहार करें, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण घर से भी है। अगर बच्चा घर को लेकर के कहीं फ्रस्ट्रेशन में है तो उसके जो मानसिक स्थिति है वो अपने आप में अच्छी नहीं रहती, तो परिवार से भी उसका ठीक चले, साथ ही शिक्षण संस्थाओं में भी उसको सपोर्ट मिले, और जो काउंसलिंग है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। बच्चों को पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं होती कौन बच्चा कहाँ पर ट्रैक कर रहा है, केवल ध्यान से देखने की बात होती है। तो उस बच्चे को देख करके उससे बात की जाए, उसकी समस्या को समझा जाए, अगर वो किसी पारिवारिक कारण से या किसी निजी प्रॉब्लम से नशे में जा रहा है तो उसका समाधान निकाला जाए, लेकिन सारी जो कार्रवाई है ये अपने आप में गोपनीय होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बात समाज में आती है तो उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है, तो बच्चा बोलता भी नहीं है इसीलिए। तो इसलिए सब मन खुले ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, और इसके अलावा जो अगर लोग बाहर के आके प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर प्रहार होने की जरूरत है। अभी ललित जी ने जो पूरे देहरादून के बारे में एक चित्र खींचा वो बड़ा भयावह है। अब जानकारियां हैं लेकिन फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पर समाज सवाल पूछने लगता है, तो ऐसे में एक इंटीग्रेटेड एफर्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो बहुत बड़ा कार्य है वो शिक्षण संस्थाओं में होने वाला है, और शिक्षण संस्थाओं में हमारी काउंसलिंग भी होगी, क्योरिंग भी होगी, और समाज का जो युवक है वहीं से और अच्छा सशक्त बन करके निकलेगा, ऐसा हमारा विश्वास।
0: बिल्कुल ललित जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि नशा एक गलत ऊर्जा है जिसकी तरफ इस समय युवा आकर्षित हो रहे हैं, तो सही ऊर्जा, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की बात होती है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेलकूद है, ऐसी अन्य गतिविधियां भी हैं शिक्षा के साथ साथ, आपको क्या लगता है इस दिशा में उनको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, कैसे प्रयास होने चाहिए इसको लेकर?
2: बिल्कुल, इसमें शिक्षण संस्थान स्कूल और कॉलेजों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि 8 घंटा जो है बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, बच्चा 8-9 बजे जाता है और शाम को 4-5 बजे आता है। मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय इसको एक मिशन के रूप में, एक विजन के रूप में ले ले कि मुझे अपने क्लास, अपने स्कूल, अपने कॉलेज के बच्चों के साथ मंथन करना है, यू टॉक करना है, उन बच्चों को स्पोर्ट्स में बिजी करना है, उनको कल्चर एक्टिविटी में करना है, उनको डिबेट में करना है, उनको नुक्कड़ नाटक के रूप में, एक्ट के रूप में वो बच्चे प्रतिभाग करें, उनके अंदर कला है, वो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। तो जब यूथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाता है, क्योंकि ईश्वर ने हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण दिया है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, कोई एवरेज होगा, लेकिन हम सबका एक प्रयास होना चाहिए सभी संस्थानों का कि हम अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि हम अपने बच्चों को ऑलराउंडर कैसे बनाएं, क्योंकि पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है, बच्चा एवरेज चलेगा लेकिन अगर उसके अंदर नैतिक शिक्षा है, उसके अंदर एटिकेट्स है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो अपने काम के लिए वेल डिसिप्लिन है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, यानी कि किसी भी चीज के प्रति गंभीरता से लेना, और स्पोर्ट्स, खेल, कल्चर एक ऐसा माध्यम है जहां पर बच्चे का माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि अस्थाई खुशी, आपका बच्चा डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बने ना बने, वो नशे से दूर रहे, वो एक अच्छा इंसान बने, हमारे माँ बाबू ने हमको पाला, वो भी कल के दिन अपने बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन उनको बचाना जरूरी
0: बिल्कुल,
2: है
0: बिल्कुल,
2: उसके लिए सबकी सहभागिता जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही आपने यहाँ पे बात कही, अच्छा संदेश आपने दिया है, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। तो दर्शकों, नशे को ना जिंदगी को हाँ, इस ध्येय वाक्य को अपनाएं, आज का कार्यक्रम भी इसी दिशा की ओर था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे नए विषय में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
3: श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून।

0: we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
3: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उभरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
5: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
6: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
5: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, मैं रेशमा स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। साथियों, कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि वो इतिहास की पहचान ही बन जाते हैं। कुछ वीर सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना आज कुर्बान कर देते हैं ताकि देश का आने वाला कल सुरक्षित रह सके। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे मेजर भूपेंद्र सिंह, एक ऐसा सैनिक जिसने गोलियों और टैंकों की गर्जना के बीच भी अपने कर्तव्य से कदम पीछे नहीं खींचे, जिनकी बहादुरी ने उनके साथ लड़ रहे सैनिकों में भी साहस का संचार किया। तो आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर योद्धा और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित मेजर भूपेंद्र सिंह को।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। साथियों, मेजर भूपिंदर सिंह का जन्म 19 सितंबर 1928 को पंजाब के लुधियाना जिले के हरनामपुरा गांव में हुआ था। देश सेवा की भावना ने इन्हें भारतीय सेना की ओर आकर्षित किया। 11 दिसंबर 1949 को उन्हें भारतीय सेना में कमीशन मिला और वो हॉडसन हॉर्स यानी फोर हॉर्स में शामिल हुए। ये भारतीय सेना की एक गौरवशाली बख्तरबंद रेजिमेंट है। समय के साथ इन्होंने अपने सैन्य अनुभव, नेतृत्व क्षमता और साहस से एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1965 तक ये मेजर के पद पर पहुंच चुके थे और फोर हॉर्स के एक स्क्वाड्रन के कमांडर भी थे।

साल 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, तब मेजर भूपिंदर सिंह ने युद्ध के मैदान में अदम्य साहस के साथ दुश्मन का सामना किया। इसी दौरान पंजाब से लगे पश्चिमी मोर्चे पर टैंकों की भीषण लड़ाइयां हुई। इनमें फिलौरा की लड़ाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। ये 1965 के युद्ध की बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। मेजर भूपिंदर सिंह ने अपनी स्क्वाड्रन का नेतृत्व बेहद साहस और कुशलता से किया और उनकी अगुवाई में भारतीय टैंक ने दुश्मन के टैंकों और सैन्य उपकरणों को भी काफी नुकसान पहुंचाया।

FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए साथियों, लेकिन युद्ध का मैदान कभी आसान नहीं होता। मेजर भूपेंद्र सिंह जिस टैंक में थे वो कई बार दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आया। टैंक क्षतिग्रस्त भी हुआ लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 11 से 19 सितम्बर 1965 के बीच मेजर भूपेंद्र सिंह ने फिलौरा और सोद्रेकी के युद्ध क्षेत्रों में अपनी स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया लेकिन

सितंबर को सोद्रेगी की लड़ाई के दौरान उनका टैंक दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गया और उसमें आग लग गई। टैंक से बाहर निकलते समय मेजर भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण 3 अक्टूबर 1965 को उनका निधन हो गया। एक सैनिक का जीवन अक्सर इसी तरह होता है, जहाँ अपना जीवन पीछे छूट जाता है, लेकिन देश का सम्मान सबसे आगे रहता है।

उनकी आधिकारिक प्रशस्ति में फिलोरा और सोद्रेकी की लड़ाइयों में उनके नेतृत्व, दुश्मन के टैंकों और उपकरणों को हुए बड़े नुकसान और भारी दुश्मन की गोलाबारी के बीच उनके साहस का उल्लेख किया गया है। श्रोताओं, ये सम्मान केवल एक पदक नहीं था बल्कि उस बलिदान की राष्ट्रीय पहचान थी जो मेजर भूपेंद्र सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया था, और इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को याद रखें। जो मिट गए वतन पर उनका नाम मिटता नहीं, जो मिट गए वतन पर उनका नाम मिटता नहीं, शहीदों का लहू यूं ही कभी बहता नहीं। तिरंगा जब भी आसमान में लहराता है, भारत अपने वीरों को दिल से याद करता है।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अब महिला बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम महिला जगत में आज आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, आपकी सखी अर्चना। बहनों, दिन भर घर परिवार और काम की जिम्मेदारियों में बिजी रहने के बाद जब रात को आराम करने का वक्त आता है तो अक्सर हम महिलाओं के पास नींद पूरी करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं बचता और ऐसे में हम लोग अपनी नींद को कम करके काम चलाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि नींद की कमी सिर्फ अगले दिन तक होने वाली थकान तक सीमित नहीं है? दरअसल हमारे शरीर और हमारे दिमाग दोनों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। जब नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है और साथ ही चिड़चिड़ापन, मूड में चेंजेस और काम में मन ना लगने जैसी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। और बहनों, महिलाओं के लिए नींद का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि जीवन के अलग अलग चरणों में बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस नींद पर असर डाल सकते हैं। अक्सर हम महिलाएं परिवार की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से पहले रखती हैं। हम सोचती हैं कि अभी तो बहुत काम है, बाद में आराम कर लेंगे, लेकिन अपनी नींद को लगातार टालना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। अब बहनों, सवाल ये उठता है कि इसके लिए किया क्या जा सकता है? तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि रोज लगभग एक ही टाइम पर सोने और जागने की आदत डाली जाए। सोने से पहले फोन या दूसरी स्क्रीन का यूज कम से कम करना चाहिए। रात को ज्यादा कॉफी या चाय लेने से बचना चाहिए और सोने से पहले अपने दिमाग और बॉडी को शांत होने देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर लगातार नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, रात में बार बार नींद खुलती है या बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं या पर्याप्त सोने पे भी दिन भर नींद और थकान रहती है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है, क्योंकि बहनों, आराम करना आलस नहीं है, अच्छी नींद हमारी बॉडी की ज़रूरत है। ये याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ और ऊर्जावान दिन की शुरुआत सिर्फ सुबह से नहीं होती, बल्कि उसकी तैयारी पिछली रात की अच्छी नींद से होती है। बहनों, कार्यक्रम में बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: निकलकर सामने आई है आपदा के बाद।
1: पापा आज स्कूल बंद है, रास्ते में भूस्खलन हो गया है।
2: बेटा अच्छा हुआ जो तुम समय पर घर आ गई।
1: अच्छा अगर कभी हम भूस्खलन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले घबराना नहीं, भूस्खलन से दूर सुरक्षित जगह पर जाओ, ढलान, टूटे पेड़ और चट्टानों के पास बिल्कुल मत रुकना। और हाँ, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वाहन धीरे और सावधानी से चलाना चाहिए।
1: लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए और निकलना मुश्किल हो तो?
2: ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहो और तुरंत मदद के लिए 112-1070 या 1077 पर कॉल करो। और हाँ, मोबाइल में सचेत ऐप जरूर डाउनलोड रखो ताकि मौसम और आपदा से जुड़ी चेतावनियाँ समय पर मिल सकें।
1: समझ गई, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: बिल्कुल बेटा, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: बता दें, मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
3: बहनों, समानता यानी हर व्यक्ति को बराबर का हक और सम्मान मिलना, और जब यही समानता हमारे व्यवहार और रिश्तों में दिखाई देने लगती है तो उससे जन्म लेती है समरसता। हमारा समाज अलग अलग विचारों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से मिलकर बना है। ये विविधताएं हमारी पहचान है, लेकिन इन विविधताओं के बीच एक दूसरे का सम्मान और सहयोग ही समाज को मजबूत बनाता है। बहनों, समानता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सभी को समान मौके मिले, बल्कि ये भी है कि हम किसी के भी साथ उसके लिंग, उम्र, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न करें। जब घर में बेटा और बेटी दोनों को एक जैसे मौके मिलते हैं, कार्यस्थल पर हर किसी के योगदान का सम्मान होता है और समाज में हर किसी को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, तो यही सोच धीरे धीरे समरसता का रूप ले लेती है। बहनों, समरस समाज की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे व्यवहार से होती है। दूसरों की बात सुनने से, सम्मान देने से और ज़रूरत का साथ देने से ही इस बदलाव की शुरुआत होती है। तो आइए समानता को सिर्फ एक विचार ना रहने दें, बल्कि अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब बराबरी की भावना मजबूत होती है तो समाज में अपनापन, सहयोग और समरसता भी बढ़ते हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सुश्री मधु मैखुरी जी से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी। और आपसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी डॉक्टर कंचन निगी।
4: साथ छोड़ा तो क्या, हौसलों ने हाथ थाम लिया, मुश्किलों ने जब रोका इन्हें तो इन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी, और आज हम आपकी मुलाकात कराने जाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है सुश्री मधु मैखुरी जी, जो कि दिव्यांग जनों के लिए बहुत बेहतरीन से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में मधु मैखुरी जी।
5: नमस्कार।
4: पूछना चाहेंगे कैसे आपको, कहाँ से प्रेरणा मिली दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने के लिए?
5: देखिए, मुझे इसकी प्रेरणा पूजनीय श्री मोहन जगुड़ी जी से मिली, बहुत ही विद्वान, ज्योतिष, वेदों के ज्ञाता, और उन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि मैं सेवा के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकूं।
4: एक महिला होकर दिव्यांगजनों के लिए काम करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है?
5: मुझे महसूस हुआ कि एक महिला होना ही मेरे लिए इसमें शक्ति बना, क्योंकि यह एक तरीके से एक भावनात्मक आंदोलन था जिसमें कि हमें दिव्यांगजन की समस्याओं, उनके दर्द से आम जनता को जागरूक करना था, और इसके लिए एक महिला की जो भावनात्मकता है वही सबसे श्रेष्ठ साबित हुई और बहुत से लोगों ने इसमें जुड़कर साथ दिया।
4: मधु जी, आपने स्वयं जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, तो क्या वही अनुभव दूसरों के लिए काम करने की ताकत बना?
5: जी हाँ, दिव्यांगता का जो दर्द मुझे मिला और वो जो जिंदगी की चुनौतियाँ मिली और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान से जो उन चुनौतियों को मैं पार कर सकी, तो मुझे ये लगा कि मेरा दर्द ही मेरी ताकत बन गया, और इससे मुझे दिव्यांगजन के दर्द को समझने में और समाज को समझाने में सहायता मिली।
4: आपके अनुसार नारी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
5: धैर्य। नारी जो है वो धैर्य का ही दूसरा नाम है।
4: और दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन बातों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
5: अपने स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर।
4: और वास्तव में शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी धुरी है। बेटियों को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो शिक्षा किस तरह दिव्यांग बेटियों के जीवन को बदल सकती है आपके अनुसार?
5: देखिए, शिक्षा कर्म सिखाती है, ज्ञान देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और आत्मनिर्भर बनाती है। तो शिक्षा तो बहुत बड़ी पूंजी है
4: वास्तव में। और नारी महिला है वो कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है, और शक्ति का नाम ही नारी है। वास्तव में बहुत सही कहा गया है। तो आप जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, तो कितने वर्षों से आप इस सेवा में जुड़ी हैं?
5: दिव्यांग के लिए तो मेरा जीवन समझ लीजिए बालपन से ही समर्पित है, क्योंकि मैं स्वयं दिव्यांग हूँ। लेकिन हाँ, मैं दिव्यांगजन के लिए जो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो कार्य कर रही हूँ, इसके लिए 26 ईयर्स हो गए हैं।
4: तो किस तरीके से आप ये कार्य करती हैं? क्या आपको कहीं से कोई आर्थिक सहायता मिलती है, या स्वयं जो आपके परिचित हैं उनके द्वारा आपको सहायता मिलती है, किस प्रकार से? क्योंकि बिना आर्थिकी के तो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम लोग उनके लिए गैजेट्स की बात करें, चाहे उनकी देखभाल की बात करें। तो क्या आवासीय कोई आपके पास जगह है जहाँ पे दिव्यांगजन आते हैं, या आप जगह जगह जाकर उनको चयनित करती हैं? तो जानना चाहेंगे पूरा प्रोसेस क्या रहता है।
5: जब हमने दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया तो हमारा सबसे बड़ा मकसद था जागरूकता फैलाना। लेकिन हम लोगों ने जब इसके लिए चिकित्सा शिविर हमने आयोजित किए देहरादून में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी किए, जैसे कौसानी है आपका, गोपेश्वर है, पता है, दूर दराज के भी क्षेत्रों में किए, क्योंकि हम उन तक पहुँचना चाहते थे। सबसे पहली हमारी ज़रूरत थी उनको चिन्हित करना
4: जी,
5: और हमें उन तक पहुँचना था। तो क्योंकि वो पहाड़ के और दुर्गम इलाकों के मैदान में भी जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वो उन इलाकों में कहीं अपने घरों में ही एक तरीके से छुपे हुए थे। तो हमने चिकित्सा शिविर लगाए हैं, उनके जरिए हम उन तक पहुंचे और हमने उन्हें चिन्हित किया। धन हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा है, हमने जब दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया, लेकिन हमने देख पाया कि समाज में बहुत से प्रबुद्ध वर्ग ने, हमारा महिलाओं ने, पुरुषों ने, संस्थानों ने इस कार्य के लिए हमें बहुत सहयोग दिया और आज तक सहयोग देते आ रहे हैं।
4: बहुत खूब मधु जी, बहुत नेकी का काम है ये। और आपने अपने अनुभव से क्या महसूस किया, एक दिव्यांग व्यक्ति को सहानुभूति चाहिए या अवसर?
5: दिव्यांग व्यक्ति को अवसर चाहिए, क्योंकि उसके अंदर असीमित प्रतिभा होती है और उसके जो हिडन एनर्जीज हैं, जो एक छुपी हुई उसकी ऊर्जा होती है, वो बहुत अधिक होती है। जब एक सामान्य व्यक्ति दैनिक कार्यों में भी उस ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, वहीं एक दिव्यांग व्यक्ति की वह ऊर्जा पूरी तरह से संकलित रहती है। ऊर्जा का भंडार है दिव्यांगजन, तो उनको यदि अवसर मिले तो उनकी प्रतिभा बहुत निखर कर सामने आती है।
4: अभी हमने अवसर की बात करी, तो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के आपके अनुसार कितने अवसर पैदा किए जा सकते हैं?
5: देखिए, दिव्यांगजन के लिए हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से 4% रिजर्वेशन रखा है जॉब्स में। हाँ, इसको थोड़ा और इंक्रीज किया जा सकता है, या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी संस्थान इसका अनुपालन करें। सरकार की तो सहायता है ही, बट सभी संस्थानों को भी इसको अपने संस्थान में लागू करना होगा, तो तभी रोजगार के अवसर और भी हो सकते हैं। और स्वरोजगार के लिए तो असीमित है। देखिए, हमारे

0: स्थानीय उत्पाद हैं, और इसके अलावा कई हमारे जैसे स्टिचिंग है, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए भी उन्होंने पीएम दक्ष जो है पोर्टल इसके लिए है, तो उसमें इनको डिजिटल वे में ट्रेनिंग के अवसर मिले हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन आम जनता को भी इसके लिए प्रेरित करना, उनको अवसर देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल। और मधु जी, पहाड़ों में रहने वाले दिव्यांगजनों के सामने सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसके अवसर उनके पास उपलब्ध नहीं है, इजीली उपलब्ध नहीं है।
1: और जैसे स्वास्थ्य, फिजियोथेरेपी और कृत्रिम अंग जैसी सुविधाएं उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं आपके अनुसार?
0: उनके जीवन को आत्मनिर्भर बना सकती हैं अगर उनके स्वास्थ्य की ओर सभी ध्यान दें, परिवार, समाज, और उनको फिजियोथेरेपी और कृत्रिम अंग जैसी सुविधाएं मिल जाएं, तो वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
1: और एक दिव्यांग महिला को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए परिवार और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि अगर बच्चा अगर थोड़ा सा दिव्यांग है तो उसमें माता पिता और परिवारजनों की बहुत अहम भूमिका होती है, तो आपके अनुसार वो क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो परिवार की भूमिका ही है
1: जी।
0: परिवार को उन्हें स्नेह और सम्मान देना होगा, उनके लिए उत्साह के वातावरण का निर्माण करना होगा, और यही बातें फिर आपकी आगे बढ़कर समाज में जाते, समाज की कई इकाइयां हैं, आपका पड़ोस है, आपका गांव है, आपका शहर है, बहुत सारी इकाइयां समाज की हैं, ये सारी इकाइयां मिलकर के जब एक दिव्यांग के लिए स्नेह और उत्साह के वातावरण का निर्माण करेंगी, तो निसंदेह दिव्यांग जन की प्रतिभा, एक दिव्यांग महिला जो है वो सशक्त होगी।
1: बिल्कुल। और दिव्यांगता शरीर में हो सकती है, हौसलों में नहीं, क्योंकि असली शक्ति वही है जो मुश्किलों के आगे झुकती नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप?
0: बिल्कुल, मैं एक भी एक कविता ही सुनाना चाहूंगी इसके जवाब में आपको। चांद को छूने का ख्वाब रखना है, चांद को छूने का ख्वाब रखना है, तारों से रोशन अपनी कहानी का इंतखाब करना है, नाज हो अपनी जिंदगी पर ऐसा कर्म का इतिहास रचना है। सपने ही तो एक दिव्यांग की सबसे बड़ी पूंजी है, वो सपने, बड़े से बड़े सपने देख सकता है, उसे सपने देखने चाहिए, क्योंकि उसके सपने ही उसको कर्म की राह में अग्रसर करते हैं।
1: बहुत खूब मधु जी। और चंद पंक्तियां मैं भी साझा करना चाहूंगी आपकी पंक्तियों को सुनने के बाद, कि जब भी हमारे हौसले टूट रहे हो ना, तो हमेशा ये लाइन्स याद रखनी चाहिए कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनों किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते।
0: बहुत खूब।
1: चलिए, अपनी भेंटवार्ता को हम आगे बढ़ाते हैं। मधु जी, क्या जैसे अभी हमने बात की कि दिव्यांगता सपनों को रोक नहीं सकती है, सही अवसर उन्हें नहीं उड़ान दे सकते हैं, तो आज के युवा दिव्यांग बेटियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: आत्मशक्ति और मर्यादित जीवन, ये उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें आत्मशक्ति की ओर अपना ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर की दिव्यांगता यह तो सिर्फ बाहरी है, और जो मन की शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपका मन सक्षम है तो आप हर कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपको स्वयं जो सहयोग आपको चाहिए वो स्वयं मिलता रहता है।
1: और मधु जी, हम समाज की बात करें तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की सोच है, जो दिव्यांग जन क्या अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं, और जाहिर सी बात है करते होंगे कि वो औरों की तरह नहीं दिखते और नहीं वो कार्य कर सकते हैं उस दक्षता के साथ, तो ऐसे में जो समाज में सभी वर्ग हैं, सभी आयु के लोग हैं, तो क्या आप कहना चाहती हैं कि क्या सोच रखती हैं, क्या हमको स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बजाय अलग स्कूल में, जो कॉमन स्कूल्स हैं उसी में बच्चों का दाखिला होना भी चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सामने वाला मुझसे अलग है, क्या सकारात्मक परिवर्तन आना जरूरी है? क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, हम लोग तो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की हमें आवश्यकता हुई है, वह सिर्फ इसी वजह से हुई है, क्योंकि नियम कानून तो सब हैं, लेकिन आत्मीयता कहाँ है, स्नेह और सम्मान वो कहाँ है? दिव्यांग व्यक्ति अपने को कमजोर नहीं समझता है, उसको अपनी शक्तियों का पूरी तरह से आभास होता है, लेकिन समाज उसको

0: जो समझता है, जब तक समाज अपने नजरिए को बदलेगा नहीं, जब तक समाज यह स्वीकार नहीं करेगा ये जीवन के सच्चे नायक हैं, इनके जीवन से उनको बहुत ऊर्जा मिल सकती है। क्योंकि जब ये एक दिव्यांग देह के साथ इस जीवन का सामना कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये कितने साहसी हैं, ये तो प्रेरणा के स्रोत हैं। तो यही नजरिया यदि समाज इनके प्रति रखेगा तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, समाज में समानता है पर समरसता नहीं है।
0: जी हाँ, समरसता नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: समरसता का मतलब है आत्मीयता,
1: जी,
0: एक लगाव। वो जो एक माँ अपने बच्चे के लिए जो आत्मीयता रखती है, वह आत्मीयता जब समाज, मोहल्ला, गांव, शहर, जब वो उस दिव्यांगजन के लिए रखेगा तो तभी दिव्यांगजन का जीवन वास्तव में सुगम और सशक्त होगा।
1: मधु जी, आपकी बातों से लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सशक्त आप स्वयं भी हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
0: देखिए, मेरी जर्नी जो है दर्द से शुरू हुई और सुख और शांति में परिभाषित हो गई। तो यदि ये दिव्यांग देह न होती तो शायद जीवन में इतनी शांति और स्थिरता न होती। तो मुझे लगता है कि यह दिव्यांग जीवन मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने परिवार का और समाज का सहयोग मिला, अपने लिए भी और अपने समान जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी। यह जो दिव्यांग जीवन है यह वरदान साबित हो सकता है। यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच जितनी सकारात्मक रहेगी उतना ही आपका जीवन निखरता चला जाएगा, शांत और स्थिर होता चला जाएगा।
1: बहुत खूब मधु जी, हमारे आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में पधारने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सुश्री मधु मैखुरी जी से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय था कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी, और आपसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी डॉक्टर कंचन नेगी। बहनों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे देश की कल्पना आती है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो और जहाँ लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की सुविधाएँ मिलें। लेकिन किसी भी देश का विकास सिर्फ सरकार की योजनाओं और नीतियों से नहीं होता, इसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है, और नागरिक की ये जिम्मेदारी शुरू होती है सेवा के संकल्प से। बहनों, सेवा का मतलब सिर्फ किसी ज़रूरतमंद को आर्थिक सहायता देना नहीं है, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाई में हेल्प करना, ब्लड डोनेट करना, ज़रूरतमंद तक सही जानकारी पहुँचाना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना या पर्यावरण की रक्षा करना, ये सभी सेवा के छोटे लेकिन ज़रूरी रूप हैं। बहनों, कई बार हमें ये लगता है कि हमारे अकेले के प्रयास से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहनों, जब एक व्यक्ति शुरुआत करता है और उससे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग आगे आते हैं तो छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहनों, विकसित भारत का सपना भी केवल आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। एक विकसित समाज वो है जहां लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ दें। इसलिए अगर हमें अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ी मेहनत और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग देने का संकल्प मिले तो ये भी देश के विकास में हमारा योगदान होगा। क्योंकि विकसित भारत का सपना सिर्फ किसी एक का सपना नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बहनों, कार्यक्रम में बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

बहनों, हम सभी की चाह रहती है खूबसूरत और फ्रेश दिखने की, लेकिन इसे लगातार बनाए रखना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटी टिप्स। बहनों, फेस धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चेहरा पूरी तरह सूखने का इंतज़ार इसमें सही नहीं है। हल्की नमी रहते मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन में मॉइस्चर अच्छी तरह लॉक होता है और आपकी स्किन फ्रेश दिखाई देती है। पिलो कवर भी ब्यूटी रूटीन का हिस्सा। पिलो कवर को रेगुलरली चेंज करना चाहिए, क्योंकि उस पर तेल, पसीना और धूल जमा हो सकते हैं, जो कि फेस पे पिंपल और इरिटेशन बढ़ा सकते हैं। लगातार टाइट पोनीटेल या जूड़ा बनाने से बालों की जड़ें खिंचती हैं और इससे हेयर फॉल भी बढ़ता है। तो कभी कभी लूज हेयर स्टाइल भी बनाना चाहिए, और बाहर निकलते समय होठों पर SPF वाला लिप बाम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिप्स की स्किन भी धूप से काली या सूखी पड़ सकती है। रोज़ पर्याप्त और रेगुलर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ब्यूटी स्लीप है ज़रूरी। इससे बॉडी को रिकवरी का वक्त मिलता है और फेस की डलनेस कम होती है और फेस भी फ्रेश नज़र आता है। तो ये थे कुछ ब्यूटी टिप्स, और हम उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे इस स्टोरी की घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं संगीत की दुनिया में। तो प्रस्तुत है फिल्मी गीत गाने नए तराने। तो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म स्त्री 2 से। गीत है अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत है सचिन जिगर का और आवाज़ है दिव्या कुमार और मधुवंती बागची की।

श्रोताओं, शाश्वत सचदेव के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म धुरंधर से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है आर रहमान ने और अपनी मधुर आवाज से सजाया है अलका याग्निक ने। तो सुनिए फिल्म जुबैदा से ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की मधुर स्वर में फिल्म शेरशाह से। गीत और संगीत था तनिष्क बागची का। आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको सोनू निगम की आवाज़ में ये अगला गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गीत है जयदीप साहनी का और संगीत है सलीम सुलेमान का। तो सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म क्वीन से, आवाज़ थी नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ और साथी की। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत गाने नए तराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म राब्ता से। गीत है प्रीतम का, संगीत है अनिमिता भट्टाचार्य का और आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पे ही आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों के खाते में 18,49,00,000 रुपए की सहायता राशि DBD के माध्यम से हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित मातृशक्ति संवाद व सम्मान समारोह में महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न सरकारी योजनाओं पर अपने विचार रखने के साथ ही अपने सुझाव दिए। सेवा संकल्प अभियान के तहत 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे सेवा सेतु सरकार आपके द्वार शिविर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सचिवालय में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले के

0: 2388 आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही संकल्प अभियान के तहत 5 राज्यों में आयोजित की जा रही है नमो क्रिकेट लीग के उत्तराखंड संस्करण का देहरादून में शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लीग का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। चमोली जिले के बद्रीनाथ में 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ। भारतीय सेना और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित महोत्सव की थीम संस्कृति हमारी विरासत हमारा भविष्य है और जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर पौड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अतिरिक्त चार्ज अधिकारी जनगणना लिपिक और तकनीकी सहायकों को जनगणना प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और CMMS पोर्टल की जानकारी दी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मेघ।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मेघ। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हो रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक कलाकार फिल्म संगीत में। साथियों, संगीती दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही मन जैसे किसी शांत रास्ते पर निकल पड़ता है। आवाज़ में ना कोई बनावट, ना दिखावे की चमक, बस एक सच्चाई, एक सादगी और दिल को छू लेने वाला एहसास। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ऐसी ही अनोखी एक आवाज़ को, नाम है लकी अली। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम की लकी अली के सुरीले सफर की, उनके स्वर में इस गीत से।

साथियों, लकी अली का जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम मकसूद अली है। ये एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता है और ये मशहूर अभिनेता और हास्य कलाकार महमूद के बेटे हैं। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी खास गायकी और संगीत शैली से श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई। लकी अली का संगीत उस दौर में सामने आया जब गैर फिल्मी पॉप संगीत युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। उनके एल्बम सुनो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म तमाशा से।

सफरनामा शो तो नाम ही जैसे अपने अंदर पूरी जिंदगी का दर्शन समेटे हुए है। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि रास्ते में खुद को पहचानने का भी नाम है। लकी अली की आवाज़ इस गीत को एक शांत और आत्मीय एहसास देती है। लकी अली की खासियत सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं बल्कि उनका गाने को महसूस करने का अंदाज भी है। उनके गीतों में अक्सर सफ़र, प्यार, अकेलापन और ज़िंदगी की तलाश जैसे भाव दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए उनके गीत सुनते हुए लगता है कि कोई कहानी हमारे सामने धीरे धीरे खुल रही है। उनकी आवाज़ में एक प्राकृतिक खरापन है जो उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाता है। तो आइए अब वो गीत सुनते हैं जिसने लकी अली की आवाज़ को फिल्मी संगीत के बड़े मंच पर भी नई ऊँचाई दी।

श्रोताओं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गीत ने लकी अली की आवाज़ को एक नई पहचान दी, नई पीढ़ी तक पहुंचाया। लकी अली ने सिर्फ गायक के तौर पर ही नहीं बल्कि संगीतकार और अभिनेता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने अपने करियर में कई तरह के प्रयोग किए। उनका व्यक्तित्व भी उनकी शैली की तरह ही सादा और अलग दिखाई देता है। ये ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी अपनी निजी जिंदगी में अपेक्षाकृत सादगी पसंद करने के लिए जाने जाते हैं। बात करें इनके नामांकन और पुरस्कार की, तो इन्हें सुनो एल्बम के लिए 1996 में स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकलिस्ट और 1997 में चैनल वी के व्यूअर चॉइस अवार्ड सहित भारतीय संगीत में कई शीर्ष पुरस्कार जीते। उनका गीत ओ सनम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और दुनिया भर में सराहा गया। ओ सनम सॉन्ग ने 90 के दशक के इंडी पॉप संगीत को अलग रंग दिया। तो आइए सुनते हैं उनकी आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोताओं, लकी अली के संगीत में पश्चिमी और भारतीय संगीत के प्रभावों का भी सुंदर मेल देखने को मिलता है। गिटार और सॉफ्ट म्यूजिकल अरेंजमेंट्स के साथ उनकी आवाज़ एक खास माहौल बना देती है। संगीत की दुनिया में कई कलाकार लोकप्रिय होते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिनकी एक अलग पहचान बन जाती है। लकी अली भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। उनकी आवाज़ को किसी एक दौर में बांधना मुश्किल है। 90 के दशक में सुने गए उनके गीत आज भी नई पीढ़ी के बीच सुने जाते हैं। उनकी गायकी हमें याद दिलाती है कि संगीत में सादगी की भी अपनी ही एक अलग ताकत होती है। इन्होंने अपनी आवाज़ और अपनी शैली से संगीत की दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया।

खुश होता हूँ लकी अली के इस खूबसूरत गीत के साथ मुझे कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे संगीत के किसी और खूबसूरत सफर में किसी और आवाज़ की कहानी के साथ। नमस्कार।

0: श्रोता, एक कलाकार फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। हमारे आज के कलाकार थे गीतकार लकी अली। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए

0: मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में बदलते वैश्विक माहौल में भारत नेपाल संबंधों पर नए सिरे से विचार विषय पर सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसोजा कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसोजा को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हो रहे हैं। अब आप आज के शेष कार्यक्रमों के साथ कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित सूचनाएं सुनेंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही मिनटों बाद यानी साय के 5:10 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी। जन समस्याओं पर ग्रामीणों से भेंट वार्ताओं का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत समय रहेगा साय के 5:45।

किसान वाणी में डॉक्टर विनोद कुमार से किसान साथियों की फोन इन बातचीत आप सुनेंगे सायं के 7 बजे, और आप सबका मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा सायं के 7:40 पर।

विशेष कार्यक्रम आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद श्रोताओं सुनना ना भूलिएगा साय के 7:50 पर और रात्रि के 8 बजे अपनी प्रतिक्रियाओं सुझावों और शिकायती पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुनेंगे श्रोताओं रमेश चंद्रा और कल्पना पंकज के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आप सुन सकते हैं विशेष सीरीज में रात्रि के 8:10 पर यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट रात्रि के 9:15 पर।

सभा के अंत में श्रोताओ आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम समय रात्रि के 10 बजे। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से की रूपरेखा। अब एक नजर डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:10 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत हमारे श्रोता सुनेंगे।

शैल संगीत में आशा रावत सुनाएंगी गढ़वाली लोकगीत कल सवेरे 7:30 पर। 8:30 पर आप सबका मनपसंद और लोकप्रिय प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे।

विविध कलाकार पेश करेंगे बुंदेलखंडी और हिमाचली लोकगीत। कार्यक्रम लोक संगीत में समय रहेगा कल प्रातः 10:30। और श्रोताओं, नन्हे मुन्ने दोस्तों का मनपसंद कार्यक्रम बालमंडल प्रसारित किया जाएगा कल दिन में 12:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:52 हुए हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों के साथ उनका मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिवज बहुगुणा
1: और मैं हूं आपके साथ ही आयुषी भट्ट। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों, बेहतरीन गीतों और एक स्पेशल सेगमेंट जो रहेगा यूथ कनेक्शन के साथ आपके बीच में।
0: दोस्तों। सोचिए, आने वाले समय में हमारे कारखानों की भट्टियां, भारी वाहन और यहां तक कि जहाज भी ऐसे ईंधन से चलें जिसके इस्तेमाल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय पानी बने।
1: सुनने में भविष्य की कहानी लगती है, लेकिन इस दिशा में दुनिया के साथ साथ भारत भी बहुत तेजी से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की।
0: दोस्तों, हाइड्रोजन को लेकर आजकल काफी चर्चा है, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन खुद कोई जादुई ईंधन नहीं है। इसे एक ऊर्जा वाहक के रूप में समझना ज्यादा सही होगा। यानी कि जैसे बैटरी बिजली को अपने अंदर संग्रहित करती है, वैसे ही हाइड्रोजन में भी ऊर्जा को एक अलग रूप में रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: और इसकी खासियत ये है कि अगर पानी से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनाया जाए तो उस प्रक्रिया में सौर या पवन ऊर्जा जैसी रेन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाए, तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है।
0: दोस्तों, भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश ने 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण से लेकर उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल तक पूरी वैल्यू चेन तैयार करने पर भी काम हो रहा है। और एक दिलचस्प बात है कि हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भविष्य शायद कारों में नहीं बल्कि उन उद्योगों में हो सकता है जहां सीधे बिजली का इस्तेमाल करना मुश्किल है।
1: बिल्कुल, जैसे स्टील रिफाइनरी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरियों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल दोस्तों पहले से ही होता है। अब कोशिश ये है कि फॉसिल फ्यूल से बने हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। भारत में पानीपत, बीना, विशाखापट्टनम जैसी रिफाइनरियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता से जुड़ी कदम वैसे ही उठाए जा चुके हैं।
0: और दोस्तों, परिवहन में भी प्रयोग चल रहे हैं। लेह में हाइड्रोजन बसों का परीक्षण खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि वहां ऊंचाई, ठंड और कम ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियां तकनीक के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत अब बसों के साथ साथ भारी ट्रकों में भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल के पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा है।
1: दोस्तों, इस चर्चा को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे हाइड्रोजन से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्शन का सवाल। सवाल है, देश ने 2030 तक हर साल कितने टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? दोस्तों, ऑप्शन ए है 80 लाख टन, ऑप्शन बी है 10 लाख टन, ऑप्शन सी है 50 लाख टन और ऑप्शन डी है 20 लाख टन।
0: तो दोस्तों, आप हमें अपने जवाब लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। और हाँ, जवाब के साथ अपना नाम भी जरूर भेजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके जवाब और नाम को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं एक गीत की तरफ जो कि लिया गया है फिल्म हनुमान अंश से और जिसे आवाज दी है साधु तिवाड़ी ने।

0: हम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: दोस्तों, गाने से पहले हमने आपसे पूछा था हमारे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्शन का सवाल, जो था देश ने 2030 तक हर साल कितने टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50 लाख टन। दोस्तों, हमें जवाब लिखकर भेजा है संजीव कुमार ने करनाल हरियाणा से और साथ ही देहरादून से शिवम ने,
7: और इन दोनों के लिए सही जवाब के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
6: दोस्तों, अगर हाइड्रोजन इतना उपयोगी है तो हर जगह इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? इसी सवाल से हम करते हैं अपनी चर्चा को कंटिन्यू।
7: बिल्कुल आयुषी, क्योंकि चुनौती सिर्फ हाइड्रोजन बनाने की नहीं है, इसे बनाने के लिए भारी मात्रा में स्वच्छ बिजली भी चाहिए, फिर इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, रिफ्यूलिंग स्टेशन और पाइपलाइन जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन की लागत भी एक बड़ी चुनौती है।
6: यानी भविष्य में शायद हर गाड़ी हाइड्रोजन से नहीं चलेगी, छोटी कारों के लिए बैटरी ज्यादा व्यावहारिक हो सकती है, जबकि भारी उद्योग, लंबी दूरी के परिवहन और कुछ कठिन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हाइड्रोजन की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों,
7: और शायद यही हाइड्रोजन की सबसे बड़ी खासियत भी है, ये पेट्रोल या बिजली का सीधा विकल्प बनने के बजाय उन जगहों की डीकार्बनाइजेशन करने में मदद कर सकता है जहां दूसरे विकल्पों की सीमाएं हैं।
6: तो हाइड्रोजन का भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम इसे कितना बना सकते हैं, बल्कि इस पर भी कि हम इसे कितनी कम लागत में, कितनी सुरक्षित तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल कर पाते हैं।
7: दोस्तों, भारत ने इसके लिए लक्ष्य तय कर दिए हैं। अब आने वाले कुछ साल ये बताएंगे कि प्रयोगशाला और पायलट प्रोजेक्ट से निकलकर हाइड्रोजन कितनी तेजी से हमारी वास्तविक ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा बनता है
6: और जो हमारे साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों,
7: बिल्कुल। अब दोस्तों, हाइड्रोजन की बात हो और उसके सेफ स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सवाल यह है अगला कि हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और आपके ऑप्शंस है ए बिल्डिंग, ऑप्शन बी रिफ्यूलिंग स्टेशंस और पाइपलाइंस, ऑप्शन सी टैंकर्स, या फिर ऑप्शन डी मशीन।
6: दोस्तों, इसका जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आइए तब तक सुनते हैं फिल्म मिर्जापुर से श्रेया घोषाल की आवाज में ये ट्रैक।

0: बच्चों, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: सर, मच्छरदानी लगानी चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब बाहर जाएं तो पूरी बाजू के कपड़े और शरीर को ढकने वाली ड्रेस पहने। इससे मच्छरों के काटने से बचने में मदद मिलती है।
1: सर, यानी शॉर्ट्स या छोटी बाजू के कपड़ों की जगह पूरी बाजू की ड्रेस पहननी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, खासकर बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखें।
1: और घर में मच्छर ना पनपे, इसके लिए
0: गमले, कूलर, पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में पानी जमा न होने दें।
1: सर समझ गए, पूरी बाजू पहनेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे।
0: शाबाश, मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। और आपातकालीन स्थिति के लिए डायल करें 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: तो कार्यक्रम युववाणी में दोबारा से आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। और हमने यूथ कनेक्शन में पूछा था आपसे एक सवाल कि हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिफ्यूलिंग स्टेशंस और पाइपलाइंस। और हमें सही जवाब लिख के भेजा है एक बार दोबारा से संजीव कुमार करनाल हरियाणा से, और हरिद्वार से आयुष ने सही जवाब भेजा है।
3: और जिन्होंने भी हमें सही जवाब भेजा है उनके लिए दिव्य तालियां तो बनती है ना।
2: बिल्कुल।
3: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे घर से निकलने वाला कचरा घर से बाहर जाते ही गायब नहीं हो जाता? असली स्वच्छता की शुरुआत दोस्तों उस वक्त होती है जब हम अपने घर से में ही कचरे को सही तरीके से अलग अलग करते हैं।
2: बिल्कुल आयुषी। दोस्तों 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने जहां पहले बुनियादी स्वच्छता पर ध्यान दिया, तो वहीं अब इसका पूरा फोकस वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने पर है।
3: और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों कचरे का सेग्रीगेशन, यानी गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरा बिल्कुल अलग अलग डिब्बे में हो, ये करना। साथ ही अगर घर से ही कचरा अलग अलग मिले तो उसका रिसाइकिलिंग और प्रोसेसिंग बहुत आसानी से हो जाता है।
2: और इसी सोच को हम सर्कुलर इकोनॉमी भी कहते हैं दोस्तों, यानी कचरे को बेकार समझने के बजाय एक संसाधन मानना, जहां गीले कचरे से कंपोस्ट या बायोगैस बने और सूखे कचरे के प्लास्टिक, कागज और धातु को दोबारा उपयोग में लाया जा सके।
3: दोस्तों समस्या सिर्फ आज के कचरे की नहीं, बल्कि शहरों में बरसों से जमा पुराना कचरा, जिसे लेगेसी वेस्ट भी कहा जाता है, उसकी भी है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इन पुराने डंप साइट्स को साफ किया जा रहा है। जनवरी 2026 तक की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों देश में 61% से अधिक पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा चुका है।
2: दोस्तों ग्रामीण भारत में भी अब फोकस ODF प्लस यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस पर भी आ गया है, यानी गाँव को खुले में शौच से मुक्त रखने के साथ साथ ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से ज्यादा ODF प्लस घोषित हो चुके हैं और 5.38 लाख से अधिक गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है।
3: यानी दोस्तों स्वच्छता का ये चरण सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि कचरा पैदा होने से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक पूरी व्यवस्था बदलने का है। कोई भी सरकारी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता दोस्तों जब तक नागरिक खुद आगे बढ़कर अपनी आदतें ना बदलें।
2: बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। दोस्तों पर्यावरण बचाने की शुरुआत हमेशा किसी बड़े अभियान से नहीं, बल्कि घर के दो डिब्बों से ही होती है, एक गीले कचरे के लिए और दूसरा सूखे के लिए, क्योंकि स्वच्छ शहर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि वहां रहने वाले नागरिक भी मिलकर बनाते हैं।
3: और दोस्तों साथ ही इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने घर के कचरे को कूड़े की गाड़ी में ही डालें। हमारी ये छोटी सी जिम्मेदारी है जो पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।
2: बिल्कुल सही। और दोस्तों अब बारी है हमारे यूथ कनेक्शन सेगमेंट के अगले सवाल की। इसका जवाब आपको हमें अपने नाम के साथ भेजना है ताकि हम आपके जवाब को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। सवाल है ODF प्लस की फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ऑप्शन बी आउटडोर ड्रेनेज फ्लो प्लस, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजीज फ्री प्लस, या फिर ऑप्शन डी ओपन डिस्पोजल फिल्ट्रेशन प्लस।
3: दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। दोस्तों आइए तब तक सुनते हैं फिल्म वो लम्हे से की आवाज में ये खूबसूरत ट्रैक।

0: तो दोस्तों, इस गीत से पहले हमने पूछा था आपसे यूथ कनेक्शन में सवाल कि ओडीएफ प्लस की फुल फॉर्म क्या है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस। और हमें सही जवाब लिख भेजा है प्रदीप रावत, जो कि नैनीताल से हैं, रुद्रपुर से सूर्य तिवारी, और एक बार फिर से करनाल हरियाणा से संजीव कुमार ने भी इस सवाल का सही उत्तर दिया है। इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
1: दोस्तों, आज के इस डिजिटल और कॉम्पिटिटिव दौर में सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेकर बैठना काफ़ी नहीं है। जॉब मार्केट में आज उसी युवा की पूछ है जिसके पास कोई ना कोई दमदार हुनर हो। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं कौशल विकास और रोजगार की।
0: बिल्कुल, और इस हुनर को सीखने के लिए युवाओं को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑफिशियल पोर्टल है स्किल इंडिया डिजिटल हब, और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट skillindiadigital.gov.in पर जाकर सैकड़ों फ्री कोर्सेज, डिजिटल स्किल्स और सरकारी ट्रेनिंग सेंटर्स की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों।
1: और दिव्य, जो युवा कॉलेज में पढ़ाई करते करते या घर बैठे देश के सबसे बड़े संस्थानों जैसे IITs, IIMs से एडवांस स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्वयं पोर्टल और NPTEL एक वरदान है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों swayam.gov.in। यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ के प्रोफेशनल कोर्स देश के टॉप प्रोफेसर द्वारा बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ कोर्स पूरे करने पर IIT का ऑफिशियल सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स भी मिलते हैं।
0: और दोस्तों, आपको बता दें कि देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी, और इसमें कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल जैसे कई अलग अलग ट्रेड्स में बिल्कुल फ्री स्किल ट्रेनिंग और असेसमेंट भी मिलता है। और इसकी पूरी जानकारी आप PMKVYofficial.org पर लाकर उपलब्ध है।
1: दोस्तों, अब जब स्किल और पढ़ाई दोनों पूरी हो गई तो सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरी कहाँ ढूंढे। इसके लिए केंद्र सरकार का एक बेहतरीन रोजगार पोर्टल है जो है नेशनल करियर सर्विस NCS। इसकी वेबसाइट है दोस्तों ncs.gov.in। यहाँ देश भर की सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की जानकारी, करियर काउंसलिंग और जॉब फेयर्स का शेड्यूल आपको सीधा मिल जाएगा।
0: और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अपने उत्तराखंड की। राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर हुनरमंद बनाने के लिए उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन काम कर रहा है। उत्तराखंड के युवा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ukSDM.org.in पर जाकर राज्य में चल रहे फ्री स्किल डेवलपमेंट बैच जैसे कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स की जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, उत्तराखंड के युवाओं को अब रोजगार कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे दिवेश, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। आप employment.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर घर बैठे अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको राज्य के रोजगार मेलों यानी जॉब फेयर्स का सीधा अपडेट मिल जाता है।
0: और दोस्तों, जो युवा नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सबसे बेस्ट है। इसके तहत सब्सिडी वाले लोन के लिए आप सीधे msy.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज के ज़माने में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। नए स्किल सीखना और खुद को समय के साथ अपग्रेड करते रहना भी हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और पूछते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्शन का आखिरी सवाल। सवाल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2015।
0: दोस्तों, आप हमें अपने जवाब लिख भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। सही जवाब के साथ अपना नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके जवाब को आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और बढ़ते हैं एक बेहतरीन से गीत की तरफ दोस्तों, जो कि लिया गया है फिल्म ये दिल दीवाना से, जिसे आवाज दी है सोनू निगम और हेमा सरदेसाई ने।

0: दोस्तों, गाने से पहले हमने आपसे पूछा था यूथ कनेक्शन का सवाल कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कौन से साल में हुई थी, जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2015। दोस्तों, प्रदीप रावत नैनीताल से, संजीव कुमार करनाल हरियाणा से, इन्होंने हमें सही जवाब लिख के भेजे हैं
1: और इन दोनों के लिए जोरदार तालियां दोस्तों।
0: दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमें पत्र लिखकर। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001।
1: दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं youthddn@gmail.com पर, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आपके संदेशों और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी दिविज
0: और मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साया के 5:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: नमस्कार, प्रणाम, पहला श्रोताओ, मैं छू ममता पांडे और आज एक कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सभी जने को स्वागत करना छू और कसेरी झर पर। जी हाँ, भले हो जाए कि लेकिन श्रोताओ, अब मौसम थोड़ थोड़ के बदलन लग गयो। अब रात में जब हम पंख चलून और कई लोगों ने तो बदले कर हाल होन, लेकिन अगर रात में हम पाँच में चलून तो एक बार चार तीन द्वि और रत्ते हो जाने वे पंख के बंदले कर देने। लेकिन कुछ जो नई छवाली का जानते छन वो कुनन हमन के तो गर्म लग रहे हो उते ही चलून, लेकिन अब हमारे उम्र है के चालीस मल लग गया तो हमन के ठंड लगो। और उसी के हमारे घर में लिए अगर आमा बुबू छन बुढ़बाड़ी छन तो उन्हन के लिए ध्यान धरण से कि अब ठंड पानी नानक बखत नहीं गयो। हाँ, अब थोड़ा पानी के मंतत कर लें चे और नानतीनन के लिए बिल्कुल एकदम ठंड पानी नी नवूण चे। और दूसर खान पीण की बात ले करी जाओ तो रात में जो हम दे खा दिन रेत खा दिन ना अब वी ले बचण से हमन के किले की अब लगन वाल छन श्राद्ध। और जब ये ऋतु बदले ना तो वही ही मौसम में हम पड़नू बीमार। यो नानी नानी जो चीज़ें है ना, अगर यह कि हम ध्यान रखनू तो अपन स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकनू। और हाँ, रत्ते उठबेर जनन के घूमन फिरन की आदत छे ना वही ले थोड़ रुक बेर। हाँ, जो अगर घर में बुढ़बाड़ी छन बुजुर्ग छन तो थोड़ा रुक बेर, 7 बजे बाद नहीं जाओ, एकदम ठंड में जानक जरूरत ना। कि लगी धीरे धीरे करके ठंड हमारे शरीर के पकड़ ली। और जब हम गाँव पीड़ जाओ खूब तेज मन के ज्वर आ जाओ खास रुके नहीं तब जाबेर हम जानो डॉक्टर के पास तसनी करण से। हाँ, अगर हमन के यो रोग लाग गयो छी खांसी जुकाम सर्दी और बुखार तो हमन के डॉक्टर के पास बिल्कुल जरूर जल्दी चली जाना चाहिए। किले की यो जो मौसम छे ये में अनेक प्रकार के वायरस छन आजकल। यस ना कि हम घर में ठीक जोन जब हमन के तेज खांसी आ जा एक हफ्ते है जा खांसी जुकाम बुखार आ जा तो हमन के तुरंत डॉक्टर के पास जान चाहिए और अपन स्वास्थ्य की देखभाल और जाँच करूँ चाहें। तो ये तो है हमारे स्वास्थ्य की बात और हम आप लोग ले कोला यो ममता आज बहुत देंगे लेकिन यो जरूरी छे अपन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए। श्रोताओं बतौनू कार्यक्रम में की खास छे आज आप सुनला हमारी खैरी कार्यक्रम जो कि जन समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम छू। जमे आज आपके हम ले जोन नंदा नगर ब्लॉक गांव घूड़ी रामणी की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जैकी प्रस्तुति रौली विनय ध्यानी की। श्रोताओ ये जो गाँव छे ना घूड़ी रामणी वाकई में बहुत खूबसूरत गाँव छे और जन समस्याएं तो छे ही छन लेकिन वी का बीच में लोगों ने यो गाँव की तारीफ ले करी छे। और जब हम बात करू नंदा राजा यात्रा की तो वो यात्रा ले यहीं गाँव बटे हैवेर निकले तो अपन आप में ही खूबसूरत गाँव छे और यहाँ की समस्या छन ये क्या आप घड़ी एक में सुन वी है। पहली हम बतूनू चर्चा ले करूँ आज आपदा के बाद केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और सुरक्षित यात्रा कसके चलनी चाहिए एक बार में हम थोड़ा देर में फसक मारून। वी के अलावा हम कार्यक्रम में बहुत सारे रेवार आप अकली जी ली वेरूनू और गीत तो सुनूनू ही सुनूनू और गीतल याद आई बोल छ आपक अनुरोध मा कार्यक्रम आपल हमारे दगर जुड़न छ चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर चिट्ठी भेज भेर और अपन पसंद को गीत भोलापल सुना छो। तो श्रोताओं पहली करनू कार्यक्रम की शुरुआत और एक भलो भल लीला बिस्ट को गायु कुमाऊनी गीत भी का अगिन पचिन आप सुनना रेबार।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा।
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: आइए, क्या परेशानी है?
1: डॉक्टर साहब, दो दिन से बुखार है और शरीर में काफी दर्द भी है।
0: ठीक है ठीक है, जांच कराते हैं। इस मौसम में डेंगू के मामले भी सामने आ सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है।
1: डेंगू से बचने के लिए क्या करूं डॉक्टर साहब?
0: पूरी बाजू के कपड़े पहने और शरीर को ढक कर रखें, साथ ही घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
1: और किन किन चीजों में पानी जमा हो सकता है?
0: कूलर, गमले, पुराने टायर, नारियल के खोल और खाली डिब्बों में। इन्हें नियमित रूप से साफ करें और पानी जमा न होने दें।
1: और अगर बुखार हो तो?
0: बुखार को हल्के में ना लें, समय पर डॉक्टर से जांच और सलाह जरूर लें।
1: समझ गई डॉक्टर साहब, मच्छरों से बचाव करेंगे और घर में पानी जमा होने नहीं देंगे।
0: सावधानी रखेंगे, डेंगू से बचेंगे। और आप आपातकालीन स्थिति के लिए ये नंबर भी डायल कर सकती हैं, 112-1070 या 1077। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: पेशेंट नंबर 20, बालम 20।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: श्रोतो लीला बिस्ट गुगायु कुमाऊनी गीत आप सबल सुनो और वी का अगेन पछेन आपल सुनी रे बार। उम्मीद छे गीत आपके पसंद आई होनल और एक बार कार्यक्रम में आज स्वागत आप सबे जाने नुको। श्रोतो हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनार पर विराजमान भगवान शिवक पावन धाम केदारनाथ, यो सिर्फ एक तीर्थ ना बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं और हमार आस्था और विश्वास केंद्र छो। लेकिन अगर साल 2013 की बात करनू तो 16-17 जून की उभयावह प्राकृतिक आपदा जमे इतु बर्ख भ्यो, देव भ्यो और बादव फटनक बाद अचानक आई बाडल केदारनाथ और वहां का आसपासक जग में बहुत तबाही मचाए। सार बाट पुल और अनेक बुनियादी सुविधाएं ले प्रभावित है गईन और हजारों तीर्थयात्री संकट में फंस गईन। लेकिन श्रोताओं कही जाना कि जो पहाड़ होना

सर्वेक्षण यानी SSI की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ करेगी। मंदिर की संरचना को संग्रहण संरक्षण विमल्ब का हटून पाथर ढोंग इतु वा बाट में रह रुचि उन्हें के हटून एक आसान काम ना छी। वे के हटून में कतु काम भी हो वे के संरचना फिर से उसी बनून एक बहुत कठिन चुनौती छी। पुनर्निर्माण केवल मंदिर के नहा बल्कि वाक बाट बुनियादी सुविधाएं यात्रियों के आन जान में जो बाट हमार क्षतिग्रस्त हो गए उनके फिर से बचून और बरखल बार बार टूटन वाल बाट पुल के बढ़ून एक चुनौतीपूर्ण कार्य होने के बाद फिर से एक वे रूप में व्यवस्थित करण एक ठुल चुनौती की बात एक बहुत है भल काम हम सब लोग नल मिलबेर करो और ये में हमन ले खूब भागीदारी निभोन चाहे। हाँ, प्रकृति को नियम का हमन के पालन करना चाहे। अगर हम बात करें तो आज की यात्रा पहले की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित व्यवस्थाओं की दगड़ करी जा। यात्रा के लिए पहली बैठे पंजीकरण की व्यवस्था छ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं छ मौसम की जानकारी तापमान की जानकारी आप ले देखना उनाला आपका मोबाइल में हर 2-4 घंटे में मोबाइल की जानकारी आ जा और अगर मौसम खराब हो तो चेतावनी पहली बैठी आपक पास आ जा। तो यो बहुत जरूरी काम छ जो हम सरकार थे उम्मीद करना चाह और लोगों थे कि फटाफट यो काम है यो और वीक बाद यो यात्रा हमार फिर से सुरक्षित चलने चे। यो काम केवल शासन प्रशासन के नहा हमन के लिए यो बहुत ध्यान रखना चे। हाँ, हर वक्त प्रकृति को सम्मान करो नियमों का पालन करो। हम सब लोग लिए वहाँ जाना चाह तो हमार मनोकामना ही पूर्ण हो सब यात्री भल और सुरक्षित आए ये लीजिए। हम सब ले अपन विश्वास उसी के बनाई रखना चे किले की अगर हम जागरूकता और सावधानी रखूँ तो हमार जो यात्रा छो सुरक्षित रोली। और आज हम वी में बात करना छे कि आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कसके भी हो और हम कसके यो यात्रा भल और सुचारू रूपल कर सकूँ तो यो हमार पे बाबा केदारनाथ की ही कृपा छो। तो श्रोताओं आओ केदार बाबा की बात करना चाह तो एक गीत हम सुनू शैलेंद्र मटियानी को गायो बाबा केदार पर यो गीत।

श्रोताओं, शैलेंद्र मैथानी के स्वर में आपल सुनी केदार बाबा की देव स्तुति। उम्मीद छे आपके पसंद आई होली। और श्रोताओं, आप वखत छो कार्यक्रम हमारी खैरी को। हम ले जानू आपके नंदानगर ब्लॉक गांव घोड़ी रामणी की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आपके सुनू में, जो कि जन समस्याओं पर आधारित छू और जैकी प्रस्तुति छी विनय ध्यानी की।

0: श्रोताओं, हमारी खैरी कार्यक्रम लेने का खातिर आज मैं जनपद चमोली को दूरस्थ क्षेत्र घूणी पहुंचो छो, जो कि नंदा नगर ब्लॉक को एक क्षेत्र छ। घूणी रामणी सुनने का आप तो पता चल गया कि हाँ, रामणी का नजीक एक गांव छ। और ये गांव की खासियत यह छ कि जन रामणी घूण रमणीक बोले गया तन घूणी भी कम नहीं छ। और यक भी बहुत सारा लोग अपन जीवन यापन अपन खेती बाड़ी से कना छन और तमाम समस्याएं छन और विकास का कई कार्यक्रम यख होने न तो लगु चुके यहाँ यख का लोगों की बात सुने जा। आवा गांव को परिचय और गांव का बाबत और जानकारी हम हासिल करता। नमस्कार, आप अपनों क्या छे?
1: डॉक्टर शंभु प्रसाद पांडे मेरे नो छे और ये गांव छे घूणी।
0: अब घूणी में हम और क्या परिचय ले सकता, कितना मोह हाली, कितना जनसंख्या होली?
1: भाजी यख तो गाँव तो हमारे बहुत बड़ो छे, ये गांव को क्षेत्रफल बहुत बड़ो छ। एक लगभग 3 से 4 हजार लगभग वोटर छन। हाँ, ये कुछ क्षेत्रफल बहुत बड़ो छ। एक बटेन ठीक मुड़ी सुधी नंदा नगर से एक सल बगड़ पड़ दो तक बटेन बहुत बड़ो क्षेत्रफल छ ये गांव को।
0: तब वोटर ज्यादा छन तो पक्के बात छ कि जो राजनीति का जनप्रतिनिधि छन वो नजर तो रहन होली ना?
1: बिल्कुल, राजनीति पर जब जब चुनाव हों भाजी तभी देख दू।
0: तो जब वो खाली हुए वक्त देख दिन वो एक बात आप जन समस्या क्या हों कन के वो हल हों दिन
1: हमारे अंश भाजी जन समस्या को एक प्रॉब्लम यन हुई कि एक स्कूलों में स्कूल छ पर मास्टर नहीं, अच्छा रोड छ पर रोड भी यन स्थिति में छ कि जन सुबह हनुमान चालीसा पढ़ दो जान पढ़ दो बाजार यक हैं कि यक की स्थिति यन हुई कि यख गाँव बटिन अधिक से ज़्यादा लोग जो का पास पैसा पाई वो लोग यक बटिन पलायन कर गए। अब जो विचारों की स्थिति अन्य वो यख ही गाँव में छ और गाँव की स्थिति भी अनु है कि गाँव यू मथी छ और गाँव का मोड़ी जो है कि खनन माफियों पूरा खनन कयूँ और प्रत्येक मकानों पर ये गाँव में दराड़ेगी और ये गाँव कभी कभी भी ये गाँव एक दिन यन छ दो चार पाँच दस साल में ये गाँव पलायन का तरफ छ।
0: लगातार ये गाँव में जब पलायन की स्थिति हो जाए तो फिर आखिर काराला क्या लोग कक जाला क्या काराला?
1: भाई साहब जान कक जान, अपड़ो कोई सरकार कोई सुन दो नहीं। आजकल सपो को अपड़ो ठेकेदारों को सभी जो जनप्रतिनिधि सपो का अपड़ो खिस्सा भरिया जो जिन जिनने हमारी आवाज़ उठानी जिन हमारे विषय में बोणो हमारी जनता का विषय

0: कखी ना कखी ईश्वर की बात, भगवान की बात और जन की पांडे जी ने बोल छा कि ये देव भूमि छ, ई भूमि बटे की सच में ये लोग भगवान पर आसरा रखे छन कि कन कैक ये ऐतिहासिक गांव हम बचा सका। यक बटक पलायन की समस्या न्यू आ जो गांव आवाज नहीं छे ना ऊ पर सरकार ध्यान देनी छे, और जो गांव आवाज छे ना जो पलायन निकना छन ऊ तरफ आंखा बुनिया छन। तो ये गांव बटे की हमार यही रहबार छे शासन तय कि भाई देखा एक इतना सख्त गांव, वे गांव का समय में अगर जीवन से जूझने की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होनी छे तो ये सवाल ठीक नहीं छे। किले कि एक तरफ आप बना छन सब गांव पलायन कर गिन, जो गांव में छन ऊ तो रोका गांव में। ये गांव यानी जो कि ऐतिहासिक गांव छ जनपद चमोली को नंदानगर ब्लॉक को घूनी, वो एक माँ विकास की क्या संभावनाएं छन एक दा फिर पांडे जी का पास आणु छो। डॉक्टर पांडे क्या देखना छो हम कि कनके की विकास हम ये क्षेत्र को कह सकदा और क्षेत्र की जनता की मांग क्या छन?
1: सबसे पहले तो मैं ये बोलनो चाहंदो यक की मूल समस्या छ स्वास्थ्य की। मैं देश विदेश में पंडिताई कर दू और मेरी माँ रहती छ गाँव में, मेरी माँ को अंतिम चरण में मेरी माँ ते स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल छ, तो मैं अपनो में कथा कर दू, मैं अपनो पंडिताई कर दू तो मैं ते कथा माँ से जो 2-4 रुपया बचदा छ तो एक साल तक मैंने अपनो गाँव में 1.5 साल तक मैंने सुख दुख सेवा चलाई। यक सारे गाँव जान दू लोगों ने यक बटिन 35 किलोमीटर दूर पड़ दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर कहते हैं बुखार एगे कोई डिलीवरी अगर छे तो 35 किलोमीटर जान पुन करीबन यक बटिन जाता जाता जाता जाता ये रस्तों देख करनी लगभग 2.5 घंटा लग जान दो, 2.5 से 3 घंटा। तो मैं यक जो छे की जो कि यकी की लोकल गाड़ियों में यन सुविधा बने छे कि जैसे तबियत खराब होली तो वो यूँ ड्राइवरों ते फोन कर लो और यूँ तुरंत जो कि बुकिंग नहीं ले ला 2,000 रुपया पड़दा यक की बुकिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने तक, तो 1.5 साल तक मैंने चलाई। अच्छा दूसरो यक क्या छ स्वास्थ्य नहीं, यक शिक्षा को कोई कुछ भी नहीं, मास्टर नहीं, बच्चा लोग स्कूल जाना और मास्टर नहीं तो बच्चा वक ही कोई बीड़ी पीणु सुखणु कुछ नशा कौन सीखणु।
0: ये समस्याओं का दगड़ी हम विकास की संभावनाएं ढूंढना सरकार से क्या मांग छ, क्या हम चाहना छुआ कि ये गांव को विकास हो सके?
1: सरकारी अनमुणों के गांव से पलायन ना हो तो सबसे पहले सरकार ते गांव में स्कूल मजबूत करने पड़ ली, प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य केंद्र खोलने पड़ लू और रोजगार का वास्ता गांव में भी यन रोजगार देने पड़ लू जो गांव का मन की कर सको।
0: गुनी गांव में परंपरागत वेशभूषा में हमार दुई माता बहन यक में पहुंची बुजुर्ग छ महेश देवी और आषाढ़ी देवी।

0: पोता जालो दड़िया जी
1: परंपरागत लोकगीतों का दगड़ी जब हम विकास की बात करदा, समस्याओं की बात करदा, तो सच में सरकार पर एक सवाल जरूर खड़ हूं कि जो लोग और जो गांव समृद्ध छन, आबाद छन, कम से कम ऊंक बाच जरूर सुना। नंदानगर ब्लॉक को गांव घुणी बटे के अब मैं यही कामना का दगड़ी वापस लौटना चाहूँ कि एक ना एक दिन ओणवल समय में यख का जनप्रतिनिधि और यख का लोग दुया यही बात था समझला कि एक पौराणिक गांव को अपन एक महत्व छ, वो एक विकास जरूर हो। शासन और प्रशासन इन तरफ ध्यान जरूर दिया, इन हमारे भी काम न छ। इन उम्मीद का दगड़ी मैं वापस लौटना चाहूँ नंदानगर ब्लॉक को गांव घुणी बटे के अपन आकाशवाणी स्टूडियो।

तू श्रोताओं सुने अपन, समस्याएं तो बहुत छन, बहुत सारी परेशानियां छन, लेकिन सपने ठुल समस्या छ पलायन। उम्मीद करनु योगों की समस्या झट सुलझ जाओ और सब लोग हंसी खुशी अपन गांव में रहो। श्रोताओं हमारे खैरी कार्यक्रम में आप सुनना चाह नंदा नगर ब्लॉक घूमी रामने की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम, जो कि जन समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम छी और जैकी प्रस्तुति छी विनय ध्यानी की। श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में 6:22, एक गीत आप अगले जी इंद्रमोहन चमोली कुशवर्मा गढ़वाली गीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: श्रोतो इंद्र मोहन चमोली को गयो गढ़वाली गीत और आप सुनिए रहे बार उम्मीद से गीत आपके पसंद आई होलो। श्रोतो स्टूडियो की घड़ी में हम देख रहा था 6:28:45 वक्त चो समाचारों को, तो आओ सुन लीनू उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार।
4: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के खाते में 18,49,00,000 रुपए की सहायता हस्तांतरित की। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होंगे सेवा सेतु सरकार आपके द्वार शिविर और चमोली जिले के बद्रीनाथ में 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
6: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
5: वहीं देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 249 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री टम्टा ने युवाओं से समर्पण और प्रभावी जनसेवा के माध्यम से विकसित भारत 2047 के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों के खातों में 18,49,00,000 रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को पात्र श्रमिक परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में आयोजित मातृशक्ति संवाद एवं सम्मान समारोह में महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न सरकारी योजनाओं पर अपने विचार रखने के साथ ही सुझाव दिए। श्री धामी ने कहा कि सरकार देहरादून में एक बड़ा केंद्र विकसित कर रही है, जहां सभी जिलों की महिलाओं के बनाए विशिष्ट उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
7: जो भी आप लोगों के उत्पाद हैं, मैंने कहा कि उनको बेचने के लिए, उनका विपणन हो, उसके लिए जगह जगह पर अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी हमने 3 साल पहले प्रारंभ की थी और आज अनेक स्थानों पर उसके स्टॉल लग रहे हैं। राज्य में सरस मेलों पे लग रहे हैं, अन्य जो हमारे समारोह होते हैं उनमें लग रहे हैं और उनके उत्पादों की अब मांग बढ़ रही है। और यहाँ देहरादून में हम अभी एक काम और कर रहे हैं, जो आप लोग उत्पाद बनाते हैं उन उत्पादों को एक स्थान पर बिक्री का अवसर मिले, तो जो हमारा सहजधारा रोड में एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं, उस सेंटर पर सभी जगह के उत्पादों को बेचने के लिए एक ही जगह पर 13 के 13 जिलों का स्थान होगा।
5: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में आज 2 दिवसीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 1277 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न पदकों से भी सम्मानित किया गया। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर KK पंत ने बताया कि 2 दिनों में कुल 2701 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान शिक्षा और शोध के साथ रक्षा तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है।
8: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
5: सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज सचिवालय में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक और तहसील स्तर पर कम से कम 3 दिन के शिविर लगाए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविरों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने जिलाधिकारियों को शिविरों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि उधम सिंह नगर के 2388 आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।
9: आंगन का मिलन कार्यक्रम में अभी तक पिथौरागढ़, अभी चंपावत और आज उधम सिंह नगर में जो है इसकी बैठकें हुई हैं और निश्चित रूप से जिस समन्वय की आवश्यकता है कि हमारे आंगनबाड़ी बहनें, हमारे सुपरवाइजर CDPO, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी इन कार्यक्रमों को जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सरकार की विभिन्न, चाहे वो केंद्र पोषित हो चाहे वो राज्य पोषित हो, वो संचालित हो रही है, वहां पर 25 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम होने हैं और वहां पर हमारे पोषण किट से लेकर क्रिएटिव एक्टिविटी से लेकर हमारे आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान होना है उसे।

0: में तो आज उधम सिंह नगर में बैठक हुई है।
1: चमोली जिले के बद्रीनाथ में आज दो दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हुआ। भारतीय सेना और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित महोत्सव की थीम संस्कृति हमारी विरासत हमारा भविष्य है। महोत्सव में महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, किसानों और युवा उद्यमियों ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए। भारतीय सेना ने प्रदर्शनी के माध्यम से सीमाओं की सुरक्षा के साथ ऑपरेशन सद्भावना के तहत किए जा रहे सामाजिक विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर उत्तर भारत के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों और प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है।
2: देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 के दूसरे संस्करण की थीम हमारी विरासत हमारा भविष्य हिमालय क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। हमारी विरासत केवल स्मारकों और परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे संगीत, नृत्य, खानपान, हस्तशिल्प, त्योहारों, पारंपरिक ज्ञान और सबसे बढ़कर हमारे लोगों में जीवित है। इस महोत्सव के पहले संस्करण ने गढ़वाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सामने लाने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया था। इस वर्ष ये आयोजन और व्यापक हुआ है, जिसमें गांव, विद्यालयों, महिलाओं, कलाकार और स्थानीय उद्यमियों को अधिक भागीदारी देखने की मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही संकल्प अभियान के तहत 5 राज्यों में आयोजित की जा रही नमो क्रिकेट लीग के उत्तराखंड संस्करण का आज देहरादून में शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लीग का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। लीग में 5 राज्यों के करीब 3,200 टीमें और 50,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के खातों में 18,49,00,000 रुपए की सहायता हस्तांतरित की। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होंगे सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार शिविर और चमोली जिले के बद्रीनाथ में 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार अनुवाद एक बार आज ही स्वागत आप सभी जनों को कार्यक्रम ग्राम जगत में। मीछू आपक दगड़ ममता पांडे 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून केंद्र छे। और हाँ, आप सुनना चाह अपन बोली भाषा को कार्यक्रम। श्रोता आप अब ना आप हमार दगड़ कै बैठे लिए जुड़ सकता। हेलो ग्राम जगत फोन इन कार्यक्रम न्यार द्वार कार्यक्रम मिले आप हमारे दगड़ जुड़ सकता। चिट्ठी तो छे छे हाथिल लिखी और वी के अलावा ऐपक माध्यम ले छे हमारे दगड़ जुड़नक। और हाँ, चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com यो हमार ईमेल एक पत्ते छो। तो अब कै बैठिले नहीं बचला, आप हमन के काई बैठिले पकड़ सकता। आप चाहे कान में फंतरू लगा बेर हमन के सुनो, गाड़ी में सुनो, घर में सुनो, रेडियो में सुनो, ऐपक माध्यम कै बैठिले सुनो और कै बैठिले हमार दगड़ जुड़ो। भूल ले हमार दगड़ जुड़िया आपा का अनुरोध मा कार्यक्रम हम ले बेर उनू। आपा को पसंद को गीत हम यहाँ बैठे सुनू। और हाँ, एक खास हम ले आप थे यहाँ बैठे ध्यान लगनू कि जो गीत हमार स्टूडियो में उपलब्ध छन वही गीत हम यहाँ बैठे आपके सुना सकनू। तो श्रोताओं, हमल आपके गढ़वाल घुमा घुमाऊँ घुमा और चमोली तो आपल घुमो ही घुमो आज हमारी गहरी कार्यक्रम में। अब जौनसार की तरफ जयबेर, जौनसार घूमो और सुनो भलो भल जौनसारी गीत स्वर महेंद्र सिंह चौहानक।

श्रोताओं, निर्जाव प्रीति गु गयु कुमाऊनी गीत का दगड़ ही आज कार्यक्रम बटोल लग बखत है गयो भोल आपक अनुरोध मा कार्यक्रम में आपा मगर दगड़ जुड़िया तब तक लेजी मके यानी ममता पांडे के दिया अनुमति नमस्कार।

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में साय के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटेन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में मृणाल रतूड़ी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, प्रदेश सरकार जनानियों का उत्पादों तय बढ़िया बाजार उपलब्ध कराण और महिला उद्यमिता तय बढ़ावा देण खुणी प्रतिबद्ध च। मुख्यमंत्री धामीन 10,000 से ज्यादा श्रमिक लाभार्थियों का खातों में 18,49,00,000 रुपए की सहायता सौंपी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन रुद्रपुर में आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करी और चमोली जिला का बद्रीनाथ में द्विदिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव को शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि प्रदेश सरकार जनानियों का उत्पादों तय बढ़िया बाजार उपलब्ध कराण और महिला उद्यमिता तय बढ़ावा देण खुणी प्रतिबद्ध च। मुख्यमंत्री आज देहरादून में आयोजित मातृशक्ति संवाद और सम्मान समारोह में जनानियों दगड़ी बात करी। ये दौरान जनानियों विभिन्न सरकारी योजनाओं पर अपना विचार रखना दगड़ी सुझाव देनी। श्री धामीन बोली, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज का माध्यम से महिला समूहों का उत्पादों तय बाजार और नई पहचान दी जानी छ। उन बताए कि सरकार देहरादून में एक बड़ू केंद्र विकसित करनी छ, जग सभी जिला की जनानियों का बढ़िया उत्पाद बिक्री खुणी उपलब्ध होला।
2: जो भी आप लोगों के उत्पाद हैं, मैंने कहा कि उनको बेचने के लिए उनका विपणन हो, उसके लिए जगह जगह पर अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी हमने 3 साल पहले प्रारंभ की थी और आज अनेक स्थानों पर उसके स्टॉल लग रहे हैं। राज्य में सरस मेलों पे लग रहे हैं, अन्य जो हमारे समारोह होते हैं उनमें लग रहे हैं और उनके उत्पादों की अब मांग बढ़ रही है। और यहाँ देहरादून में हम अभी एक काम और कर रहे हैं, जो आप लोग उत्पाद बनाते हैं उन उत्पादों को एक स्थान पर बिक्री का अवसर मिले, तो जो हमारा सहजधारा रोड में एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं, उस सेंटर पर सभी जगह के उत्पादों को बेचने के लिए एक ही जगह पर 13 के 13 जिलों का स्थान होगा।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड भवन और दूसरा सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अलग अलग योजनाओं के तहत 10,000 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों का खातों में 18,49,00,000 रुपये की सहायता राशि DBT का माध्यम से सौंपी। मुख्यमंत्री ने बोली कि निर्माण श्रमिक राज्य का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा। राज्य सरकार को प्रयास च कि श्रमिकों और उनका परिवारों तय शिक्षा स्वास्थ्य पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लाभ सरल पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके, उन अधिकारियों तय एक निर्देश देनी। सेवा संकल्प अभियान का तहत सेवा सेतु सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 25 सितंबर बटिन 7 अक्टूबर तलक प्रदेश भर में आयोजित होलू। आज सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भेन। श्री उनियालन बताए कि हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर कम से कम 3 दिनों को शिविर लगाए जालू। ये मां स्वास्थ्य और बहुउद्देश्य शिविरों का दगड़ी केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगे जाला। पात्र लाभार्थियों को चयन कर उनते योजनाओं का लाभ दिए जालू। शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने का दगड़ी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रति भी लोगों तय जागरूक करी जालू। कैबिनेट मंत्री ने जिलाधिकारियों तय शिविरों की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर और व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने का निर्देश देनी। पौड़ी जिला का एकेश्वर विकासखंड में सेवा संकल्प अभियान का तहत आज बहुउद्देश्य शिविर आयोजित करी गई। शिविर में स्थानीय लोगों की 11 शिकायतें दर्ज भेन, जो को मौका पर ही निस्तारण करी गई। शिविर की अध्यक्षता DRDA का परियोजना निदेशक विवेक कुमार उपाध्यायन करी। उन विभागों का स्टॉलों को निरीक्षण कर ग्रामीणों तय उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देनी। विभागीय अधिकारियों पात्र लाभार्थियों तय मौका पर ही योजनाओं को लाभ उपलब्ध करें। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से नंदा देवी महोत्सव का अवसर पर विधिक जागरूकता कौशल प्रशिक्षण और निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करी जाना छन। महोत्सव में लगिया स्टॉलों का माध्यम से आम जनता कानूनी अधिकारों की जानकारी, निशुल्क कानूनी परामर्श और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए जानी छ। ये दौरान जनानियों और युवाओं खुणी सिलाई प्रशिक्षण भी आयोजित हुएन। वकी अलग अलग चिकित्सा संस्थानों की ओर से आंखों की जांच, सामान्य चिकित्सा और बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर लगाई जाना छन।
3: गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन आज उद्धम सिंह नगर जिला का रुद्रपुर में सेवा संकल्प अभियान का तहत 25 सितंबर बटिन 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों ते लेकी अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों का दगड़ी बैठक करी। उन बताए कि उद्धम सिंह नगर का 2388 आंगनवाड़ी केंद्रों में 13 दिनों तक अलग अलग गतिविधियां आयोजित करी जाली। ये मां सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्र लाभार्थियों तय योजनाओं से जुड़ने की व्यवस्था करी जाली। बहुत बढ़िया काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शाहिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं तय सम्मानित भी करी जालू।
4: आंगन का मिलन कार्यक्रम में अभी तक पिथौरागढ़ अभी चंपावत और आज उधम सिंह नगर में जो है इसकी बैठकें हुई हैं और निश्चित रूप से जिस समन्वय की आवश्यकता है कि हमारे आंगनबाड़ी बहनें हमारे सुपरवाइजर CDPO हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी इन कार्यक्रमों को जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सरकार की विभिन्न चाहे वो केंद्र पोषित हो चाहे वो राज्य पोषित हो वो संचालित हो रही है वहाँ पर 25 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम होने हैं और वहाँ पर हमारे पोषण किट से लेकर क्रिएटिव एक्टिविटी से लेकर हमारे आंगनबाड़ी बहनों
1: चमोली जिला का बद्रीनाथ में आज द्विदिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव शुरू है। भारतीय सेना और जिला प्रशासन द्वीकू की पहल पर ऑपरेशन सद्भावना का तहत आयोजित महोत्सव की थीम संस्कृति हमारी विरासत हमारा भविष्य। महोत्सव में गढ़वाली लोकगीत लोक नृत्य लोक संगीत हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की झलक देखने को मिली। महोत्सव में महिला स्वयं सहायता समूह कारीगर किसान और युवा उद्यमियों स्थानीय उत्पादों को स्टॉल लगे। भारतीय सेना प्रदर्शनी का माध्यम से सीमाओं की सुरक्षा का दगड़ी ऑपरेशन सद्भावना का तहत चलन लगियां सामाजिक विकास कार्यों की जानकारी देनी। ये अवसर पर उत्तर भारत का जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रान बोली कि यू योजना को उद्देश्य नई पीढ़ी तय अपनी लोक संस्कृति और परंपरा

0: विद्यालयों, महिलाओं, कलाकार और स्थानीय उद्यमियों को अधिक भागीदारी देखने की मिल रहा है।
1: हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 कुणी गंगा तटों ते पर्यावरण का हिसाब से नयू स्वरूप देने की पहल कैरी जानी छे। गंगा का किनारे हरियाणा आवरण वाला ग्रीन घाट विकसित करने की ये अवधारणा तय धरातल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का दगड़ी नीदरलैंड को तकनीकी सहयोग भी मिलू। ये क्रम में नीदरलैंड का विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडलन प्रस्तावित ग्रीन घाट क्षेत्र और आस्था पथ को स्थलीय निरीक्षण करी। प्रतिनिधिमंडलन मेला प्रशासन और नगर निगम का अधिकारियों का दगड़ी परियोजना का अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करी। योजनाओं का तहत हर की पैड़ी तय जोड़ने वाला धनुष पुल से बैरागी कैंप तलक आस्था पथ से जुड़िया गंगा घाटियों तय हरियों भरियों स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनौन की परिकल्पना करींच, जैसे घाट तय होर आकर्षक बने जा सको। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, प्रदेश सरकार जनानियों का उत्पादों तय बढ़िया बाजार उपलब्ध कराण और महिला उद्यमिता तय बढ़ावा देने खुणी प्रतिबद्ध छ। मुख्यमंत्री धामी 10,000 से ज्यादा श्रमिक लाभार्थियों का खातों में 18,49,00,000 रुपये की सहायता सौंपी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन रुद्रपुर का आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करी। और चमोली जिला में बद्रीनाथ में द्विदिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव को शुभारंभ। ये का दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को युवंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 6:59 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। नमस्कार किसान साथियों, खेत में बोया हर बीज हमारे किसान साथियों को एक उम्मीद की किरण देता है। उसी उम्मीद, मेहनत और खेती से जुड़ी उपयोगी बातों के साथ आप सुन रहे हैं किसान वाणी और आपके साथ है आपकी साथी दीपा बगासी। किसान साथियों, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर 2026 को हैदराबाद में आयोजित दक्षिणी राज्यों के क्षेत्र कृषि सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य को मिलकर टीम एग्रीकल्चर के रूप में काम करने का आह्वान किया। हैदराबाद सम्मेलन की मुख्य बातें रही किसानों की आय बढ़ाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल जोड़ दिया गया। प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गई, जिसकी शुरुआत पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से हो सकती है। मिट्टी की सेहत सुधारने, भविष्य की खेती टिकाऊ बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 प्रमुख सूत्र साझा किए गए। राज्यों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, खराब बीजों से बचाने तथा कृषि कानूनों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा,
1: फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से राज्यों में चल रहा है, विशेषकर आंध्रा ने, तेलंगाना ने काफी उसमें प्रगति की है। पाम ऑयल के क्षेत्र में भी आंध्र और तेलंगाना काफी आगे हैं। पाम ऑयल मिशन पर भी हमने चर्चा की है। तो कुल मिला के हमारा ये जो बैठक थी ये बहुत उपयोगी रही है। एक और विषय ऐसा था जिस पर चर्चा करके सब राज्य सख्ती से कार्रवाई करेंगे, वो है घटिया पेस्टिसाइड या घटिया बीज। किसान शिकायत करता है कि उसको घटिया बीज मिल गया है या पेस्टिसाइड घटिया आ गया है। एक नया सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी सीड एक्ट है वो 1968 का है, उसमें जो जुर्माना होता है वो भी काफी कम है और बहुत प्रभावी नहीं है, तो उसको और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन तब तक जो है प्रावधान उसको ढंग से लागू करके हम घटिया से बचाने के काम

0: राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे। कुल मिलाकर ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। हमने एक फैसला और किया है कि राज्यों के साथ जब राज्य को जरूरत हो, क्योंकि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बोनी भी अलग अलग होती है, भारत सरकार के वैज्ञानिक जब मांग करेंगे हमसे, उनके यहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आएंगे, गांवों में जाएंगे, किसानों के बीच बैठेंगे और लैब में जो रिसर्च हुई है वो किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर हम साथ काम करेंगे ताकि नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च, नया शोध हम किसानों तक ठीक ढंग से पहुंचा सके। तेलंगाना सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बाय हार्ट किया, पूरे दिल से किया है और हमारी ये कॉन्फ्रेंस बहुत सफलता के साथ समाप्त हुई।
1: आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हर शनिवार की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी खेती बाड़ी से संबंधित कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, किसानों के लिए सरकार की उपयोगी योजनाओं की जानकारी, कृषि विशेषज्ञों की सलाह और आपके सवालों के जवाब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं खेती को थोड़ा आसान और बेहतर बनाने वाली कुछ उपयोगी पहल की। जरा सोचिए किसान साथियों, खेती में पसीना हमारे किसान साथी बहाते हैं, दिन रात एक करके अपने खेतों को संवारते हैं। ऐसे में खेती के काम को आसान बनाने और आपकी मेहनत का बेहतर लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन व सब्जी योजनाएं, जिसके तहत ट्रैक्टर, कल्टीवेटर या रोटावेटर जैसे आधुनिक यंत्र खरीदने पर 40-50% तक की सब्सिडी सीधे आपके खाते में आती है। और अगर आप बड़े यंत्र नहीं खरीद सकते तो अपने इलाके के कस्टम हायरिंग सेंटर से बहुत कम किराए पर मशीनें ले सकते हैं। और यंत्रों के साथ साथ अगर बात करें सब्जी उत्पादन की, तो आज कम जमीन से तगड़ा मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा जरिया सब्जी की खेती है। इसके लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जहां आपको उन्नत और हाइब्रिड बीज, बेमौसम खेती के लिए पॉली हाउस या शेडनेट हाउस बनवाने पर 50% तक सब्सिडी और खेतों में पानी खाद की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन पर पूरा सहयोग मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साफ है कि हमारे किसान साथियों की लागत घटे, मुनाफा बढ़े और उनकी राह आसान हो। तो किसान साथियों, आज ही अपने नजदीकी कृषि या बागवानी विभाग से संपर्क कीजिए और इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाइए। किसान साथियों, अब बारी है आज के सवाल की, जिसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तो सवाल है, फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को क्या कहते हैं? हमें उम्मीद है आपको इसका जवाब पता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, फिर अपने जवाब का मिलान हमारे जवाब से जरूर कीजिएगा। आइए किसान साथियों, अब सुनते हैं पहाड़ की लोक धुनों से सजा एक प्यारा सा गढ़वाली लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, किसान बाड़ी में अब समय हो चला है हेलो किसान का, जहां आपके सवालों पर होती है सीधी बात और हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं उनके आसान और उपयोगी जवाब। और आज हमारी बातचीत का विषय है फसलों से संबंधित जानकारी पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान केंद्र हरिद्वार। डॉक्टर विनोद, किसानवाड़ी में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले बात करते हैं फसलों की, तो अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए हमारे किसान साथियों को शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: किसान भाइयों नमस्कार। अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए एक तो सबसे पहले जो भी फसल आप बोते हैं उसका बीज अच्छी जगह विश्वसनीय संस्थानों से लेना चाहिए। विश्वसनीय संस्थान कौन कौन से हैं? कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय।
3: जी, हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कॉलर, तो आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो किसान, कौन बोल रहा है?
5: हम अख्तर अली।
3: जी, कहाँ से बोल रहे हैं अख्तर जी आप?
5: गांव दलन नगर कोटमानपुर गिरा।
3: जी बताइए, खेती किसानी से जुड़ा आज का आपका सवाल क्या है?
5: सवाल हमारा ये है कि आम के पेड़ में रोग बहुत लगता है।
3: तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार, तो आइए जानते हैं आपके सवाल का जवाब।
4: देखिए किसान भाइयों, आम हिंदुस्तान की जो फल में बहुत अच्छी फसल है और इसमें रोग और कीट पतंगे काफी लगते हैं। अगर उन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता तो वो किसान फायदे के बजाय नुकसान में आ जाता है। तो रोग में डाई बैक है, कितने ही और रोग हैं, कीट पतंगे हैं। कीट पतंगों में फ्रूट फ्लाई जो फल होता है, फल के अंदर वो कीड़ा पैदा हो जाता है, उसका मार्केट में दाम नहीं मिलते। तो इसलिए इसमें पूरे विस्तार में तो यहाँ बताना संभव नहीं है। आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र होगा हरदोई में, जो वहाँ जो फल विशेषज्ञ है उसका पूरा पैकेज लो। इसका आम के जो बागों में है, अब आम की तुड़ाई हो चुकी है अगस्त में, और इनका कीट नियंत्रण का, रोग नियंत्रण का कार्यक्रम अभी से सितंबर के महीने से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप सितंबर के महीने से ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट करोगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी में 2-3 स्प्रे करने पड़ते हैं जब रोगों पर नियंत्रण होता है, और भी बहुत सी दवाइयां हैं, तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप संपर्क करें। अभी इसमें अगर सितंबर के महीने से आप पूरा पैकेज स्टार्ट नहीं करोगे तो अच्छी पैदावार आम की फसल से बाग से नहीं ले सकते।
3: जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इस बार आपकी आम की फसल की उत्पादन भी बहुत अच्छी रहेगी। हेलो किसान में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: जी, तो हम अपनी चर्चा पर पुनः वापस आते हैं। हमने आपसे जानना चाहा था कि अच्छी फसल हम किस प्रकार से प्राप्त करें और शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए।
4: देखिए, मैं बताया था कि किसान को जो भी फसल लगानी होती है उसका अच्छा बीज अच्छी जगह से ले, क्योंकि बीज के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। बीज के बाद उसकी बुआई लाइनों में करनी चाहिए और उसको संतुलित उर्वरक, क्योंकि एक फसल को अच्छी पैदावार लेने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
3: जी,
4: वे 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन। तो इस तरह से 17 तत्व होते हैं। इसमें कुछ मैक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फिर कुछ सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कुछ फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर ये हमारी जमीन में संतुलित मात्रा में होंगे तो भी हमारी फसल अच्छी होगी, वरना किसी की अधिकता हो जाएगी, किसी की कमी हो जाएगी तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी।
3: जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो जैसे आपने बताया कि हमें अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी फसल को बोने से पहले क्या मृदा परीक्षण करवाना ज़रूरी होता है?
4: हाँ, मृदा परीक्षण कराना इसलिए जरूरी होता है कि मृदा परीक्षण में ही पता चलता है कि हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितनी मात्रा में है, और जब मृदा परीक्षण के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो हमें उसी के अनुसार हर फसल के अलग अलग वो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अनुसार ही हम उसमें फर्टिलाइजर को डालते हैं।
3: अच्छा, तो अगर कोई किसान साथी हमारा चाहता है कि हम मृदा परीक्षण करवाएं, तो वो कैसे करवाएं, कहाँ जाएं और किस तरीके से अपने खेत की मृदा परीक्षण करवा सकते हैं?
4: हर जिले में कृषि विभाग की एक लैब है, तो उसमें ये मृदा परीक्षण कराया जा सकता है। अगर वहाँ भी नहीं आप वो कराते तो इफको विभाग है तो वो कराता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उनके वहाँ सोयल साइंस विभाग है तो उसमें आप करा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में अब खुले हुए हैं तो कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों में लैब है तो वहाँ भी आप अपनी मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। ICR के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान है, कुछ संस्थानों में मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है तो आप वहाँ भी करा सकते हैं।
3: उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को पता चल गया होगा कि आप लोग अपना मृदा परीक्षण कैसे करवा सकते हैं। गौर कॉलर हमारे साथ है। हेलो किसान, कौन बोल रहे हैं?
6: मेरा नाम उमेश चौधरी।
3: बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: जनपद हरिद्वार
3: जी,
6: विकास खंड।
3: आज फसलों से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कृषि विशेषज्ञ विनोद कुमार जी से पूछ सकते हैं।
6: हमारे गन्ने की फसल है, इसमें जो है एक अगर समस्या दिखाई दे रही है कि इसमें जो है सूखन आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब पौधा का पौधा ही सूख रहा है पूरा का पूरा।
4: किसान भाई, ये तुम्हारे खेत में दूसरे खेत का पानी तो नहीं आता? कहीं आस पास से बह का पानी आता हो, उसमें पानी में केमिकल आ जाता है तो उसके कारण सूखते हैं, एक कहीं कहीं इसमट भी लगा रहता है। गन्ने की फसल में 30 तरह की बीमारी लगती है लगभग, और

0: तरह के कीट पतंगे लगते हैं, तो वो तो मौके पर ही निरीक्षण करके उसका पता लगाया जा सकता है। आप कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में एक गन्ना लेके आ जाओ, वो तो वहां पर उसका परीक्षण करके बता दिया जाएगा कौन सी बीमारी है, इसका क्या इलाज है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो रेड रूट है, उसका कोई इलाज नहीं होता।
1: दूसरा सवाल ये है कि जैसे हमारे धान की प्रजाति है 17-18 ऊंचा की प्रजाति है सर, इसमें जो है किसी किसी पौधे में गोल सूखने की शिकायत आ रही है और कोई कोई पौधा जो है पूरा का पूरा ही सूख रहा है।
0: वो देखिए, वो तना छेदक, वो कीट पतंगा है, तना छेदक के लिए 5% वाला फिप्रोनिल 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर उसका एक स्प्रे कर दो, उससे फिर नहीं बाद में आपकी वो सफेद बाल हो जाएगी। वो नीचे से कीट जो है उसकी गोब में घुसा रहता है, नीचे से काटता रहता है। और आपको नहीं, पूरे धान वाले किसानों को जिसका धान खड़ा होता है, गाभा नहीं आया अभी तक, तो उसमें 5% फिप्रोनिल 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव कर दे, तो उस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
1: जैसे कि बाल आने की अवस्था में है सर धान बाल,
0: नहीं, बाल आने की अवस्था में, बाल निकली तो नहीं अभी?
1: जो गाब में आ गई है धान बाली निकलने वाली है सर।
0: नहीं, बाल अगर निकल गई हो तो बाल निकलने के बाद तो कोई स्प्रे रिकमेंडेशन होती नहीं। अगर गाभे में भी है, अगर अंदर भी है भी, तो वो उस पर स्प्रे किया जा सकता है। वैसे तो ये बाल निकलने से पहले ही इसका स्प्रे होना चाहिए, फिप्रोनिल का। बासमती धान में करीब करीब ये दो ही समस्या मुख्य होती है, एक तो ब्लास्ट की और एक स्टेम बोरर की। तो इनका नियंत्रण जिस किसान भाई ने कर लिया, उसके तो 60 क्विंटल का पर हेक्टर पैदावार हो जाती है। जिस पर नियंत्रण नहीं होया वो तो उसको 15-20 क्विंटल के आसपास ही पैदावार रह जाती है।
2: उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हेलो किसान में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। और कॉलर हमारे साथ है। हेलो किसान, कौन बोल रहा है?
3: मैं सूरज बोल रहा हूँ।
2: आप कृषि कार्य करते हैं?
3: मैं खेती बाड़ी करते हैं।
2: तो आजकल आपने अपनी फसलों में क्या क्या लगा रखा है?
3: आजकल तो अभी तो कुछ नहीं लगा, पर अब लगाएंगे, जैसे मटर लगाएंगे, आलू लगाएंगे।
2: आज हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे?
3: हाँ, मटर मटर के बारे में।
2: आइए अब जानते हैं आपके सवालों का जवाब डॉक्टर विनोद कुमार जी से।
0: देखिए, मटर दो तरह की होती है, एक तो सब्जी वाली मटर
3: हेलो।
0: और एक दाल वाली मटर। दोनों की अलग अलग प्रजातियां होती है, तो आप सब्जी वाली मटर लगाएंगे या दाल वाली मटर?
3: हमने सर दाल वाली लगा।
0: दाल वाली। अच्छा, उसकी वैरायटी अलग होती है, जो अच्छी अच्छी वैरायटी है, पन्नगर विश्वविद्यालय की भी 2-3 अच्छी अच्छी वैरायटी है।
3: हाँ
0: और
3: तो वैसे ही लाते, मतलब बढ़िया किस्म का भी
0: ये पन्नगर
3: पहले
0: पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय में 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक किसान मेला भरा हुआ है। वहाँ बीज पन्नगर विश्वविद्यालय की भी वैरायटी मिल जाएगी आपको, और प्राइवेट कंपनी जिससे भी लेना चाहोगे, बीज की बहुत ही दुकान लगती है, करीब 50 दुकान वहाँ पर लगती है। अच्छी अच्छी प्रजाति, नई जो प्रजाति हाइब्रिड भी है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी वहां से। आप वहाँ 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में जब भी आपको समय मिले, वो मेले में भी देखें, आप लाभ उठाएं उस मेले का, आपको बहुत और भी जानकारी मिलेगी और वहां से बीज भी लावें।
2: तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हेलो किसान में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर विनोद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं के सवालों का इतना सही तरीके से समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हमारे कई किसान साथी अपने खेतों में मटर की फसल बोने की तैयारी करने की सोच रहे होंगे। किसान साथियों, अक्टूबर से नवंबर के बीच मटर की बुआई की जाती है। इसकी बुआई के लिए भुरभुरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है। स्वस्थ और प्रमाणित बीज का चयन आप लोगों को अपनी फसल के लिए जरूर करना है। बुआई करते समय उचित नमी का ध्यान भी रखना है। किसान साथियों, समय समय पर निराई गुड़ाई और जरूरत के अनुसार सिंचाई भी जरूर करनी है। अगर फसल में कीट या रोग के लक्षण दिखे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। और जब फलियां आपके फसल में लग जाए तो उसके समय पर तुड़ाई करने से कोमल और अच्छी गुणवत्ता वाली मटर आपको मिलेगी और उत्पादन भी बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इन बातों को ध्यान में रखकर मटर की खेती करके अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। आइए किसान साथियों, अब लेते हैं एक संगीतमय विराम और सुनते हैं ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: आइए अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, अब जान लेते हैं आज के मंडी भाव। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की। टमाटर है 1575 रुपए प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 2067 रुपए प्रति क्विंटल, फ्रेंच बीन्स 1200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं फलों की बात करें तो सेब है 5000 रुपए प्रति क्विंटल, पपीता 2000 रुपए प्रति क्विंटल, केला 1650 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये था आज का मंडी भाव। किसान साथियों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। उत्तराखंड में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। किसान साथियों, आज की सलाह हमारी यही रहेगी कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं तो अपनी सम्मान राशि बिना किसी रुकावट के समय पर प्राप्त करने के लिए अपना ई केवाईसी और भू सत्यापन समय पर जरूर करवा लें। और अब अंत में समय हो चला है आपसे पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो हमने सवाल किया था, फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, खरपतवार। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों, आज का किसानवाणी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और इन जानकारियों से आपको लाभ भी अवश्य मिला होगा। अब अपनी साथी दीपा बगासी को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे किसानवाणी में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बैठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नगदगढ़ में श्याम भट्ट। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौच, राज्य सरकार महिलाओं के उत्पादों के भल बाजार दिलाऊन और महिला उद्यमिता के बढ़ावा दिनक लीजिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री धामील 10,000 है ज्यादा श्रमिक लाभार्थियों खातों में 18,49,00,000 रुपए की सहायता हस्तांतरित करी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल रुद्रपुर में आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करी और चमोली जिला बद्रीनाथ में द्विदिन चलने देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौश के राज्य सरकार श्रेणियों के उत्पादों के भल बाजार उपलब्ध करून और महिला उद्यमिता के बढ़ावा दिनक लीजिए प्रतिबद्ध छ। मुख्यमंत्री राज देहरादून में आयोजित मातृशक्ति संवाद और सम्मान समारोह में श्रेणियों दगड़ संवाद करी। ये दौरान महिलाओं अलग अलग सरकारी योजनाओं पर अपन विचार रखने के दगड़ सुझाव दियान। श्री धामील कौश की मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना और हाउस ऑफ हिमालयाजक माध्यमल महिला समूह के उत्पादों का बाजार और नई पहचान दी जन लग रहे। उन्होंने बताया कि सरकार देहरादून में एक ठुल केंद्र विकसित करने लग रहे जहाँ सभी जिलों की श्रेणियों की बनाई विशिष्ट उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ।
2: जो भी आप लोगों के उत्पाद हैं, मैंने कहा कि उनको बेचने के लिए उनका विपणन हो, उसके लिए जगह जगह पर अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी हमने 3 साल पहले प्रारंभ की थी और आज अनेक स्थानों पर उसके स्टॉल लग रहे हैं। राज्य में सरस मेलों पे लग रहे हैं, अन्य जो हमारे समारोह होते हैं उनमें लग रहे हैं और उनके उत्पादों की अब मांग बढ़ रही है। और यहाँ देहरादून में हम अभी एक काम और कर रहे हैं, जो आप लोग उत्पाद बनाते हैं उन उत्पादों को एक स्थान पर बिक्री का अवसर मिले, तो जो हमारा सहसधारा रोड में एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं, उस सेंटर पर सभी जगह के उत्पादों को बेचने के लिए एक ही जगह पर 13 के 13 जिलों का स्थान होगा।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अलग अलग योजनाओं के तहत 10,000 है ज्यादा पात्र लाभार्थियों खातों में 18,49,00,000 रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित करी। मुख्यमंत्री कौश के निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयास छ कि श्रमिकों और उनके परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और ठीक वक्त में तरीकल मिल सको। उन्होंने अधिकारियों के पात्र श्रमिक परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीकल पूजनक निर्देश ध्यान। सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 25 सितंबर बैठी 7 अक्टूबर तक राज्य भर में आयोजित करी जाए। आज सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों

0: समीक्षा करेगा। श्री उनियाल बतास कि हर एक ब्लॉक और तहसील स्तर पर कम है कम 3 दिनक शिविर लगाई जाए। इनमें स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविरों के दगड़ केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाई जाए। पात्र लाभार्थियों का चयन कर बेर उनके योजनाओं का लाभ दी जाए। शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध करून का दगड़ ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और मानव वन्य जीव संघर्षक लिजिले लोगों के जागरूक करे जाए। कैबिनेट मंत्री जिलाधिकारियों के शिविरों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और व्यापक प्रचार प्रसारक निर्देश दियान। पौड़ी जिले के एकेश्वर विकास खंड में सेवा संकल्प अभियान के तहत आज बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करेगो। शिविर में स्थानीय लोगों की 11 शिकायत दर्ज करी गयन जनों को मौके पर निस्तारण कर दी गो। शिविर की अध्यक्षता DRDA परियोजना निदेशक विवेक कुमार उपाध्याय करी। उन्होंने अलग अलग विभागों स्टॉलों का निरीक्षण कर बेर ग्रामीणों के मिलने योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दे। विभागीय अधिकारियों पात्र लाभार्थियों के मौके पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराज। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल तरफ बैठे नंदा देवी महोत्सव के अवसर पर विधिक जागरूकता कौशल प्रशिक्षण और निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करी जन लग रहा। महोत्सव में लगाई गई स्टॉल के माध्यम आमजनों के कानूनी अधिकारों की जानकारी निशुल्क कानूनी परामर्श और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जन लग रहा। इस दौरान श्रेणियों और युवाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण आयोजित करी हो। वहीं अलग अलग चिकित्सा संस्थानों की तरफ बैठले आंखों की जांच सामान्य चिकित्सा और बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर लगाई जन लग रहा।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल आज उधमसिंह नगर जिला रुद्रपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत 25 सितंबर बैठे 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों के लिए अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों की दगड़ बैठक करी। उन्होंने बताया कि उधमसिंह नगरक 2388 आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 दिनों तक अलग अलग गतिविधि आयोजित करी जालीन। इनमें अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी और पात्र लाभार्थियों के योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था ले करी जाए। बढ़िया काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के सम्मानित ले करी जाए।
2: आंगन का मिलन कार्यक्रम में अभी तक पिथौरागढ़ अभी चंपावत और आज उधमसिंह नगर में जो है इसकी बैठकें हुई है और निश्चित रूप से जिस समन्वय की आवश्यकता है कि हमारे आंगनबाड़ी बहनें हमारे सुपरवाइजर CDPO हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी इन कार्यक्रमों को जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सरकार की विभिन्न चाहे वो केंद्र पोषित हो चाहे वो राज्य पोषित हो वो संचालित हो रही है वहां पर 25 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम होने हैं और वहां पर हमारे पोषण किट से लेकर क्रिएटिव एक्टिविटी से लेकर हमारे आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान होना है उसे कहने में आज उधमसिंह नगर में बैठक हुई है।
0: चमोली जिले के बद्रीनाथ में आज 2 दिन चलने देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव शुरू भौच। भारतक सेना और जिला प्रशासन मिल्यक पहल पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित महोत्सवक थीम संस्कृति हमारी विरासत हमारा भविष्य छ। महोत्सव में गढ़वाल लोकगीत लोक नृत्य लोक संगीत हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की झलक देखने को मिली। महोत्सव में महिला स्वयं सहायता समूहों कारीगरों किसानों और युवा उद्यमियों स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगायन भारतक सेना प्रदर्शनी के माध्यम सीमाओं की सुरक्षा दगड़ ऑपरेशन सद्भावना के तहत करीजन्य सामाजिक विकास कार्यों की जानकारी दे। अवसर पर उत्तर भारतक जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्राल कौश की यस आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी के अपन लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के दगड़ सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों और प्रतिभाओं के मंच उपलब्ध करून छ।
3: देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 के दूसरे संस्करण की थीम हमारी विरासत हमारा भविष्य हिमालय क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। हमारी विरासत केवल स्मारकों और परंपराओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे संगीत नृत्य खानपान हस्तशिल्प त्योहारों पारंपरिक ज्ञान और सबसे बढ़कर हमारे लोगों में जीवित है। इस महोत्सव के पहले संस्करण ने गढ़वाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सामने लाने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया था। इस वर्ष ये आयोजन और व्यापक हुआ है जिसमें गांव विद्यालयों महिलाओं कलाकार और स्थानीय उद्यमियों को अधिक भागीदारी देखने की मिल रहा है।
0: हरिद्वार में कुंभ म्याऊ 2027 तक लीजिए गंगा किनारों के पर्यावरण अनुकूल बनावेर नई स्वरूप देने की पहल करी जन लगने। गंगा किनार में हरित आवरण युक्त ग्रीन घाट विकसित करने की अवधारणा

0: जमीन में उतारण में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनक दगड़ नीदरलैंडक तकनीकी सहयोग ले मिललू। यही क्रम में नीदरलैंडक विशेषज्ञों प्रतिनिधिमंडल प्रस्तावित ग्रीन घाट क्षेत्र और आस्था पथक स्थलीय निरीक्षण करी। प्रतिनिधिमंडल मेला प्रशासन और नगर निगमक अधिकारियों दगड़ परियोजनाक अलग अलग पहलुओं पर ले चर्चा करी। योजनाक अंतर्गत हरकी पैड़ी के जोड़ने वाले धनुष पुल बैठे बैरागी कैंप तक आस्था पथ से जुड़िया गंगा घाटों के हरित स्वाफ और पर्यावरण अनुकूल बनौने की परिकल्पना करी जा रहे। एल श्रद्धालुओं को ऊन जनक लीजिए विकसित होने वाले महत्वपूर्ण बाट और गंगा तटक आसपास का क्षेत्र प्रकृति और स्वच्छता के दृष्टिकोण ले ज्यादा आकर्षक बनाई जा सकलो। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौच राज्य सरकार महिलाओं के उत्पादों भल बाजार दिलोण और महिला उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री धामील 10,000 है ज्यादा श्रमिक लाभार्थियों खातों में 18,49,00,000 रुपए की सहायता हस्तांतरित करी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल रुद्रपुर में आंगन का मिलन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करी और चमोली जिले बद्रीनाथ में द्विदिन चलने देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ। एक दगड़ कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों यो अंक समाप्त है। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:39 हुए हैं। धीरे धीरे समय हो रहा है हमारे श्रोताओं के मनोरंजन का, यानी कि उनके मनपसंद फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। तो सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म किनारा से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र को, और ये इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत था आर डी बर्मन का। अब अगला गीत और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुनने वाले हैं, फिल्म अमर प्रेम से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन। प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साया के 7:49:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष उनियाल प्रत्येक शनिवार को प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम योजना संवाद में आप सबका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, योजना संवाद के अंतर्गत हम विशेषकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आज हम बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा जारी 3 कल्याणकारी योजनाओं की और शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 के साथ। इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2026 को की गई है। तो आइए पहले चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना पर। ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग, सीमित संसाधनों या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। श्रोताओं, पहाड़ के गांव से निकलकर अनेक युवाओं ने प्रशासन, सेना, शिक्षा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। फिर भी राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराना है। इनमें राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ऑनलाइन माध्यम के कारण विद्यार्थी अपने घर, महाविद्यालय या किसी सुविधाजनक स्थान से पढ़ाई कर सकेंगे। सरकारी सेवा में जाने के लिए युवाओं को अनेक स्तरों की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा सेवाओं और अन्य भर्ती परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं के लिए विषय ज्ञान के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आवश्यक है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को इन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, अभ्यास प्रश्न, मॉडल टेस्ट और परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाना प्रस्तावित है। श्रोताओं, इस योजना का सबसे बड़ा महत्व उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए है। कई बार प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। देहरादून, हल्द्वानी या अन्य बड़े शहरों में जाकर तैयारी करना हर परिवार के लिए संभव नहीं है। आवास, भोजन, यात्रा और कोचिंग की लागत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त भार डालती है। ऑनलाइन कोचिंग इस दूरी को कम करती है। यदि किसी गाँव का विद्यार्थी मोबाइल, कंप्यूटर या डिजिटल अध्ययन केंद्र के माध्यम से विशेषज्ञ शिक्षकों से जुड़ सके तो उसके अवसरों का विस्तार होगा। इस प्रकार ये योजना शिक्षा में समान अवसर का कदम बन सकती है। साथ ही ये बात जाननी भी जरूरी है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी मिलता है जब लाभार्थी उसका गंभीरता से उपयोग करे। विद्यार्थियों को नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहिए, समय सारणी बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए और उपलब्ध आवश्यक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। केवल वीडियो देखना पर्याप्त नहीं है, नोट्स बनाना, प्रश्न हल करना, पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास और समय समय पर आत्म मूल्यांकन भी जरूरी है। विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। इंटरनेट की सुविधा न होने पर वे अपने महाविद्यालय, पुस्तकालय या सामुदायिक डिजिटल केंद्रों में सहायता ले सकते हैं। साथ ही योजना से संबंधित आवेदन, चयन और कक्षाओं की जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त करनी चाहिए। योजना की सफलता के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नियमित तकनीकी सहायता और विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक होगा। ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग, विषयवार अध्ययन सामग्री, सरल भाषा में समझाने की व्यवस्था और प्रश्न पूछने का अवसर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटरनेट या उपकरणों की कमी के कारण कोई पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित न रह जाए। इसके लिए महाविद्यालयों में डिजिटल कक्षाएं, बेहतर इंटरनेट सुविधा और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। तो श्रोताओं, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना केवल निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की पहल नहीं है बल्कि उत्तराखंड के युवाओं को अवसर और मार्गदर्शन देने का भी प्रयास है। अब बात करते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना की जो युवाओं के हित से जुड़ी हुई है। ये योजना है उत्तराखंड में स्थापित देश की पहली अग्निवीर सेल योजना। श्रोताओं, अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में छोटी अवधि की नियुक्ति के लिए की गई थी, जिसमें फिलहाल 25% अग्निवीरों को ही नियमित करने का प्रस्ताव है। बाकी 75% अग्निवीरों की सेवा समाप्त होगी। इस योजना के पहले अग्निवीर बैच की सेवानिवृत्ति इस साल के अंत में होने जा रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा देश के पहले अग्निवीर सेल की स्थापना की गई है। इस रोजगार सेल का उद्देश्य सेवानिवृत्त प्रशिक्षित अग्निवीरों को रोजगार, उच्च शिक्षा और स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में भी 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण योजना की, जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। श्रोताओं, शिक्षा सहित रोजगार या आर्थिक निर्भरता के मामले में उत्तराखंड की महिलाओं ने प्रगति की है और लगातार आगे बढ़ रही है। खेल, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य और संगीत जैसे तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और सफलता प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की जा रही जल सखी योजना भी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का ही एक माध्यम है। यदि आप महिला हैं तो इस योजना के बारे में ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। श्रोताओं, उत्तराखंड सरकार द्वारा जल सखी योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति को सशक्त बनाना है, जिसमें जल प्रबंधन प्रणाली में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद लेकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पानी की बिलिंग, नए जल आपूर्ति कनेक्शन देना, बिल सुधारना, रेवेन्यू कलेक्शन और स्कीम मेंटेनेंस जैसी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। महिलाओं को जल नल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही इन समूह को पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए टेस्टिंग किट्स भी दी जाएंगी और जल आपूर्ति सिस्टम या वाटर सप्लाई सिस्टम में किसी भी खराबी की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी इन महिलाओं की होगी। सरकारी ने प्रति बिल 10 रुपए का प्रोत्साहन और कुल कनेक्शन में से एक तय हिस्सा भी देगी, ताकि उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके। श्रोताओं, इस योजना का उद्देश्य भी हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने जल सखी योजना के विषय में क्या कहा।
2: देखिए, ये जो कल जल सखी योजना लागू करने की बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है, वो बहुत ही सराहनीय फैसला। और रक्षाबंधन का पर्व एकदम नजदीक है, उसमें एक भाई को अपने उत्तराखंड की बहनों के प्रति एक तोहफे के रूप में इस योजना को देखा जा सकता है। इस योजना के तहत 15,000 से ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण में आगे बढ़ने के लिए, उनको रोजगार की दिशा में आगे करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। इससे जो हमारी स्वयंसेवी महिला

0: मुलाकात होगी सोमवार को प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में। अब आप अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अपनी शिकायतों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित आपके पत्रों का कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज जी
1: और रमेश चंद्रा का
0: जी,
1: कल्पना जी मैं देख रहा हूँ हमारे श्रोताओं के बहुत सारे पत्र और मैसेज आए हुए हैं,
0: लेकिन समय हमारे पास कम है क्योंकि आज का हमारा आपका पत्र मिला कार्यक्रम का समय ये 10 मिनट है, ये हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में पहला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी बहजबी निसार, बेटी नुजत फातिमा अबरार अहमद अंसारी और इसरार अहमद अंसारी, आपने चंद पंक्तियां लिखी हैं। साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, प्यार अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, राहों में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। और आप सभी लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। लिखते हैं कि 12 सितंबर का आपका पत्र मिला कार्यक्रम हमें अच्छा लगा और 13 सितंबर को मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया और उसी दिन बाल मंडल कार्यक्रम में हमने चर्चा सुनी माता पिता की छाया जरूरी उड़ान भी जरूरी। कलाकार कार्यक्रम में महिमा चौधरी के बारे में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया बहुत अच्छा लगा और इसी दिन बरसे फरमाइश कार्यक्रम पेश किया गया वो भी हमें पसंद आया। 12 सितंबर का महिला जगत कार्यक्रम हमने सुना, उसमें चर्चा सुनी थी बच्चों से करे दोस्ताना व्यवहार, चर्चा हमें अच्छी लगी। और 15 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम में कवि गोष्ठी हमें सुनने को मिली, इसी दिन का किसान वाणी कार्यक्रम भी सुना, अच्छा लगा। उस कार्यक्रम में चर्चा थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और लिखते हैं कि 17 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें शहर की जानकारी के साथ साथ फिल्मी गीत भी सुनने को मिलते हैं और क्योंकि हम अपने गांव करेली जिला बरेली में बैठकर शहर देहरादून की जानकारी हासिल करते हैं। और इसी दिन सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम भी सुना, अच्छा लगा। 18 सितंबर का अनुभव कार्यक्रम में शशिकांत जी सेवानिवृत्त प्रसार भारती नई दिल्ली से उनके बारे में जो बातचीत सुनी अच्छी लगी और बातचीत की थी रमेश चंद्रा जी ने। और लिखते हैं कि पिछले दिनों आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमारे भाइयों ने लिखा था कि आप इस कार्यक्रम का समय बढ़ा दीजिए, बिल्कुल सही कहा लिसनर्स भाइयों ने क्योंकि अब आपके पास खत बहुत सारे आने लगे हैं और इतना वक्त बहुत कम है। आप खुद सोचिए 10 मिनट का टाइम आप देते हैं, हम लोगों को कम से कम 30 मिनट का टाइम तो इस कार्यक्रम के लिए दीजिए। बाकी कार्यक्रम आपके केंद्र के एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम का समय बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
1: नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी और आपके परिवारजनों ने हमें ये प्यारा सा मैसेज लिखा और एक शेर लिखा है, साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, प्यार अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर। तो आकाशवाणी और हमारे श्रोताओं का साथ तो बहुत पुराना है और निसार जी आपसे यही गुजारिश करेंगे अन्य श्रोताओं से भी कि आकाशवाणी और हमारे श्रोताओं का ये जो साथ है इसी तरह बना रहे और हमारे श्रोताओं के इसी तरह पत्र और मैसेज हमें प्राप्त होते रहे। आपने कार्यक्रम पेश करने वालों को आदाब भेजा तो हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। 12 सितंबर का आपका पत्र मिला कार्यक्रम, 13 सितंबर को मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम आपको पसंद आया, 13 तारीख का ही बाल मंडल कार्यक्रम में आपने जो चर्चा सुनी माता पिता की छाया जरूरी उड़ान भी जरूरी ये आपको पसंद आई, महिमा चौधरी पर कार्यक्रम पसंद आया, नमस्कार देहरादून 14 तारीख का महिला जगत कार्यक्रम

0: कार्यक्रम भी आपने सुना, ये भी आपको पसंद आया। 15 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम में कवि गोष्ठी आपने सुनी, 17 तारीख का नमस्कार देहरादून आपको पसंद आया, 18 तारीख का अनुभव कार्यक्रम जिसमें श्री शशिकांत जी अपर महानिदेशक प्रसार भारती सेवानिवृत्त से भेंट वार्ता थी, वो आपको पसंद आई। तो आपको हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और आपने समय बढ़ाने के लिए लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी ही कार्यक्रम का समय बढ़ सके। होता ये है कि कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट रिले आ जाते हैं, इन वजह से जो हमारा कार्यक्रम का समय 15 मिनट है वो भी घट जाता है कभी कभी। तो हम अपने श्रोताओं से और निसार अहमद अंसारी जी आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि इसी तरह से आप अपने मैसेज और पत्र भेजते रहें। आपने एक मैसेज भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, जिला मुरादाबाद गाँव दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में नरगिस खातून। आप सभी लिखते हैं कि आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए भी खुश होता है, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। जो मेरे परिवार वालों को साथ में आस पड़ोस वालों को भी सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक हम सभी सुनते हैं और हर प्रोग्राम में भागीदारी भी लेते हैं, अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। आप लोगों से एक हमारी शिकायत है, ये शिकायत यह है कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम में जो शुक्रवार को आता है रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। गुरुवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच, उसमें हमारी कॉल पिछले सप्ताह लगी थी, 4:21 पर आपने कॉल रिसीव नहीं की। आप रिकॉर्ड कर रहे थे और लिखते हैं कि उस प्रोग्राम में कल्पना पंकज जी कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग कर रही थी और इस सप्ताह 3 बार हमारी कॉल रिसीव नहीं की गई। इससे पहले कॉल 4:16 पर, दूसरी कॉल 4:42 पर, तीसरी कॉल 4:50 पर लगी। कृपया आप ऐसा ना करें, किसी के साथ ना करें। और दूसरी बात ये है कि आप रिकॉर्डिंग का टाइम सही बताएं और सभी की कॉल रिसीव करें। हमारा कॉल लगाते लगाते 1 घंटा बेकार हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ चलाते चलाते थक जाते।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, आपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को नमस्कार भेजा, तो हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। आप आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम अपने परिवारजन और अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ बैठकर सुनते हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। और आप लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम जो शुक्रवार को आता है रात को 10 से 11 बजे तक और उसकी रिकॉर्डिंग होती है गुरुवार को 4 से 5 बजे तक, आपकी कॉल पिछले सप्ताह लगी थी लेकिन उसे रिसीव करके रिकॉर्ड नहीं किया गया। हो सकता है किसी संयोग बस ऐसा हो गया हो, अन्यथा हर श्रोता हमारा महत्वपूर्ण है और हम उनकी हर कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, उनसे बात करते हैं और हमें खुशी होती है जब हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं। और आपने लिखा है कि फोन पर कॉल लगाते लगाते 1 घंटा लग जाता है, इसका हमें बहुत ही खेद है कि आपको इतना इंतजार करना पड़ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे फरमान जी कि आप हमें फिर से कॉल करिएगा और जब भी आपकी कॉल लग, आपकी ही कॉल क्या, किसी भी श्रोता की कॉल लगती है तो पूरी कोशिश होती है हमारी उनकी कॉल रिकॉर्ड हो। शिकायत और सुझाव हमें लिख भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वैसे भी मोहम्मद फरमान जी, जब हम प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उतनी ही कॉल लेते हैं जितनी हमारी प्रोग्राम में शामिल हो जाए, अन्यथा कॉल को हम शामिल नहीं करते या रिकॉर्ड नहीं करते। क्योंकि अगर हम रिकॉर्डिंग कर रख लेते हैं तो हमारे श्रोताओं की शिकायत रहेगी कि आपने कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया। इसलिए हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उतनी ही कॉल की रिकॉर्डिंग करें जितना कि उसका प्रसारण हो जाए। कार्यक्रम में पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, गाँव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी लिखते हैं कि आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब। लिखते हैं कि देहरादून केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 5 सितंबर का आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और लिखते हैं कि सभी खतों के जवाब बहुत ही प्यार पूर्वक दिए गए। इसके अलावा एक कलाकार कार्यक्रम में आशा भोसले की जयंती पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया, बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप फरमाइश, हेलो फरमाइश कार्यक्रम भी हमें अच्छे लगते हैं। सुबह की शुरुआत नमस्कार देहरादून से होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्या आपके केंद्र से झलकी भी प्रसारित होती है? अगर हाँ तो किस दिन और किस समय, बताने का कष्ट करें।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और आपके परिवारी जनों ने हमें एक मैसेज लिखा और आपने आदाब लिखा, इस तो हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा आदाब नमस्कार। आप लिखते हैं कि आशा भोसले जी की जयंती पर प्रसारित कार्यक्रम, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम, हेलो फरमाइश कार्यक्रम और सुबह का नमस्कार देहरादून, ये भी आपको अच्छे लगे, इसके लिए भी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपने झलकी कार्यक्रम के बारे में जानना चाहा है तो हम अपने सभी श्रोताओं को लाल मोहम्मद अंसारी जी बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी देहरादून से झलकी कार्यक्रम अभी प्रस्तुत नहीं हो रहा है। जब प्रस्तुत होना शुरू होगा तो हमारे श्रोताओं को बता दिया जाएगा। तो लाल मोहम्मद अंसारी जी यही चाहेंगे कि आप हमारे देहरादून केंद्र से इसी तरह की दोस्ती, इसी तरह का अपनापन और स्नेह बनाए रखें और अपने मैसेज इसी तरह भेजते रहें। आपने ये मैसेज भेजा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, तो क्यों ना आप हमारे श्रोताओं को मैसेज, पत्र और ईमेल भेजने का पता बता दीजिए।
1: हमारे श्रोता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और साथ ही आप ईमेल के माध्यम से भी आप हमें अपने प्रतिक्रिया लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसके लिए आप नोट करें apkapatra@gmail.com।
0: इसी के साथ रमेश चंद्रा
1: और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अब आप सुनेंगे श्रोताओं विशेष सीरीज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम।
3: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
4: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग 2.5 दशक कहें, 3 दशक कहें, 3 दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद मनोज जी।
4: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
4: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
6: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर

0: जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है जी। और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है, वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं, और अलग अलग योजनाओं के तहत, और जिस विशेष बात रखी जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती है, और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
2: उसको कर रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है, जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
1: शुभमाय, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गाँव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी?

0: जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है, उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
1: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
0: जी
1: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो
0: जी
1: शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला। इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले इसकी पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारे स्कीम में ये जो मॉनिकर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया, और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें, जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये।
0: जी
1: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो लोगों को समझने में और उसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया, सिंपल योजना है लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल
0: जी
1: मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए।
0: जी बहुत अच्छी बात की शुभमय, कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर के भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो योजनाएं उतरने लगी, यदि हम थोड़ा सा पीछे इससे चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ। इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा है, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
2: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही है आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे,
0: जी जी जी
2: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा,
0: जी
2: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें, जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन हुआ, चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार
0: जी
2: मोबाइल,
0: जी जी
2: तीनों को
0: जी
2: जोड़ के आपने,
0: जी
2: तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे, अगर आप कभी भी देखें, जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के,
0: जी
2: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एंकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है आपका।
0: जी जी
2: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा, जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए
0: जी
2: पैसा।
0: जी
2: तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद, अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें यूपीआई

0: क्यूआर कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए
1: जी जी
0: तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए।
1: जी
0: शुरुआत में इसके ऊपर काफ़ी आलोचना भी हुई, आपको याद होगा।
1: अच्छी
0: अच्छा, आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता।
1: जी
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास
1: जी
0: भी
1: जी
0: क्यूआर कोड है।
1: जी
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से आप शुभ में जो कि आर्थिक विशेष ज़्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीआई को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है। अब
1: जी
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी
1: जी
0: को
1: जी
0: हिसाब नहीं होता था।
1: जी
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, डीबीटी किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को? यानी काला धन सफेद धन, धन धन है, लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा है, और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें डीबीटी कैसे कह लें पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ? और एक बड़ी अच्छी बात की भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं। किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
2: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखें सीएजी का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का सीएजी का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं,
1: जी
2: बट नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा 7 ट्रिलियन हो जाएगा और जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी, ये जनधन और मुद्रा वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी।
2: उस तरह से वो पे। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर जो एक बार सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है, जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, शुभ में कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, बेशक आमदनी के आंकड़ों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गांव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदला?

0: लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में।
1: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज बदली है। फिर भी 40% के आसपास, मान के चलिए 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से। जो शुभ भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
0: जी,
1: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखे स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरे परिवार को सोचती है, जी, जी, कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास, ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर ये समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह की कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच,
0: जी,
1: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कर कि लक्ष्य आधा सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारी जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करे। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ाए कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाए, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी
0: जी
1: का और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है, ठीक है। कास का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा वो, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है।
0: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गाँव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्था करना, वो मुश्किल था क्योंकि ये एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वो आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
0: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए
0: जी।
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है जी।
0: श्रोताओ, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं, बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहाँ जाना कठिन था, अब वहाँ सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, PMJAY योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
1: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास के और कार्यक्रम में और उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
0: जी जी जी
1: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग, वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है। वो भी और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने जो देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे, तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा है आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब सम्मिलित करके कर रहे हैं। और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है। आप वो सरकार को कोई खर्च नहीं है, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप, और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर टू सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल, एक जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं
0: जी
1: कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ है। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा, तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
0: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, किस रूप में यह चल रही हैं और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है। जितना जितना जिस तरीके का हम, अगर हम हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, उसके तरफ एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत
0: जी।
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब ये है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगह में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक, जिसे कहते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन इन इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में,
0: जी जी
2: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इस करना के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं हम सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्य कार्य क्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स की सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट के जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो PFMS स्कीम्स है वगैरह, PFMS एक्चुअली स्कीम नहीं है, PFMS इज पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारी स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपने अकाउंटिंग

0: सिस्टम भी बदल दिया है और ये सब बहुत बड़ी, जैसे कि मैं कहूंगा फेस चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद, ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह, बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम, जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं, जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाएं, तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकास विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 तक, जो 100 साल भारत का आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छुट्टी है तो शुरुआत से, तो जिसे रोटी कपड़ा मकान कह
1: जी
2: लीजिएगा,
1: जी
2: पुरानी बात है, लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच। और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीजें हैं। तो वो विकास, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे हैं, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो, जैसे है कि लास्ट में, जैसे एक अगर कहें, अगर आप रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं,
1: जी जी
2: लेकिन
1: जी
2: अंत में जाके सब उस टेप को तो
1: जी जी
2: चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है, उसके लिए जो है जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी, कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है,
1: जी जी जी
2: सिर्फ सोच ही बदलाव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो ये
1: बिल्कुल
2: सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो, जैसे कहते हैं चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है। जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए, तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल शुभ। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल की दाम बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई, हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ्स का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया, क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहाँ हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं? आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इम्प्लीमेंट हों और वो साल दर साल इम्प्लीमेंट होते रहे, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
2: मनु जी, आपने जो बात कही बहुत अहम भी है, और इस पे देखिए, जैसे इससे पहले वाकई बात की, सोच बदलने की बात है, और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता है, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, तीन चार चीजें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पे जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि भाई कार्य करें।
1: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ

0: इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली से अब प्रस्तुत हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाध खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
5: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
5: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
5: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
4: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
1: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
6: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बैठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
7: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
8: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
7: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
9: I think close to 8 cargo planes have arrived.
10: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
9: The Indian government is looking at the issue of assistance very positively.
4: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी।

0: नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division. Also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna-Ukai-Songar section of Western Railway. Two-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for the country's entrepreneurs and creates new career possibilities for the youth. Prime Minister Modi said India is the world's third largest startup ecosystem today.
2: Bharat aaj duniya ka तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youths under the Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase.

0: ये कार्यक्रम का, आप जैसे जितने यहाँ पर बैठे हैं ऐसे 51,000 लोगों का नियुक्ति पत्र आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जब देश प्रगति करता है, विकास देश के अंदर होता है, उससे अवसर मिलते हैं, उसमें सरकारी नौकरी भी मिलती है, प्राइवेट लोगों को भी काम मिलता है, यानी कि लेबर से लेकर के इंजीनियर को टेक्नीशियन को काम मिलता है, तो जिस देश का सफर नहीं होगा वहां रोजगार कम हो जाए। कुल मिलाकर के लगभग 200 हमें डाक विभाग में सर्वे ऑफ इंडिया में एम्स ऋषिकेश में, आज आप जिस जगह पर आपको ज्वाइन करेंगे आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि नौकरी तो लगी है मगर मुझे ये नौकरी सेवा की नहीं।
1: पत्रिका चित्र भारती,
2: साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्की 2898 एडी को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन। जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदा

दास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपा श्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म युगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई। आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
1: सरकार को कुछ होने क्या
2: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
1: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
2: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी

0: ಹೋಗಿ ಉನ್ನೇ ಪಹಚಾನ
1: ಗರುಡನ್ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತನಾಗ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. ಸಿನಿಮಾ ಔರ್ ಕಲಾ ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಯೋಗದಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೆ ಸಾಲ್ 2025 ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಕೋ ದೇಶ್ ಕೆ ತೀಸರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ್ ಸೆ ನವಾಜಾ ಥಾ. ಅನಂತನಾಗ್ ಕೋ ದಾದಾ ಸಾಹಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಢೇರ್ ಸಾರಿ ಬಧಾಯಿಯಾಂ. ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा.
2: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिसालदार के नगर पोते मीर रोशन अली में.
3: जरा होश में आइए हुजूर, जरा. हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए.
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है. जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना. बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी. साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं. आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए. प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर. निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए. इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी. कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया. सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गई. सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई. ये फिल्म कामयाब रही. इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया. इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था. इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है.

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारे पुत्रा भाई,
1: चल तू इधर रोज आती है।
2: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली गल सुन।
2: क्या?
1: तेरी कुमाई हो गई।
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेट मार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: हाजिर हो गया।
4: क्या हो?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: और फिल्म इजाजत के लिए साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दिना की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं जी। फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा।

0: असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बस सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वहीं रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो। इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात।
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है,
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या

0: смертей шиш. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ, जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के 3 कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया। और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you

0: They're learning from you. They are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when we push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विंसी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विंसी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विंसी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विंसी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात यह रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दे कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
3: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा जापान और साउथ कोरिया इवन पाकिस्तान इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
2: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर

0: कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है। और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोंग एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है.
1: द नेक्स्ट आइटम इज सरस्वती नमोस्तुते इन द राग सरस्वती सेट टू रूपक तालम कंपोज्ड बाय जी एन बालसुब्रमण्यम.

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kripaya Palaya, a composition of Shri Swati Tirunal in the rag Charukeshi set to Mishra Chapu Thalam.

0: ये था तनियावर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the Mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the Ghatam by Shri Anjal H. Krishna Iyer. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a Tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the Raga Dhanashri set to Adi Talam.

0: इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that we conclude the violin recital by Sri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Sri Changanasheri K. R. Jayan on the mridangam and Sri Anjal H. Krishna Iyer on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rose Garden.